मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 9 जून सन 2026। प्रातः के 5:57 होने को है। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है मंगल ध्वनि के साथ।

0: दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है आज का विचार, विज्ञान नए परिप्रेक्ष्य में, विषय पर वाचक स्वर हैं डॉक्टर सुशील कांत सिन्हा के।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं प्रस्तुत है हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी

0: विभिन्न ज्ञान, कलाएं और विविध विषय व्यक्ति को आगे उत्तरोत्तर विकास करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, उसे साहसी और विवेकशील बनाते हैं और इन सब के आधार पर व्यक्ति समय का सदुपयोग करता, अपने जीवन को सार्थक करता है। ज्ञान विशेष अर्थात विज्ञान, जिसकी हर व्यक्ति को हर समय में और आने वाले समय में विशेष रूप से आवश्यकता होती है कि वो हर बात को, तथ्य को बहुत ही विवेक और तर्क के साथ समझे और किसी कार्य को करने के पहले अपने विचार को परख ले कि जो कुछ भी वो निश्चय और निर्णय कर रहा है वो उचित है, सर्वोचित है और उसका उठाया कदम किसी भी प्रकार से उसको हतोत्साहित नहीं करेगा, उसे कहीं भी निराश नहीं करेगा। जिन संदर्भों में विवेक का प्रश्न उठता है वे संदर्भ अवश्य ही मानवता के कल्याण से संबंधित हैं और ज्ञान विशेष अर्थात विज्ञान व्यक्ति के विकास और कल्याण की कामना करता है और उस कल्याण में उसका निहित स्वार्थ सिर्फ समष्टिगत होता है, ना कि व्यष्टिगत। आवश्यकता है कि हम विज्ञान को भी व्यापक दृष्टिकोण से परखें और उसका जीवन में उपयोग करें तथा विज्ञान सम्मत अपनी आस्थाओं को, अपने निर्णयों को, निष्कर्षों को बनाएं। इसके लिए हमें सचेत होना होगा, अपने विचारों को परखना होगा और ऐसे तंत्रों को प्रभावी बनाना होगा जो कि अन्य लोगों का भी ध्यान केंद्रित करें और कार्रवाई शुरू करने से पहले अपने विचारों को परख लिया करें। किसी भी प्रकार की महामारी, संकट, व्याधियां, दुर्घटनाएं, ये सब सचेत करती हैं कि कहीं व्यक्ति ने कोई ऐसी गलती की है या उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य हुआ है जो कि दूसरे के लिए अहितकारी सिद्ध हुआ है, और तब आवश्यकता होती है उसको अपने विवेक से अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने की, और तब वो दूसरों के कष्टों को निवारण करके ही अपने को सुखी महसूस करता है। इन्हीं संदर्भों में आवश्यकता है अपने जीवन को विज्ञान से जोड़ने की और जीवन अर्थात सुखी संपन्न हर व्यक्ति का जीवन और जो जीवन राष्ट्रीय संपत्ति होती है, विज्ञान उस संपत्ति को और संपन्नता की ओर ले जाता है और उसे वो मार्ग दिखाता है जिससे व्यक्ति और भी सक्षम, समर्थ और महत्वपूर्ण बने। ऐसे विज्ञान के ही द्वारा आने वाले समय में ये सृष्टि नियोजित होती रहेगी और एक नए अध्याय का सूत्रपात होगा, जबकि नई शताब्दी, नए स्वप्नों को साकार करता हुआ विज्ञान उसे अप्रतिम और अप्रत्याशित क्षितियों की ओर ले जाएगा। इन्हीं संदर्भों में व्यक्ति का जीवन समष्टिपरक बने और वो दूसरों के लिए ऐसे मार्ग का अनुसरण कर सके जिन पर चलकर उसके आत्मिक और विवेक का विकास हो तथा वो इस सृष्टि के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई सिद्ध हो। यही विज्ञान की इच्छा, आशय और उद्देश्य होता है। इसी संकल्प को ग्रहण करते हुए यदि व्यक्ति अपने हर कार्य को संयोजित कर सके और अपने हर विचार का इस रूप में आकलन कर सके कि वो कहाँ तक किस रूप में उपयुक्त और महत्वपूर्ण है, तभी उसका कार्य सार्थक और पूर्ण कहा जाएगा।
1: विज्ञान नए परिप्रेक्ष्य में, इस विषय पर अभी आपने सुना आज का विचार।

वाचक स्वर डॉक्टर सुशील कांत सिन्हा के। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। कार्यक्रम के आज के अंक में आप सुनेंगे बालकांड की दोहा संख्या 139 से दोहा

0: संख्या 141 की अंतिम चौपाई तक का पाठ, संगीतकार सतीश भाटिया।
1: एपिसोड 54, 5-4।

भगवान शंकर के श्री मुख से श्री रामचंद्र के ब्रह्म चिन्मय तथा अविनाशी होने का ज्ञान पाकर पार्वती का संशय मिट गया था। फिर भी उन्होंने ये जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी कि प्रभु ने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया। भगवान शिव ने तब उन्हें वो सभी तथ्य बताए जो अवतार के हेतु कहे जा सकते हैं। इनमें से एक प्रभु द्वारा नारद मुनि के मोहभंग की कथा है। दूसरी कथा है आदि पुरुष मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा को मिले वरदान की। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव हुए। मनु के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराणों में मिलती है। देवहूति मनु की कन्या थी, जिनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और जिन्होंने दीनों पर दया करने वाले समर्थ तथा कृपालु आदि देव भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

सुबह 7 बजे हमारी इस सभा में कार्यक्रम सुप्रभात में आज आप सुनेंगे वार्ताकार श्री हेमंत शर्मा की वार्ता। विषय हमारे लिए प्रेरणादायक है बिरसा मुंडा का जीवन।

सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा, वाचक स्वर श्रीमती मधु शर्मा के, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेगा की, संयोजनकर्ता श्री अमित सिंह। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग NCERT और दिन के 11:00 आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। दिन के 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे आदिवासी क्षेत्रों की प्रारंभिक कला और हस्तशिल्प, आयुर्वेद और स्वास्थ्य लाभ, बिरसा मुंडा शहादत दिवस, जनजातीय अस्मिता के संघर्ष की गरिमा, योग और स्वस्थ बुढ़ापा। कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रीमती अंजलि व्यास की वार्ता, शीर्षक खेल खेल में गणित। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा योगासनों के माध्यम से जोड़ों को स्वस्थ बनाना। लघु जानकारी के विषय रहेंगे DRDO, पर्यावरण संरक्षण है जरूरी, रमन प्रभाव, चिल्का झील। शाम 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे भूमि तैयार करने के आधुनिक यंत्र, हरित क्रांति, श्रम योगी मानधन योजना, वर्षा जल सहेजें।

लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर और फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनेंगे आप सुबह 7:30 पर सुबह 10:00। दिन के 11:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम में भूले बिसरे गीत। दोपहर 12:40 पर और शाम 6:05 पर रात्रि 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम खेती की बातें केयर से पोषण के साथ आय विषय पर जानकारी दे रहे हैं श्री बजरंग सारस्वत।
1: भाई लोगा, आपारे इन बीकानेर क्षेत्र में पंचकूटे रो साग बनावा हाँ, आपा सांगरीर सागे और भी कई भांतरा आपा बिरमायने खाद्य पदार्थ डाला हाँ, जिकेर मायने केर है, केरिया के वहाँ आपा ईरो प्रमुख स्थान है। आपारे इन शुष्क क्षेत्र में आप चाहो तो केर खेती कर और आप अच्छी आमदनी ले सको हो। केरा फल है इरो उपयोग एक विशेष प्रकारो उत्पाद तैयार करने में करीजे है, जिके ने आप पंचकूटो के वहाँ। पंचकूटो में केर रह सागे सागे काचरी कुमट सांगरी और भी कई भांतरा खाद्य पदार्थ रो आप उपयोग करा हाँ। ओ शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र रे ग्रामीण समुदाय रे लोगों वास्ते पोषण री पूर्ति तो करे ही है, सागे एक अतिरिक्त आय रो भी अच्छो स्रोत बन सके है। केरा काचा और पाका फल है, वे ताजे रूप में बिया तो उपयोग में कोनी कर सकानी, पण इरा काचा और पकोड़ा फल है, बा में विशेष प्रकार रो तीखो और कड़वो स्वाद होवे है। इरे फूलारी कड़िया फूल और कच्चा हरा फल है, बारो उपयोग सब्जी अचार और चटनी रे रूप में करियो जावे है। और केरा फल है, बार और भी कई बांसू बीरो केर रो पानी सूखा परार बिना निर्जलीकृत कर पछे उत्पाद बनाया जावे है। संसाधनारी खराब परिस्थितियां और कम कृषि आदान रसागे हिरी खेती किसान भया वास्ते आर्थिक रूप से घनी लाभदायक साबित हो सके है। जे आप इरी खेती करनी चाहो तो इर वास्ते इरी माटी और जलवायु री बात करा, ओ पौधो मरुस्थलीय प्रकृति रो होवे है, जिके वास्ते शुष्क गर्मी और तेज धूप अच्छी रेवे है। जिन क्षेत्रा में वार्षिक वर्षा 30-40 सेंटीमीटर होवे है, उन क्षेत्रा में केरा पौधा अच्छो उत्पादन देवे है। इरा पौधा 48-50 डिग्री सेंटीग्रेड तई तापमान सहन कर जीवित रह सके है। सर्दियां रे दिना में जे तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या जमाव बिंदु तई भी जाप रेवे, भी स्थिति में भी केर रो पौधो जीवित रहे है। केर री उत्तम खेती सारू 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सर्वोत्तम मान्यो जावे है। केरी खेती वास्ते माटी की बात करा तो सगड़ा प्रकार की माटी में यदि खेती करी जा सके है, पण कम उर्वरता या अन उपजाऊ माटी है या पचे क्षारीय माटी उसर रेतीली कंकरीली पथरीली माटी में भी ओ अच्छी पैदावार दे सके है। केर रो पौधो जड़ भराव सारू संवेदनशील होवे है और इरो पौधो लवण सहिष्णु होवण रे सागे सागे माटी रो सुधार करपरार बीरे पीएच मान ने कम करने में सहायता करे। इरी उन्नत किस्मारी बात करा तो केरी खेती अबार ताई व्यावसायिक रूप से कोनी करी जा रही। इरो कारण है के कोई भी उन्नत किस्म भी विकसित कोनी करी जी। केरी नुवी उन्नत किस्मा विकसित करण वास्ते स्थानीय स्तर माथे और प्राकृतिक परिवर्तनशीलता ने विकास री प्रवृत्ति झाड़ी और पेड़ फल रो आकार बड़ा और छोटा फल रो रंग हरो और बैंगनी बीज रो आकार कोमलता और कच्चे फला में अम्लता रसागे पक्योड़े फला में गुदा और गुण रे बारे में आशाजनक जीनो टाइप रो चयन करियो जा सके है। आज रे इन समय में आपारी कई संस्थावां केर री उन्नत किस्म विकसित करण सारू प्रयास कर रही है। पौधा रोपण री बात करा तो केर बिया तो सामान्यतः अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्री उसर और बंजर भूमि माथे प्राकृतिक रूप से उगण आलो पौधो है, पण आज रे समय में जे कोई इरी खेती ने व्यावसायिक और किसान वास्ते लाभप्रद बनानी चाहे तो केर रे पौधा री रोपाई करण री विधि और निश्चित दूरी ने तय करने री जरूरत है। व्यावसायिक रूप से रोपण करण सारू सबसे पहली खेत री अच्छी तरह साफ सफाई कर लो, जुताई कर लो और अबे त्यार खेत में 5x5 मीटर की दूरी माथे 50x50x50 सेंटीमीटर आकार रा गड्ढा रोपाई वास्ते 1 महीने पहली तैयार करना चाहिए। बीर पछे त्यार गड्ढा ने माटी और अच्छी तरह सड़ोड़ी गोबर की खाद सु त्यार मिश्रण ने खड्डा में जमीनी सतह सु 10-15 सेंटीमीटर ऊपर तई भर देना चाहिए। फिर जब 1-2 बिरखा हो जावे तो त्यार गड्ढा में 9-10 महीना रा त्यार पौधा है बे रोप देना चाहिए। केरा पौधा प्रवर्धन किया करा। केरा नुआ पौधा विकसित करण सारू सामान्यतः बीज रो उपयोग करियो जावे है, पण कठोर और अर्ध दृढ़ कलम और जड़ सरकस रे द्वारा भी इरो वानस्पतिक प्रवर्धन करियो जा सके है। बीज सु नुआ पौधा तैयार करण सारू परिपक्व या पक्योड़े फलां सु बीजा ने निकाल छायादार स्थान में सुखा लिया जावे है। बीरे पछे

0: थैली दे मायने माटी रेत सड़ोरी गोबर री खाद या केंचुआ खाद ने निश्चित मात्रा मायने मिलार त्यार मिश्रण ने थैलिया में भर बीज री बुआई जुलाई अगस्त महीने में करी जा सके। बीज ने बोण सारू 20 दिनारे पछे बीज अंकुरित हो जावे। इन भांत बीज रा तैयार करोड़ा पौधा 6-7 महीना में रोपण लायक हो जावे। प्रवर्धन री विधि जिया कलम सू सितंबर अक्टूबर महीने में तैयार पौधा कराया जा सके है। इन विधि में कलम ने 5000 PPM IBAA प्लस 1000 PPM थाइमिन घोड़सू उपचारित करना चाहिए। यहाँ करा तो कलम सू तैयार करोड़ो नयो पौधो है वो आपरे खेती वास्ते बेगो तैयार होर वो फल दे सके है।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में केयर से पोषण के साथ आय विषय पर जानकारी दे रहे थे श्री बजरंग सारस्वत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक भजन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति भवने गतसायं आयोजितस्य रक्षा अलंकरण समारोहस्य समये राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। उपराष्ट्रपतिः सी

0: पर किया करते हैं, भले ही हमें अपने कर्तव्यों का भान न हो, इन अधिकारों की लड़ाई को लड़ने का हक जो हमें मिला है वो हमारे संविधान के तहत मिला, और हमारे संविधान से ठीक पहले हमें आज़ादी मिली, तब जाकर के हमें हमारा संविधान और हमारे अधिकार दोनों मिले। अन्यथा उससे पहले तो गुलामी के जीवन में हमने हमेशा विदेशी आक्रांताओं का शोषण ही सहन किया है, शोषण ही झेला है। श्रोताओं, हमारी इस आज़ादी के लिए हजारों युवाओं ने अपने प्राण हंसते हंसते त्याग दिए। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए उन्होंने लंबा संघर्ष अपने जीवन में किया ताकि हमारी भारत भूमि, ताकि हमारा भारत देश, ताकि हमारी भारत देश का हर एक नागरिक स्वतंत्रता के माहौल में अपना जीवन जी सके, अपना विकास कर सके, अपना भविष्य देख सके, अपने लिए सपने बुन सके। आज 9 जून को हम उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि आज 9 जून का दिवस भी अपने आप में बेहद विशेष है, जो हमें उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है। उन्हीं में से एक स्वतंत्रता सेनानी जो आज के दिन महज 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु का ग्रास बन गए थे, वे व्यक्ति जिन्होंने आदिवासियों के जीवन में स्वतंत्रता दिलाने के लिए संघर्ष किया, नाम है उनका बिरसा मुंडा। जननायक बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है आज 9 जून को। इनका जन्म 25 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलिहाती गांव में हुआ था। इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ, उनके शोषण के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था और सभी आदिवासियों को संगठित करने के लिए, उन्हें एकजुट बनाए रखने के लिए बिरसा धर्म, बिरसाइत की शुरुआत भी की थी और अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक को समाज को जागरूक किया था। उनके जन्मदिवस 15 नवंबर को भारत सरकार द्वारा जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है। आज उनके जीवन, उनके संघर्ष और स्वतंत्रता में उनके आंदोलनों में उनका योगदान से जुड़ी जानकारी हम आज जानेंगे वार्ताकार श्री हेमंत शर्मा से। उनकी वार्ता में विषय है, हमारे लिए प्रेरणादायक है बिरसा मुंडा का जीवन। प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेखा की, संयोजन श्री अमित सिंह का। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल शहरों और बड़े नेताओं तक ही सीमित नहीं था। देश के जंगलों, पहाड़ों और दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में भी आज़ादी की ऐसी चिंगारियां जल रही थी जिन्होंने अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। उन चिंगारियों में सबसे तेज प्रकाश थे बिरसा मुंडा, जिसने अपनी साहस, संघर्ष और बलिदान से अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। आज हम स्मरण कर रहे हैं धरती आबा महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी समाज के गौरव और जननायक बिरसा मुंडा जी को। बिरसा मुंडा जी का जीवन केवल 25 वर्षों का था, लेकिन इतनी छोटी आयु में उन्होंने जो कार्य किए वे उन्हें इतिहास के अमर नायकों की श्रेणी में स्थापित करते हैं। उन्होंने अपने समाज को आत्मसम्मान, स्वाधीनता और संघर्ष की नई दिशा दी। भारत की सांस्कृतिक विविधता में आदिवासी समाज का विशेष स्थान है। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बिहार के अनेक क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासी समुदाय अपनी परंपराओं, संस्कृति, प्रकृति प्रेम और सरल जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। इन क्षेत्रों में विशेष रूप से मुंडा जनजाति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा ने इसी समाज

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। श्रोताओं, जिस आज़ादी की आबो हवा में हम सांसें ले रहे हैं, जिस संविधान की बात हम पग पग पर किया करते हैं, जिन अधिकारों की बात हम अक्सर विभिन्न कार्य

से निकलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया और आदिवासी समाज को नई चेतना प्रदान की। बिरसा मुंडा क्षेत्र की आदिवासी जीवन शैली प्रकृति के साथ सामंजस्य, सामूहिकता, परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड राज्य के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा तथा माता का नाम कर्मी हातू था। वे मुंडा जनजाति से संबंध रखते थे। उनका परिवार अत्यंत साधारण और जीवन बहुत कठिन परिस्थितियों में बीतता था। उस समय आदिवासी समाज पर अत्याचार चरम सीमा पर था। अंग्रेजी शासन, जमींदारों और साहूकारों ने आदिवासियों की जमीनें छीन ली थी। जंगलों पर उनका अधिकार समाप्त किया जा रहा था। जिन जंगलों और जमीनों को आदिवासी अपनी माता मानते थे, उन्हीं से उन्हें दूर किया जा रहा था। गरीबी, शोषण, अन्याय और भेदभाव ने आदिवासी समाज को कमजोर कर दिया था। बिरसा बचपन से ही यह सब देख रहे थे। वे अपने लोगों की पीड़ा को गहराई से महसूस करते थे। यह पीड़ा आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बनी। बचपन में बिरसा मुंडा बहुत तेज बुद्धि के थे। वे पढ़ाई में रुचि रखते थे और जर्मन मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था आदिवासी संस्कृति और धर्म को कमजोर करने का प्रयास कर रही थी। मिशनरी लोग आदिवासियों को अनेक धर्म और परंपराओं से दूर कर रहे थे। यह बात बिरसा को भीतर तक परेशान करती थी। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और अपने समाज के बीच में आकर उन्हें जागरूक करना शुरू किया। धीरे धीरे वे लोगों के बीच में एक आध्यात्मिक और सामाजिक नेता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। बिरसा मुंडा केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि वे एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने आदिवासी समाज को नशाखोरी, अंधविश्वास, सामाजिक बुराइयों से दूर रहने की प्रेरणा दी। वे लोगों से कहते थे कि यदि हमें मजबूत बनना है तो हमें अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने आत्मसम्मान को बचाना होगा। उन्होंने लोगों को साफ सफाई, सत्य, ईमानदारी और एकता का संदेश दिया। उनकी वाणी में इतना प्रभाव था कि हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए। वे उन्हें धरती आबा अर्थात धरती पिता कहकर पुकारने लगे। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे उलगान अर्थात महान क्रांति कहा जाता है। इस आंदोलन का उद्देश्य आदिवासियों को उनके अधिकार दिलाना और अंग्रेजी शासन के अन्याय का विरोध करना था। उन्होंने लोगों में स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा की। उलगुलान केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण का भी प्रतीक था। बिरसा मुंडा ने लोगों को अपनी पहचान बनाए रखने और अन्याय के सामने न झुकने की प्रेरणा दी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि यदि समाज संगठित हो जाए तो बड़ी से बड़ी शक्ति का भी सामना किया जा सकता है। अंग्रेजी सरकार बिरसा मुंडा के बढ़ते प्रभाव से घबरा गई। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन जेल और कठिनाइयाँ भी उनके साहस को कमज़ोर नहीं कर सकी। वे लगातार अपने लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। यह आंदोलन अंग्रेजी शासन और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ था। बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज को संगठित कर यह संदेश दिया कि अब अन्याय और गुलामी को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने नारा दिया, अबुआ दिसुम अबुआ राज, अर्थात हमारा देश हमारा शासन। यह केवल एक नारा नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की घोषणा थी। बिरसा मुंडा चाहते थे कि आदिवासी समाज को उसकी जमीन, जंगल और जल पर फिर से अधिकार मिले। वे चाहते थे कि आदिवासी अपने जीवन का निर्णय स्वयं करें। धीरे धीरे हजारों आदिवासी बिरसा मुंडा के साथ जुड़ते चले गए। उनका आंदोलन झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में तेजी से फैलने लगा। अंग्रेज सरकार घबरा गई, क्योंकि पहली बार
आदिवासी समाज इतने बड़े स्तर पर संगठित

हुआ था। 1895 में अंग्रेज़ों ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। उन पर लोगों को भड़काने और अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह फैलाने का आरोप लगाया गया। उन्हें जेल में डाल दिया गया, लेकिन जेल की कठिन यातनाएं भी उनके हौसले को नहीं तोड़ सकी। 2 वर्ष बाद जब वे जेल से बाहर आए, तो उन्होंने फिर से अपने आंदोलन को और अधिक शक्ति के साथ शुरू किया। उन्होंने आदिवासी युवाओं को संगठित किया, लोगों में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने कहा कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। 24 दिसंबर 1899 को उलगुलान आंदोलन ने विशाल रूप धारण कर लिया। हजारों आदिवासियों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया। पुलिस चौकियों, जमींदारों और शोषकों के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। अंग्रेज सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सेना भेज दी। कई स्थानों पर संघर्ष हुए। अनेक आदिवासी वीरों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, लेकिन बिरसा मुंडा पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं थे। उन्होंने लगातार अपने लोगों का उत्साह बढ़ाया। वे कहते थे कि स्वतंत्रता और सम्मान के लिए संघर्ष करना ही सच्चा जीवन है। अंग्रेज सरकार बिरसा मुंडा से इतनी भयभीत हो गई थी कि उसने उन्हें पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया। अंततः 3 फरवरी 1900 को उन्हें चक्रधरपुर के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रांची जेल में बंद कर दिया गया। वहाँ उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने कभी अंग्रेज़ों के सामने सर नहीं झुकाया। और फिर आया वह दुखद दिन, 9 जून 1900। सिर्फ 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में बिरसा मुंडा का निधन हो गया। उनकी मृत्यु आज भी रहस्य बनी हुई है। महान व्यक्तित्व कभी समाप्त नहीं होते। उनका बलिदान युगों तक प्रेरणा देता रहता है। बिरसा मुंडा का संघर्ष केवल आदिवासियों के लिए नहीं था, बल्कि पूरे भारत की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए था। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि जंगलों और पहाड़ों में रहने वाला समाज भी देश की स्वतंत्रता के लिए बड़े से बड़ा बलिदान दे सकता है। आज भारत सरकार और पूरा राष्ट्र बिरसा मुंडा को महान जननायक के रूप में सम्मान देता है। उनके नाम पर विश्वविद्यालय, संस्थान, पार्क, हवाई अड्डे और अनेक योजनाएं बनाई गई है। भारत सरकार ने वर्ष 2021 में उनके जन्मदिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। यह केवल एक दिवस नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के गौरव और सम्मान का प्रतीक है। आज भी झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूरे भारत में बिरसा मुंडा को श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया जाता है। बिरसा मुंडा का जीवन अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। पहली शिक्षा है साहस की। उन्होंने शक्तिशाली अंग्रेजी शासन का सामना किया और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई। दूसरी शिक्षा है नेतृत्व की। उन्होंने अपने समाज को एकजुट किया और लोगों में आत्मविश्वास जगाया। तीसरी शिक्षा है समाज सेवा की। उन्होंने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के उत्थान के लिए कार्य किया। चौथी शिक्षा है अपनी संस्कृति और पहचान के सम्मान की। उन्होंने अपनी परंपराओं और मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। पांचवी शिक्षा है दृढ़ संकल्प की। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं किया। उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज जब हमारा देश विकास के नए मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, तब हमें बिरसा मुंडा के विचारों को याद रखना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि राष्ट्र की शक्ति उसकी विविधता और एकता में होती है। आदिवासी समाज हमारी संस्कृति और इतिहास का अमूल्य हिस्सा है। उनके सम्मान और अधिकारों की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। आज इस शहीदी दिवस पर हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश की एकता, अखंडता और संस्कृति की रक्षा करेंगे। हम समाज में न्याय, समानता और भाईचारे की भावना को मजबूत करेंगे।

आपने सुनी वार्ता हमारे लिए प्रेरणादायक हैं बिरसा मुंडा का जीवन विषय पर वार्ताकार श्री हेमंत शर्मा, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेघा की, संयोजन श्री अमित सिंह का।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
1: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, संविधान के तहत हमें कई अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें कि शिक्षा का अधिकार है, जिसमें कि स्वास्थ्य का अधिकार है, और भी ऐसे कई अधिकार कि आप अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं और आप किसी भी बात पर अपना प्रतिक्रिया, अपनी रिएक्शंस दर्ज करवा सकते हैं। ऐसे कई मौलिक अधिकार हैं जो हमें एक स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार देते हैं, और यह अधिकार हमें हमारे भारत देश के संविधान से प्राप्त हैं। बात अगर हम अधिकारों की करें तो हमें इस बात पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि अधिकारों से ज़्यादा, अपने हक से ज़्यादा, हमें अपने कर्तव्यों का भान होना चाहिए। अगर हम इस चीज़ का कर्तव्य पालन नहीं कर सकते कि हमारा देश स्वच्छ होना चाहिए, हमें कचरे का उचित निस्तारण करना चाहिए, या फिर हमें किसी भी तरह से जो पब्लिक प्लेस है उनकी सफाई है, साफ सफाई है, उसमें व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए और स्वच्छ रहने की आदत डालना चाहिए। अगर ये सब चीज़ों की जो आदत है या कर्तव्य है, अगर हम इसका पालन नहीं कर रहे तो फिर अधिकारों की बात करना व्यर्थ है। वे लोग मूर्ख नहीं, महामूर्ख की श्रेणी में आते हैं जो कर्तव्यों का पालन तो करते नहीं, अधिकारों की बात, हक की बात पहले किया करते हैं। यह प्रकृति का भी नियम है। अगर आप अपना कर्तव्य पूर्ण करते हैं, कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो प्रकृति स्वतः आपको उसके अनुसार, उसके अनुरूप सुखद परिणाम देती है। लेकिन अगर आप कर्तव्यों से पल्ला झाड़ लेते हैं, जैसे कि आपका कर्तव्य है कि आप अपनी मदर नेचर का संरक्षण करें, पेड़ लगाएं, वन्यजीव की सुरक्षा करें, अगर आप ऐसा नहीं करते तो पर्यावरण का नाश होगा और मानव सभ्यता का नाश होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमारा पर्यावरण हमेशा स्वच्छ रहे, संरक्षित रहे, और इससे मिलने वाली जो फसलें हैं, इससे मिलने वाले जो फ्रूट्स हैं, इससे मिलने वाला जो भोजन है, वह हमें ही नहीं हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम हमारे पर्यावरण के प्रति जो कर्तव्य होते हैं उनका संपूर्ण पालन करें। और अब हम पालन करते हैं समय का, क्योंकि समय कार्यक्रम सुप्रभात का हो रहा है पूरा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए अदनान सामी और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म का नाम है लकी।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

वास्तव फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, स्वर थे सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति के। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है हीरो, स्वर है राहत फतेह अली खान का।

थानेदार फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना बप्पी लहिरी, अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है एक पहली लीला, स्वर है मोहित चौहान का।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है प्रस्तुत हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन

0: प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गृह मंत्रालय ने कहा है ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
3: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
5: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
4: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाई

0: खरीदना बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
1: यहाँ पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
0: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जाँच जारी है। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1 लाख के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांतिवार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणी श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तर

0: राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दामबुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू लॉन्च लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम इन न्यू दिल्ली टुडे। 5-day ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग टू बिगिन टुडे इन इंदौर, मध्य प्रदेश। Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merivex after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. US federal court strikes down President Donald Trump's $1,00,000 H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation Series at Dambulla this morning. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. More details from our correspondent.
3: The Ministry of Home Affairs said that the launch of Land Portal Management System will be a landmark step in India's move towards a modern, technology-enabled border management system. It added that the platform aligns with the goal of strengthening trade facilitation, connectivity, national security, and the vision

से जन जन के द्वारा गाई जाती है, जो कि एक पीढ़ी अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को आज भी बड़े जोश व उत्साह के साथ सुनाती है। आदिवासियों के हृदय में रचे बसे बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलिहातू रांची जिला बंगाल प्रेसिडेंट वर्तमान में खुंडी जिला झारखंड के एक गरीब परिवार में हुआ। मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा व माता का नाम कर्मी मुंडा था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिशनरी स्कूल में हुई थी। कम उम्र में ही बिरसा मुंडा स्थानीय विद्रोही आंदोलन में भाग लेने लग गए थे। वहीं से उनके हृदय में आदिवासी हितों की रक्षा में जल जंगल जमीन की रक्षा प्राकृतिक संसाधनों का अंग्रेजों के द्वारा आदिवासियों को बेदखल कर उनकी जमीनों पर आधिपत्य जमाने लगे सभी आदिवासियों को एकजुट करते हुए अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा दिया था, जिसके कारण अंग्रेजी हुकूमत ने बिरसा मुंडा को कारावास में बंद कर दिया। परंतु बिरसा मुंडा आदिवासियों में एक बदलाव उलगान नक्शे कदम पर चलकर पूरी की। बिरसा ने जनजातीय एकता व आदिवासी हितों की रक्षा करते हुए आदिवासियों के हितार्थ अपने प्राणों को निछावर कर दिया था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं मुंडा जनजाति के लोक नायक बिरसा मुंडा ने 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंट में हुए एक आदिवासी धार्मिक सहशास्त्र आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसके कारण मुंडा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी अस्मिता स्वायत्तता और संस्कृति की संरक्षण में जन चेतना जागृत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। मुंडा की सेना में बिना बड़ी तोपों बंदूकों के तीर धनुष भाले व साहस के बल पर अंग्रेजों के हथियारबंद सैनिकों को पराजित किया था। इतिहासकार मानते हैं कि बिरसा मुंडा के जन युद्ध का भारतीय संस्करण खड़ा कर दिया, जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से कई दशक पहले शुरू हुआ था। जब उलगान की ज्वाला पूरे झारखंड में फैल गई तो अंग्रेजी सरकार भयभीत हो उठी। बिरसा को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने हजारों सैनिक तैनात किए, कई गांव जलाए गए, सैकड़ों निर्दोष लोगों को फांसी दी गई। फिर भी लोग बिरसा मुंडा के नाम पर अड़िंग रहे। आखिरकार 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के समीप जमकोबाई जंगल से मुंडा को धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजी सरकार ने बिरसा मुंडा की बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत होकर मुकदमा चलाया। मुंडा ने जेल में बंद रहने के दौरान भी अपने साथियों को प्रेरित किया एवं करते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा एवं 25 वर्ष की आयु में 9 जून 1900 को मुंडा का निधन हो गया। मुंडा के निधन का कारण अंग्रेजों ने कालरा बताया, जबकि जनमानस का मानना है कि मुंडा को जहर देकर मारा गया था। उनके निधन पर अंग्रेजों ने मौन साध लिया, लेकिन जनता ने कहा कि धरती आभा मरे नहीं, धरती में समा गए। मुंडा के निधन के बाद भी उलगान की गूंज थमी नहीं, उनके विचार जंगलों में हवाओं में घुल गए। बिरसा मुंडा ने जो बीज बोया था, जो स्वतंत्रता आंदोलन का विशाल वृक्ष बन गया। बिरसा मुंडा ने कहा, हम मर सकते हैं पर झुक नहीं सकते। मुंडा ने धरती माता हमारी माँ है, इसे बेचना पाप है, यह कथन आज के पर्यावरण विमर्श का सार है। बिरसा मुंडा ने बिना किसी जातीय विदेश मानवता की धर्म की स्थापना मुंडा कहते थे। ईश्वर सबका है, लेकिन धरती पर सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। बिरसा ने अपने छोटे से जीवन में वह कर दिखाया जो बड़े से बड़े सेनानायक भी नहीं कर सके। मुंडा ने धरती के अधिकारों को मानव अधिकार का दर्जा दिलाया। उनका जीवन एक संदेश है, जो अपनी मिट्टी से प्रेम करता है वही सच्चा देशभक्त है। बिरसा मुंडा का जीवन हमें प्रेरित करता है और सदैव मानवीय

गुणों की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। अपनी प्रगति की रक्षा के खातिर बलिदान भी देना पड़े तो सहर्ष दे देना चाहिए, क्योंकि प्रगति हमारी माँ है। जल, जंगल और जमीन बचे रहेंगे तो ही मानव का अस्तित्व बचा रहेगा। प्रगति का संतुलन बनाने के लिए जरूरी है कि हम प्रगति से उतना ही लेवें जितना उसे वापस लौटा सकें। मानवीय मूल्यों का दमन करने वाली नीतियों का खुलकर विरोध करें, जिससे हम अपने हितों की रक्षा कर सकें। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय समुदाय के बलिदान, संस्कृति और विरासत का सम्मान करने तथा उनके साहस और राष्ट्र निर्माण की कहानियों को राष्ट्रीय चेतना में लाने के लिए जनजातीय गौरव वर्ष मनाने की शुरुआत 15 नवंबर 2024 को झारखंड के खुंडी जिले से की। जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा 1 नवंबर से 2015-24 से शुरू होकर 1 नवंबर 2015-2025 तक मनाया जा रहा है। भारत के जनजातीय नायकों बिरसा मुंडा, उनकी संस्कृति, पराक्रम, दूरदर्शिता और योगदान को भावभीन श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में बड़े उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है। पखवाड़ा भर चलने वाला यह उत्सव भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले जनजातीय गौरव वर्ष का हिस्सा है। भगवान बिरसा मुंडा देश के सम्मानित जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक और औपनिवेशिक उत्पीड़न के विरुद्ध प्रतिरोध के एक स्थायी प्रतीक थे। जनजातीय गौरव वर्ष का सम्मान 15 नवंबर बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर होगा। उनका उद्देश्य देश के आदिवासी समुदायों के गौरव, संस्कृति, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए किया जा रहा है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम ने देश की सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़े को एक जन आंदोलन के रूप में मनाने का आह्वान किया है। इसमें पूरे देश में जनजातीय समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान, विरासत, ज्ञान प्रणालियाँ, उपलब्धियाँ को प्रदर्शित किया जाएगा। हिमालय से लेकर तटीय मैदानों तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 नवंबर 2025 को जनजातीय गौरव दिवस और गौरव स्मरण की साझा भावना को दर्शाते हुए सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामुदायिक उन्मुक्त कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की शुरुआत की। इस श्रृंखला के अनुसार जम्मू कश्मीर, मेघालय, राजस्थान, मणिपुर, आंध्र प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती एवं जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़े के अंतर्गत एनएपी शिक्षा शास्त्र व दक्षता निर्माण कार्यशाला व कला व संस्कृति के तहत मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ चित्रकला, निबंध, भाषण प्रतियोगिताओं के माध्यम से बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में प्रकाश डाला जाएगा और विस्तार से बताया जाएगा। जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़े में जनजातीय पहचान का जश्न मनाने, स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को प्रदर्शित करने और जनजातीय सशक्तिकरण के लिए सरकारी पहलों के बारे में जागरूकता, जन चेतना लाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी मंच के रूप में कार्य करता है। पखवाड़े का समापन 15 नवंबर 2025 को जनजातीय गौरव दिवस के भव्य आयोजन के साथ होगा। बिरसा मुंडा ने कहा था कि असली वीरता सत्ता पाने में नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होने में है। बिरसा मुंडा की जयंती केवल स्मृति नहीं है, ये एक आह्वान है। जहां अन्याय दिखे वहां बिरसा की आत्मा को पुकारो। बिरसा मुंडा ने अपने छोटे से जीवन में आदिवासियों को एकता के सूत्र में बांधा। उनके कारण ही आदिवासियों के द्वारा जल, जंगल, जमीन की रक्षा हेतु कार्य किए जा रहे हैं। झारखंड सहित आदिवासी बाहुल्य राज्यों में आज भी लोकगीतों, जनमानस, नृत्य रूपों, नाट्य परंपराओं में आज भी वह जीवित है। उन पर विभिन्न फिल्में बनी, कविताएं लिखी गई, जनजातीय गीत रचे गए। धरती आबा बिरसा झूमे, जंगल बोले हाय रे, उनकी गाथाएं आज भी नई पीढ़ी को संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। आज भी जब झारखंड की पहाड़ियों में हवा झूमती है तो ऐसा लगता है मानो धरती आबा कह रहे हूँ, अबुआ दिशम, अबुआ राज्य। सभी देशवासियों को आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। धन्यवाद।

सौरभ कार्यक्रम में अभी आपने सुनी वार्ता आदिवासी क्रांति और वीरता के प्रतीक बिरसा मुंडा विषय पर। वार्ताकार श्रीमती कांता मीणा।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा। वाचक स्वर हैं श्रीमती मधु शर्मा के, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेगा की, संयोजन श्री अमित सिंह का।
1: श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा।
2: रेडियो का सफरनामा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में जो आप ही की यादों पर आधारित है। श्रोताओं, हम बता दें कि इस कार्यक्रम के लिए हम पहले श्रोता से बात करके रिकॉर्डिंग का समय तय करते हैं और फिर उनके घर पर जाकर उनकी यादों और अनुभवों की रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर आकाशवाणी के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और डबिंग करके तैयार किया जाता है रेडियो का सफरनामा, जिसे आज के दिन यानी मंगलवार को संबंधित उद्घोषक इसे प्ले करते हैं, जिसे अभी आप सुन रहे हैं। आज के इस अंक में शामिल किया है वो ना सिर्फ श्रोता है बल्कि आकाशवाणी के ड्रामा आर्टिस्ट भी है। आपने इनकी आवाज़ आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों में सुनने के साथ साथ नाटकों में भी सुनी है।
3: जी, मैंने स्टेज बहुत किया था, फिर उसके साथ साथ आकाशवाणी में बहुत किया, तो दोनों से मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला और उसके कारण नाम भी बहुत मिला मुझे। मतलब आप आश्चर्य करेंगे कि जितनी प्रसिद्धि मुझे आकाशवाणी ने दी ना, उतनी तो शायद कहीं से नहीं मिल सकती थी।
2: पहचान ही लिया होगा आपने श्रोताओं। जी हाँ, आप हैं संगीता झा। चलिए जानते हैं कैसे आप पहली बार आकाशवाणी गई।
3: असल में शुरू से मुझे गाने सुनने का बहुत ज्यादा शौक था, तो मैं रेडियो बहुत ज्यादा सुनती थी। फिर जब मैं महारानी स्कूल में पढ़ती थी तो उसके ठीक सामने आकाशवाणी की बिल्डिंग बन रही थी और वो मुझे बस उत्साह होता जाएगा, मेरे को लग रहा था कि मैं कब इस बिल्डिंग में जाऊँ, कब ये पूरी हो, कब मैं इसमें जाऊँ। जब वो बिल्डिंग पूरी हुई तो वहां से

0: ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई। उस समय मैं छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो ऐसे ही स्कूल यूनिफॉर्म में बैग लटका के आकाशवाणी चली गई। मतलब वहाँ कोई अधिकारी थे, मैं बहुत पुरानी बात है, मैं उनका नाम मुझे पता नहीं, तो मुझे देखते एकदम कहने लगे, बच्चे किससे मिलने के लिए आए हो? मैंने कहा नहीं, मुझे तो ना प्रोग्राम देना है। कहते आप प्रोग्राम दोगे? मैंने कहा हाँ प्रोग्राम देना है। कि किसके साथ आए हो? मैंने कहा अकेले आ गई हूँ, स्कूल से आई हूँ। क्या अकेले स्कूल से आ गए? मैंने कहा हाँ। तो कहते क्या प्रोग्राम दोगे? मैंने कहा जो आप कहोगे मैं वो दे दूंगी। कहते आपकी उम्र के हिसाब से तो आप मुकुल दे सकते हो बस। तो मैंने ठीक है, मैं मुकुल दे दूंगी। मतलब वो इतने इम्प्रेस हुए ना, मतलब उनको लगा कि कोई बच्चा अकेला कैसे आ गया बिना माता पिता के अपने, क्योंकि अधिकतर बड़े लोग भी पेरेंट्स के साथ आते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा कल आना आप, संडे वाले दिन। उस समय संडे को होता था मुकुल और लाइव होता था कि आप आना, फिर आपका प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो मैंने मुकुल से आकाशवाणी का सफर शुरू किया था।
1: क्या बात है, स्वयं ही आकाशवाणी चले जाना और अपनी रिकॉर्डिंग की बात स्वयं ही कर लेना। आइए सुनते हैं पहली रिकॉर्डिंग के बाद क्या हुआ, कौन से कार्यक्रम से आप जुड़ी।
0: उसके बाद मैंने युववाणी कार्यक्रम शुरू किया, और युववाणी उस समय नया नया चला था, तो नवतरंग नाम से था शायद उस समय वो, नवतरंग। तो नवतरंग कार्यक्रम शुरू करने के लिए बहुत लोगों में जोश था कि हम भी जाएंगे। मैंने कहा मैं भी जाऊंगी। तो मैं बस वहाँ सब उन्होंने गई तो बात की, तो उन्होंने कहा मैडम एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फिर वॉइस टेस्ट होगा, अगर आप वॉइस टेस्ट में पास हुए तो फिर आपको ये कार्यक्रम दे सकते हो। तो सब लोगों के साथ मैंने भी एग्जाम दिया, वॉइस टेस्ट दी और सेलेक्ट हो गए। ये नवतरंग कार्यक्रम जो था वो देखते थे शायद आरपी मीणा जी, वो पहले व्यक्ति थे, उन्होंने भी मुझे बहुत मतलब टचवुड कहना चाहिए जितने अधिकारी थे ना आकाशवाणी में, पता नहीं उनका वरद हस्त रहा मेरे ऊपर, उन्होंने सबने मुझे बहुत हाथों पे रखा, मतलब प्यार से। एक तो मैं हमेशा किसी को मना नहीं किया किसी काम के लिए, मैंने कोई प्रोग्राम होता बीच में ये देना है हाँ दे दिया। तो बस फिर नवतरंग दिया, और वो नवतरंग पता नहीं मेरा इतना ज्यादा फेमस हुआ कि बहुत सारे लोगों की फरमाइश आई कि हमें एक बार और सुनना है।
1: और फिर आप बन गई अस्थाई उद्घोषक, क्या अनुभव रहा सीनियर कलाकारों और अधिकारियों के साथ?
0: चंचल हर्ष जी थे, गिरधर व्यास जी थे, अरविंद गोस्वामी जी थे, मतलब इन लोगों ने मुझे काफी सिखाया। हालांकि उस समय सरोज जी भी थे, और इन लोगों ने मतलब बहुत सपोर्ट किया मुझे और सिखाया भी, और विशेष तौर से यशपाल जी ने तो बहुत ज्यादा सहयोग किया और चंचल जी ने। तो मैंने मॉर्निंग ड्यूटी भी की, अधिकारी थे उस समय लक्ष्मीनारायण वाजपेयी जी, एस के सिन्हा जी, खरे जी, कमर अहमद जी, और एक आचार्य जी थे नाटक के, उन्होंने मुझे नाटक के लिए एंकरेज किया कि आप है ना नाटक के लिए वॉइस टेस्ट दो। तो मैंने कहा कि हालांकि स्टेज पर तो मैं बहुत करती थी, लेकिन आकाशवाणी में उस समय मैंने नहीं किया था नाटक। तो उन्होंने कहा एक बार आप आकाशवाणी में वॉइस टेस्ट दीजिए। मैंने कहा ठीक है। आकाशवाणी में वॉइस टेस्ट दिया तो पहली बार मैं बी हाई ग्रेड की सिलेक्ट हुई थी आकाशवाणी के लिए, और उस समय बहुत कम लोग सिलेक्ट हुए थे।
1: संगीता झा मंचीय कलाकार तो थी ही, लेकिन आकाशवाणी की नाटक कलाकार कैसे बनी, आइए सुनिए।
0: नाटक तो ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट दे दी जाती है, आपको उसके हिसाब से करना है। बाकी जो आकस्मिक उद्घोषक है उसके लिए आपको खुद को सारा तैयार करना पड़ता है प्रोग्राम। जैसे मैंने हर प्रोग्राम दिया है, ग्रामीण जगत भी दिया, महिला जगत भी दिया, सब कार्यक्रम दिए। उस समय मुकुल को भी मैंने ऑर्गेनाइज किया साथ में बैठ के, और युवाणी को भी साथ में बैठा, कंपेयर्स के साथ भी किया, के बीच बीच में दो दो तीन तीन सांसद बैठाते थे, वो भी किया हम लोगों ने मिलके। और बीच में चुटकुलों का भी एक प्रोग्राम होता था हास परिहास करके, वो भी हम मिलके अपने आप करते थे। उसके कारण उन्होंने मुझे कहा कि आप नाटक को भी तैयार कीजिए एक बार। मेरे साथ तो थी, एक तो संजीता कोचर थी, एक उषा पांडे थी, परितोष झा था, मुकेश शर्मा जी थे, और नासिर जदी भी थे, शाहिद अली थे, और अशफाक कादरी जी भी थे, मतलब जो उस समय महान महान थे ना, प्रकाश जी खत्री थे, सुरेश हिंदुस्तानी थे, सब लोग थे उस समय हमारे साथ में, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग थे उस समय। मैं उस समय काफी थोड़ी उनसे यंग पड़ती थी। मतलब
1: मंच और स्टूडियो में नाटक करने में क्या अंतर होता है, क्या बताया संगीता जी ने?
0: मेहनत तो बहुत ज्यादा लगती है, आपको एक एक शब्द को ध्यान से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, उनके भावों के हिसाब से चलना पड़ता है, प्लस उच्चारण पे विशेष ध्यान देना पड़ता है। स्टेज पे तो कई बार गलत भी बोल जाता है आदमी, लेकिन रेडियो के अंदर आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, 10 बार कट होता है वरना।

0: तो ये चीज विशेष होती है कि आपको शब्दों का बहुत ध्यान रखना है, शब्दों के साथ साथ आपके भावों को भी देखना है। वहां पर एक्टिंग नहीं कर रहे बट अपने मन से भाव निकालने हैं आपको, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। स्टेज पे तो आप एक्टिंग करें तो नेचुरल आपके भाव निकल जाएंगे, वैसे वहां बिना एक्टिंग की आपको अपने भावों को प्रदर्शित करना पड़ता है। स्टेज पे क्या था, मैं थोड़ी ज्यादा ही खुली हुई थी उस समय, क्योंकि मैं क्लासिकल डांसर थी, राजस्थान की टॉपर थी उस समय कथक की, और राजस्थानी लोक नृत्य की भी अच्छी डांसर थी मैं, प्लस नाटक भी। तो वो स्टेज का मुझे कभी डर बैठा नहीं, मतलब क्योंकि मैंने स्टेज बहुत किया था, फिर उसके साथ साथ आकाशवाणी में बहुत किया, तो दोनों से मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला और उसके कारण नाम भी बहुत मिला मुझे। मतलब आप आश्चर्य करेंगे, मैं बताना नहीं चाहती, आपको ये कहना नहीं चाह रही हूँ कि जितनी प्रसिद्धि मुझे आकाशवाणी ने दी ना, उतनी तो शायद कहीं से नहीं मिल सकती थी। मेरा कोई प्रोग्राम है बिहार तक ब्रॉडकास्ट हुआ था कोई, तो वहाँ के कोई विधायक थे शायद, उन्होंने एक पत्र लिखा वहाँ से, क्योंकि हमारी कास्ट अधिकतर उस तरफ ज़्यादा है, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई यहाँ कोई व्यक्ति राजस्थान में प्रोग्राम दे रहा है। विधायक थे शायद रघु झा, ऐसे कोई थे, उन्होंने सिर्फ संगीता झा और बीकानेर लिखा, और वो पत्र मेरे पास आ गया। तो जब उसका रिप्लाई दिया तो उनको आश्चर्य कि आप इतने फेमस है कि आपके नाम से पत्र आपके पास पहुंच गया। तो ये सिर्फ आकाशवाणी की बदौलत हुआ मुझे।
1: श्रोताओं, आज स्टूडियो में कंप्यूटर लगे हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डिंग होती थी और उद्घोषक को प्रसारण से पूर्व कुछ विशेष तैयारियां करनी होती थी। क्या कहा अपने अनुभवों में संगीता जी ने?
0: कैसेट छांटते थे, LP निकालते थे, अब आकाशवाणी की लाइब्रेरी में जाके निकलवाना, कई बार वहाँ कोई नहीं होता, खुद बैठ के निकालो आप करो, अगर मान लो छुट्टी पर है तो। पूरा पूरा दिन इसी में लग जाता था, हम तैयारी कब करें यही समझ जाता था कई बार तो। और बहुत मटेरियल होता था उस समय, अब तो बहुत ज्यादा सुविधा हो गई कि आपको एक पहले रिकॉर्ड कर लो सब कुछ, सिर्फ बजाना है, प्ले करना है। हमारा सब कुछ ऑन एयर होता था उस समय, जो भी था। मुझे बहुत अच्छा लगता था डायरेक्ट ऐसे काम करना है, पता नहीं क्यों आदत थी मेरी कि जो भी करना अच्छे से करना है। जी, कार्यरत थी वहाँ भी, बहुत लोगों ने सहयोग दिया, वो भी आकाशवाणी के कारण। हमारे बॉस थे मिस्टर CB शारदा, जो IGLP के हेड थे पहले, वो भी रेडियो सुनते थे और विशेष तौर से मुझे सुनते थे, मुझे नहीं पता था ये बात। जब वो, उनकी जो बेटी थी वो मेरी फ्रेंड थी, तो उनके जब घर गए ना तो उनकी वाइफ, मतलब अरे आंटी बोलती है ये तेरे सारे प्रोग्राम सुनते हैं। मैंने कहा क्या, मतलब वो ऐसे व्यक्ति थे जो किसी से हंस के कभी बात नहीं करते थे, मतलब बिल्कुल एकदम, आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कोई इतनी बड़ी पोस्ट वाला व्यक्ति इतना सीधा इतना सिंपल कैसे हो सकता है। और उन्होंने भी मुझे बहुत बहुत सहयोग किया, मैं नहीं कह सकती, मतलब मुझे जिंदगी में बहुत अच्छे लोग मिले, मैं ये कह सकती हूँ कुछ लोगों को छोड़ के बस। तो सुख दुख हमेशा चलता है, बाकी अच्छे लोग मुझे बहुत मिले भगवान की दया से।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी ने सामाजिक पारिवारिक संस्कार, समय प्रबंधन और संप्रेषण का कौशल भी सिखाया है और अभी भी सिखा रहा है। इस संबंध में जब संगीता जी से पूछा गया तब आपने कहा,
0: मेरी खुद की भी समय से चलने की बहुत आदत है, अभी भी कोई रिकॉर्डिंग होती है सबसे पहले मैं ही पहुंचती हूँ, फिर हंसती हूँ, मैंने कहा मुझे लेट आना चाहिए, लेकिन आदतें खराब हो गई हमारी आकाशवाणी के कारण, अभी भी समय पर पहुंचते हैं हर जगह। कई जगह जहाँ मैं लेट जाती हूँ ना, वो कोशिश करके ही जाती हूँ, तो मुझे पता वो समय से शुरू नहीं होगा, फिर वहाँ बैठे रहो फालतू में, इसलिए मैं लेट जाती हूँ कभी कभी। बाकी अभी भी मेरी कोशिश रहती है कि जो समय दिया उसी में पहुंचा जाए, अभी भी मैं रिकॉर्डिंग में हमेशा टाइम से पहुंचती हूँ।
1: संगीता जी आकाशवाणी की सफल नाटक कलाकार है, एक अनुभव ये भी सुनिए।
0: नंदकिशोर आचार्य जी थे, उन्होंने एक नाटक था उनका देहांतर, उसको जो आचार्य जी मैं बता रही हूँ उनका मैं प्रॉपर नाम नहीं याद कर रही, जो आकाशवाणी में ड्रामे के थे वो आचार्य जी थे, उनका भी नाम इसी तरह से था, नंदकिशोर जी थे लेकिन नाम शायद कुछ और था, वो भी आचार्य थे। उन्होंने उस देहांतर नाटक को करवाया था और देहांतर नाटक में शर्मिष्ठा का रोल किया था मैंने। ये नाटक था मतलब ययाति, आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना मुझे नहीं पता, और उनकी पत्नी के ऊपर था। मतलब राजा था, वो अपने समय के हिसाब से एज बढ़ती जा रही थी तो बूढ़ा हो रहा था, बट वो चाहता नहीं था कि मैं बूढ़ा हूँ। तो वो किसी ने उनको बोला, साधु या जो भी थे, कि भाई अगर आपकी जगह कोई बुढ़ापा लेना चाहता है अपना, तो आपको यौवन मिल जाएगा, उनका यौवन आपको मिल जाएगा और आपको उनका बुढ़ापा मिल जाएगा। अब कोई तैयार नहीं हुए, तो उनके पुत्र थे पुरु, तो उन्होंने उनका बुढ़ापा ले लिया नाटक के अंदर। तो वो मतलब पिता, अब जब भी वो अपनी पत्नी के पास में आते

0: पत्नी को वो अपने पुत्र का रूप दिखते, क्योंकि जवानी होने के लिए पुत्र की थी, तो वो बार बार कश्मा कश्मा रहती कि मुझे समझ नहीं आता कि दिए की लौ बुझ रही है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि मैं तुम्हें समर्पण करूं कि नहीं करूं। मुझे तुम पुत्र के रूप में दिखते हो, मैं कैसे तुम्हें समर्पित हूं। मतलब इतने सुंदर डायलॉग्स थे उसके अंदर, नंदकिशोर जी आचार्य के बहुत अच्छे लिखे थे उन्होंने। वो दिमाग में मेरे आज तक नाटक सबसे पहला नाटक शायद वही था जो मुझे बहुत पसंद आया था, और आज भी वो मेरे दिमाग के अंदर घूमता है जब भी कि कभी वो दोबारा हो तो मैं शायद दोबारा उसको करूं।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष होने पर क्या कहती हैं संगीता जी?
0: बहुत बहुत बधाई हम सभी को। मैं ये कहूंगी कि हम इसके साथ जुड़े हैं और इसने ऐसा सफर तय किया है कि जो मतलब छोटी से छोटी जगह से लेकर बड़ी से बड़ी जगह तक आकाशवाणी रहा है, चाहे गांव गुआर, मुझे गांव गुआर भी मैंने प्रस्तुत किया था इसलिए, गांवों में हो चाहे शहरों में हो, अभी भी लोग आकाशवाणी को सुनते हैं और मेरे ख्याल से सुनते रहेंगे, क्योंकि छोटी सी जेब में आपके आ जाता है आजकल ये इसलिए। और बहुत बहुत बधाई कहूंगी मैं आकाशवाणी को जो अपना इतना सुंदर सफर तय करके यहाँ

0: छोटी से छोटी जगह से लेकर बड़ी से बड़ी जगह तक आकाशवाणी रहा है, चाहे गांव गुवार, मुझे गांव गुवार भी मैंने प्रस्तुत किया था, इसलिए गांवों में हो चाहे शहरों में हो, अभी भी लोग आकाशवाणी को सुनते हैं और मेरे ख्याल से सुनते रहेंगे, क्योंकि छोटी सी जेब में आपके आ जाता है आजकल ये, इसलिए। और बहुत बहुत बधाई कहूँगी मैं आकाशवाणी को, जो अपना इतना सुंदर सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचा, और हार्दिक शुभकामनाएं भी दूंगी साथ में आपको भी और मुझे भी कि हम इसके साथ जुड़े हुए हैं।
1: तो सुना श्रोताओं, आपने संगीता जी ने मुकुल कार्यक्रम के माध्यम से आकाशवाणी में प्रवेश किया और विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी सुरीली आवाज देने के साथ साथ आज आकाशवाणी की नाटक कलाकार भी है। हमारे इस कार्यक्रम के सफर को अब यही विराम देना होगा, नए अंक के साथ अगले मंगलवार को फिर मिलेंगे। संयोजन था श्री अमित सिंह का, प्रस्तुति थी श्री रेवंत राम लेगा की, वाचक स्वर था मधु शर्मा का। अगले मंगलवार को आपसे पुनः भेंट होगी नई यादों के साथ। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफर।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा। वाचक सर श्रीमती मधु शर्मा के, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेघा की और संयोजन श्री अमित सिंह का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में, 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की शुरुआत। प्रदेश के बिजली निगमों के कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू होगा। और राज्य में एक बार फिर गर्मी ने जोर पकड़ा, श्रीगंगानगर में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ, और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है। ये बैठक 13 जून तक चलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में किसानों की आमदनी, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता, एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था

0: और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व सेवाएं दी जाती हैं। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपये का स्मारक सिक्का और 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। इससे पहले कल श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए हर साल प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। उन्होंने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
1: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया। इनमें 12 जिले के कुंजेड़ निवासी भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी भी शामिल हैं। ग्रुप कैप्टन अनिमेश को असाधारण वीरता, नेतृत्व और रणनीतिक कौशल के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए चलाए गए प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा के तीसरे चरण में 5,410 लोगों ने नशामुक्त राजस्थान का संकल्प लिया है। राजस्थान पुलिस के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की ओर से ये प्रोजेक्ट चलाया गया। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में पुलिस कार्रवाई के साथ साथ सामाजिक जागरूकता और जनभागीदारी भी जरूरी है। अभियान के दौरान स्कूल कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के आसपास 500 मीटर के दायरे को सख्ती से नशा मुक्त क्षेत्र बनाया गया। इसके अलावा नशीली गतिविधियों की गुप्त सूचना देने के लिए शिकायत पेटियां भी लगाई गई हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR News और Facebook AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के बिजली निगमों के कामकाज को पारदर्शी और अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए जल्दी ही एकीकृत ईआरपी यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रणाली लागू की जाएगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कल जयपुर में आयोजित बैठक में इसके लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था से निगमों में निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और कामकाज में कम खर्चा आएगा। साथ ही मानव संसाधन, वित्त, लेखा और परिसंपत्तियों के प्रबंधन जैसे काम एक ही प्लेटफॉर्म पर हो सकेंगे। इससे उपभोक्ताओं की बिलिंग और शिकायतों का निवारण भी आसान हो जाएगा। बैठक में ऊर्जा सचिव आरती डोगरा ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में करीब 1,95,00,000 से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं को डिजिटल सेवाओं का लाभ मिल रहा है। बिजली मित्र ऐप के जरिए लोग घर बैठे कनेक्शन और बिल भुगतान जैसी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश में 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। योग दिवस पर शिक्षण संस्थानों, पुलिस थानों, जेलों, प्रमुख पर्यटन और विश्व विरासत स्थलों पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक विशेष योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कल शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में इन तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों और जिला कलेक्टर को योग संगम पोर्टल पर अधिक से अधिक लोगों का पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा। इस वर्ष योग दिवस का विषय स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग रखा गया है। इस बीच प्रदेश भर में योगा डे काउंटडाउन कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। कल हनुमानगढ़ के नर्सिंग महाविद्यालय में एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इसमें आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक ने विद्यार्थियों को योग और प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व के

0: खापरी में बताया। भरतपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए ऑनलाइन योग सत्र आयोजित किया जाएगा। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने सभी विभागों को इस अभियान से अधिक लोगों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि वित्तीय प्रबंधन में तकनीक का बढ़ता उपयोग जवाबदेही को मजबूत कर रहा है। मुख्य सचिव ने कल जयपुर में वित्त भवन स्थित कोष और लेखा निदेशालय के निरीक्षण के दौरान ये बात कही। उन्होंने साइबर ट्रेजरी और ई ट्रेजरी की कार्यप्रणाली का जायजा लेते हुए वित्तीय प्रशासन को अधिक पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं को SNA स्पर्श पोर्टल पर जल्द जोड़ने और जस्ट इन टाइम भुगतान प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने को कहा। और अब मौसम। राज्य में एक बार फिर गर्मी का असर बढ़ने लगा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे तेज गर्मी और उमस महसूस की जा रही है। 45.6 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म शहर रहा। इसके अलावा फलोदी, बीकानेर और जैसलमेर में भी पारा 44 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में आगामी 2-3 दिनों तक मौसम शुष्क रहने और तापमान में 2-3 डिग्री की और बढ़ोतरी होने की आशंका जताई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में कहीं कहीं लू की स्थिति बन सकती है, साथ ही धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। दूसरी ओर राज्य के पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश का दौर कहीं कहीं जारी रहने के आसार हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण ने कल जगतपुरा के नंदपुरी अंडरपास क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अभियान के दौरान जेडीए के मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित 80 फीट चौड़ी सड़क को अतिक्रमण मुक्त किया गया। जेडीए के इस बड़े अभियान के दौरान सड़क सीमा में आ रहे 125 से अधिक अवैध निर्माणों और 5 धार्मिक ढांचों को हटा दिया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में। 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है। प्रदेश के बिजली निगमों के कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। और राज्य में एक बार फिर गर्मी ने जोर पकड़ा। श्रीगंगानगर में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
1: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
1: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
1: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
1: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टेक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है

0: श्रृंखला ये भी जानिए।
1: तो विमलेश जी, अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा?
0: अजीत जी, इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे।
1: जी,
0: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह। इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानो यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है।
1: जी हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान, शांति, अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
0: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं?
0: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
1: जैसे?
0: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
1: जी, सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
0: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
1: तो क्या क्या नियम है इसके?
0: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह।
1: वाह यानी?
0: यानी हारमोनी या सामंजस्य।
1: और दूसरा शब्द क्या है?
0: दूसरा शब्द है केई।
1: जी,
0: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
1: और श्रोताओ, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
0: श्रोताओ, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
1: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं। ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
0: जी, एक और खास बात यह है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
1: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
0: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है। बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह हो सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
0: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
0: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे श्रोताओं। इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
0: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
1: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ। पाए लागू बड़ी बहुरिया।
2: आ गए भैया।
1: हाँ।
2: लो ये पीढ़ी सर का लो, कुछ देर बैठ जाओ।
1: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है। जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी, आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर फटक रही है। कहां गए वो दिन? बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म हो गया।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: अरे देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
3: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
3: लो।
2: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।
3: और हाय,
4: हर गोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
3: कहाँ बड़ी बहुरिया?
4: मेरी माँ के पास।
3: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
4: माँ से कहना मैं भाभी भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए? किसके लिए?
3: बड़ी बहुरिया।

0: हर कोबिन भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिकर मत करिए। ये नोट रखिए,
0: अरे
1: हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: हाँ, अच्छा चलता हूँ।

संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब,
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है। हाँ?

0: थाना बिहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जियूं, कब तक जियूं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
4: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
4: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
4: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं। हाँ? बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
4: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
5: सो तो है।
4: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
5: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका? जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी

0: गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
1: हाँ सो तो है, चलो अच्छा है। बबुआ अब थोड़ा जलपान कर लो।
2: अच्छा अच्छा माँ जी।
1: अरे हर गोबिंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
3: हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हरगोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया? वो किस लिए आया था? वो झूठ क्यों बोला? ये सोच सोच कर रात भर हरगोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
0: माँ जी अब आज्ञा दीजिए।
1: अरे
0: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी अब पैन लागू।
1: जीते रहो बेटा,
0: अब चलता हूँ।
4: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
0: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं
4: अच्छा?
0: है। अच्छा, राम राम।
4: राम राम।
0: राम राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया।
2: उतर लो।
1: जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान।

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पी लो, पी लो। शाबाश शाबाश शाबाश, अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो
1: पर
2: मैं

0: long periods of time. The smaller desert animals do not drink water. They burrow underground during the hot day and come out at night to eat. Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. Others eat plants and seeds and get the water they need from plant juices. Desert plants also adapt themselves to the life they lead. Cactus plants store water in their thick stems. Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. The major feature of all deserts is, of course, dryness and variations of temperature. In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. The absence of this blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. Deserts are an important part of nature's great plan. They are there like the dense forests and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth.
1: आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम के समापन की आपसे आज्ञा चाहेंगे, तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग NCERT। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए। फिल्म का नाम है सिम्बा। स्वर है राहत फतेह अली खान, असी स्कोर तनिष्क बागची के।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं आकाशवाणी हूं, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
3: संग प्रीत लगाई सजना सजना।
2: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म यस बॉस का ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल पर। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए हेट स्टोरी 3 फिल्म से। स्वर हैं अरमान मलिक और नीति मोहन के।

0: को पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

के और श्रेया घोषाल की आवाजों में जिस्म टू फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था आरको प्रावो मुखर्जी ने, संगीत था मुनीश बखीजा का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत हर्षित सक्सेना की आवाज में। फिल्म का नाम है मर्डर टू। गीत को लिखा है सईद कादरी ने, संगीत है हर्षित सक्सेना का।

हर्षद सक्सेना की आवाज में गाए मर्डर टू फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 11 बजने को हैं। आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम।

0: reforms within the sector that the government is looking at the large the problems that have been affecting of this particular sector.
1: ओके मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं जो मैंने अभी मिस्टर आनंद मिस्टर प्रसाद से पूछा, वही प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से किसानों का सशक्तिकरण हुआ है, हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसका मजबूतीकरण हुआ है, जो हम देख रहे हैं प्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी फिगर्स में, आप हमें बता सकते हैं कि कौन से आप ऐसे प्रमुख 2-3 इनिशिएटिव्स जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण आंकते हैं जो उठाए गए हैं इस दौरान एग्रीकल्चरल पॉलिसी के डायरेक्शन में?
2: एक तो सबसे बड़ा मुझे लगता है जो 12 साल में सरकार ने उठाया था वो है एमएसपी का फिक्सेशन। पहले एमएसपी का फिक्सेशन सारे फैक्टर्स को आधार करके लिया जाता था, जिसमें इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है, डोमेस्टिक प्राइसेस क्या है, उसमें इन्फ्लेशन कितना है, उसका डिमांड सप्लाई सब कुछ देखा जाता था। आज भी वही फैक्टर जरूर है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया 2018 में कि एमएसपी जो होगा वो मिनिमम 50% प्रॉफिट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। और 2018 से पहले आप देख लीजिए, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जो लोग बताते थे कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा गवर्नमेंट फिक्स कर ही नहीं सकता
1: जी,
2: क्योंकि पूरा बोझ सरकार के ऊपर आएगा, सरकार को खरीदना पड़ेगा। लेकिन 2018 में जब लिया, आज देख लीजिए पॉसिबल है, सबके सामने 8 साल हो गया, सरकार हर साल मिनिमम 50% एंश्योर करके एमएसपी डिक्लेयर कर रही है। शुरुआत में जरूर जो मार्केट प्राइस था थोड़ा सा ज्यादा एमएसपी से नीचे बिका, लेकिन आज जो देखिएगा ये खरीफ और रबी सीजन गया है, इसमें जो एमएसपी से नीचे बिक भी रहा है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले तो 30% तक शुरुआत में थी, क्योंकि मार्केट प्राइस को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन आज मार्केट प्राइस भी एडजस्ट हो चुका है, फार्मर को बेटर प्राइस मिला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ कुछ चीजों में एमएसपी नहीं मिल रहा है, ज्यादातर इस साल की बात करूं तो कई सारे फसल में एमएसपी से ऊपर मिला है। और मस्टर्ड का देख लीजिए, अभी मस्टर्ड का सीजन है, एमएसपी से ऊपर है। चना का देख लीजिए, चना ऊपर है। व्हीट का तो सरकार खुद ही 40-45% प्रोक्योरमेंट कर रही है एमएसपी पे, तो मार्केट प्राइस हमेशा ऊपर रहता है। इस साल कुछ कुछ स्टेट में थोड़ा थोड़ा मतलब 50-100 रुपए नीचे बिकने की रिपोर्ट आई थी, लेकिन आज वहां पे भी ऊपर आ गया है प्राइस, मार्केट प्राइस। तो लगभग सारे जो रबी क्रॉप्स है वो एमएसपी से ऊपर है या एमएसपी के बराबर के पोजीशन में है,
1: तो एक फेयर प्राइस मिल रहा है फार्मर्स को।
2: बिल्कुल, बढ़ोतरी हुई है, काफी अच्छी बढ़ोतरी, क्योंकि 50% जब A2 प्लस FL के आधार पे दिए हैं वो एक बहुत बड़ा कदम था उस समय की देखा जाएगा तो
1: जी।
2: और उसके अलावा जो मैं गिनाऊंगा तो इन्होंने फसल बीमा योजना शुरू की है, इन्होंने अभी 2 साल पहले एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया, पल्सेस मिशन लॉन्च किए, और बहुत सारे चीजें इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की है। एक रिफॉर्म जरूर है कि इन्होंने कोशिश किए थे जो 3 फार्म लॉज लेके आए थे कृषि कानून, जो कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने उस टाइम भी फार्मर को साथ लेते हुए, ऐसा नहीं है कि हम ले आए तो उसको करना है, फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, नहीं माने तो फार्मर जबरदस्ती थोप नहीं दिया, जो भी चीजें हैं फार्मर जो चीज यस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस तभी होगा जब आप फार्मर को साथ लेके चलेंगे
1: जी,
2: कोई भी स्कीम हो।
1: मिस्टर विनोद आनंद, कमिंग टू यू, आप जिस कमिटी के मेंबर हैं सरकार की, उसमें एमएसपी पर फैसले होते हैं, उस पर बातचीत होती है, तो आप हमें बता सकते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो टूल है सरकार के पास, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज जो किया गया है, और इन 12 वर्षों में किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है किसानों को एमएसपी के माध्यम से, और बाकी भी जो आर्थिक सशक्तिकरण के जो पहलू है उन पर भी हम आपका विचार चाहेंगे।
3: जी देखिए, 3.5 गुना वृद्धि हुई है टोटल एमएसपी वैल्यू में, अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहां 2004 से 14 तक 7.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे, 2014-26 तक वो 26.3 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि 10 वर्षों में जो 2014 के पहले जहां 7.4 लाख करोड़ हुए थे, वो 26.3 यानी कि लगभग 3.5 गुना जो है वो खर्च सरकार ने एमएसपी के ऊपर किया है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ये खर्च हुआ कहां, किस तरफ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम स्वस्थ नेशन बने, न्यूट्रिएंट हमारा अच्छा हो, एनवायरमेंटल चैलेंजेज हैं उसको

0: मीट कर पाए। इसलिए जैसे मैं आप मोटा अनाज जो है जैसे ज्वार है और बाजरा है, आपको जान के आश्चर्य होगा 163% यानी 163% 1530 रुपए जो ज्वार की एमएसपी थी अब वो 4023 रुपए हो गई। ये दुनिया के किसी भी कोने में इस प्रकार से वृद्धि नहीं हुई है। सोयाबीन के ऊपर भी 123%, मतलब आप जिसमें भी देखेंगे अमूनन 5 से 10 फसलें ऐसी है जो खरीफ के मार्केटिंग सीजन में जिसमें 100% से भी ज्यादा खर्च हुआ है, 100% ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि अपने आप में दर्शाती है कि एमएसपी को लेकर के और किसानों को समर्थन देने में और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सिर्फ बात नहीं की जा रही बल्कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं कहीं पे 179% बढ़ाया गया जिससे वो उन फसलों के प्रति जा सके। आपको यह जान के आश्चर्य होगा इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जैसे अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, किसानों के लिए जो सबसे बड़ा इंफ्रा होता है वो उनकी क्रेडिट की व्यवस्था होती है
1: जी।
0: क्रेडिट की व्यवस्था में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट्स थे वो 6.4 करोड़ थे, लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास किसानों के पास केसीसी अकाउंट है। आज की तारीख में ये 10.2 लाख करोड़ है, यानी कि लगभग 2 गुना हो गया, लगभग 90% इसमें इजाफा हुआ है। तो ये अपने आप में कल्टीवेशन एक्सपेंसेस में खास करके पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट और मार्केटिंग में इसमें अमूलचूल परिवर्तन हुई है। और जहां तक कृषि की बजट की बात है कि जितना बजट पहले हुआ करता था उतना तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों को डीबीटी कर देते हैं, हमारे पास डीबीटी का बजट ही 70,000 करोड़ रुपए का है। तो कृषि में जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है इससे दर्शाता है कि ये सरकार पूरी की पूरी विलेज लेड और फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए ही बनी थी और इसी आधार पे ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेज हुए खास करके कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को बनने के बाद और उसमें जो पंचायतों में 2.5 लाख वेयर हाउसेज बनाने की बात, आज तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में वेयर हाउसिंग में कहीं भी किसी भी समय में भी कहीं नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। तो सारे पैक्सों को वेयर हाउस में कन्वर्ट करना और वेयर हाउस वो नीली छत और पीली दीवार वाले नहीं हो करके स्मार्ट वेयर हाउसेस कैसे हो जो ब्लॉकचेन से लिंक्ड हैं, एवरी ग्रेन इज ट्रेसेबल, ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे के पूरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए और खास करके जो मार्केट एक्सेस जो पहले नहीं था, एमएसपी को कैसे ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाई जाए, इसके लिए 26 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसका मैं भी सदस्य हूं, जो 5 इसमें सचिव महोदय भी इसके सदस्य हैं। तो इतनी बड़ी कमेटी के द्वारा जो कुछ भी रिकमेंडेशन पिछले 4 वर्षों से जा रहा है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है और आप आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं कि किस प्रकार से ना सिर्फ केसीसी अकाउंट और प्रोक्यूरमेंट में और एमएसपी में एक गुणोत्तर वृद्धि में बल्कि जो सबसे ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिल रही है वो डीबीटी हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, इन सब में एक आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है और खास करके हम बड़े सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा किसान सिर्फ बीज बोना और उगाना नहीं जानता था
1: जी।
0: बल्कि वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की जो पूरी एक वैल्यू चेन थी उस पूरे मूल्य श्रृंखला में किसान किस प्रकार से कहां खड़ा है और कैसे वो किसान उसका हिस्सेदार हो, प्रत्येक मूल्य श्रृंखला के हर भाग में ऐसी नीति बनाई जा रही है और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है।
1: सो मिस्टर प्रसाद, जैसा कि मिस्टर प्रधान ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसके हर कदम पर जो सरकार है वो समर्थन प्रोवाइड कर रही है, एक कोलैबोरेटिव वे में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सशक्त किया जा रहा है। डीबीटी की उन्होंने बात की, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डीबीटी इनिशिएटिव यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव माना जा रहा है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका जो शुरुआत होती है जब एक क्रॉप साइकिल की, क्या इसका महत्व है किसानों के लिए और जिस लेवल पर इसका जो यूज हो रहा है, 9.44 करोड़ फैमिलीज से ज्यादा बेनिफिट करे हैं इसमें और 4.2 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा डिसबर्स किए जा चुके हैं 22 इंस्टॉलमेंट्स में, इसका जमीनी तौर पर जो किसान है उनके लिए क्या महत्व है?
2: सुनिए, हम सब जानते हैं कि भारत में किसान जब भी परेशान रहे हैं और उनकी दिक्कतें बड़ी हैं, तो एक चीज जो सरकार के अलग अलग स्टडीज ने बताया है कि खर्चा सिर्फ किसान और कृषि के काम के लिए नहीं, उनके घर के खर्चे के लिए भी काफी कुछ उनके समस्याएं आती है। तो वो पारंपरिक जो तरीके हैं और गैर पारंपरिक तरीके से वो क्रेडिट पाते थे यानी कि पैसा लेते थे ब्याज पे, तो काफी परेशानी ज्यादा बढ़ जाती थी। तो छोटा सा इसके लिए एक मदद के लिए कि जैसे आदमी साल में 6,000 मिलते हैं, 2,000 के डीबीटी यानी कि सीधा पैसा का हस्तांतरण बैंक अकाउंट में होता है, तो इसमें सबसे बड़ा है कि छोटे खर्चे के लिए किसान को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, उसके खाते में पैसे हैं। अपने रोजमर्रा जिंदगी में छोटी मोटी जो उनकी

0: बच्चे हैं वो निकल जाते हैं, तो एक उनको तसल्ली होती है, हर आदमी को मतलब एक सुरक्षा महसूस होता है कि भाई हाँ मेरे खाते में पैसे हैं, कभी जरूरत हो तो मैं उसको इस, और जैसे आंकड़े आपने बताए हैं जिस तरह से 2026 तक जब भी बात हुई है तो 9.44 करोड़ किसान परिवार को मिला और इसमें 25% से ज्यादा महिलाओं को सीधा साथ इसका बेनिफिट मिल रहा है इसका, तो ये एक जिसे कहते हैं छोटा कदम है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
1: और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सभी जो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है, पूरे जो एक साइकिल होती है एग्रीकल्चरल साइकिल, अगर आपको कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पहले ये था कि आपको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था जो बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको देते थे और ये सब जानते हैं कि किस तरह से वो उसके चंगुल में फंस जाते थे, तो ये जो सारी सुविधाएं प्राप्त हुई आपको लगता है ये एक तरह से फ्रीडम प्राप्त हुई है फार्मर्स को और उनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना हो जिसमें इवन वाइल्ड एनिमल्स अगर आपकी क्रॉप को खराब करते हैं तो उसके लिए भी आपको मुआवजा मिलता है, ये सभी बहुत छोटे दिखने वाले लेकिन अगर हम इनको मिलाकर देखें तो बहुत बड़े कदम है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए।
0: जी सुनिए, सबसे बड़ी बात है ये दिखाता है सरकार कितना संवेदनशील है कि अलग अलग जो समस्याएं किसानों को आती हैं उस पर ध्यान उनका गया ही नहीं, उसके निवारण के लिए अलग अलग काम किए, जैसे आपने कहा पशुओं का खासकर जो जंगली जानवर हैं वो खेत में घुस के खड़ी फसल को खराब कर देते, तो अब उसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है, बाढ़ लगाया भी होगा लेकिन रात भर निगरानी भी रखी होंगी, लेकिन कभी ना कभी कुछ इस तरह की आकस्मिक कोई घटना घटती है या जैसे हम जानते हैं कि बेमौसम बरसात आए या बेमौसम आंधी तूफान आए तो उनको नुकसान होता है, अभी हाल फिलहाल दिल्ली के आसपास जो बारिश हुई है उसमें कई खड़ी फसल में नुकसान हुआ है, तो ऐसे में एक किसान बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये काफी सारा व्यापक है और इसमें सरकार की जो इसके पीछे सोच है वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम, यानी कि एक ही जैसा आप बीमा कंपनी को अपना प्रीमियम राशि जमा करें और उसके बदले में आकस्मिक कोई घटना घटती है आपका जो बीमा कंपनी है उनकी तरफ से आपको मुआवजा दिया जाएगा, तो आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 से हुए तो करीब 93 करोड़ या 92.5 करोड़ कृषक इस तरह के और करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने 25 दिसंबर तक इसमें फायदा उठाया है। सोनू जी
1: जी बिल्कुल, एंड मिस्टर आनंद कमिंग टू यू, यू नो द काइंड ऑफ एक्सपेंशन 2.5 times इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स व्हिच हैज टेकन प्लेस, इज इट नॉट ओनली द क्वांटिटी द क्वालिटी आल्सो, द फिशरीज द एलाइड सेक्टर्स दे हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड एंड इनफैक्ट फॉर द एलाइड सेक्टर्स दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ स्पेशल मिनिस्ट्री एंड देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सो यू थिंक दैट एनहांसिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स दीज एलाइड सेक्टर्स आर प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल।
2: देखिए जो फूड प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ और फूड सिक्योरिटी, इसके बीच में जो कुछ भी समस्याएं होती थी और उसका कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से बहुत लेना देना था, तो सबसे पहले सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये शब्द स्वयं बहुत कुछ बयां करती है सरकार की नीयत के बारे में, नीतियां तो बाद में बनती है और एग्जीक्यूट होती है, तो सरकार की नीति बहुत क्लियर है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे और सारे कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स उसके तहत लेके आएंगे जो किसानों के भले के लिए हो। तो सबसे पहले कि कोऑपरेटिव का डेटाबेस आज तक हमारे पास नहीं था कि कितने पैक्स हैं, कहां हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनको बहुत कुछ अच्छा करना है, किनको हम बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं, तो इस प्रकार से सबसे पहला काम तो ये किया गया कि ये अपेक्स टू पैक्स का अप्रोच कोऑपरेशन में नहीं रहा, ये
1: तो पैक्स जो कह रहे हैं कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी
2: जी बिल्कुल, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से ऊपर हम लेके जा रहे हैं अपेक्स तक, जो एनसीडीसी और नाफेड और जो आप बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट हैं उसकी तरफ। 25 बिजनेस एक्टिविटीज पैक्स अपने आप में कैसे रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, जो इनपुट का बिजनेस है उसमें कैसे भागीदारी ले पाए, इसके लिए उनको 25 बिजनेस एक्टिविटीज से उनको जोड़ा गया, यहां तक कि आपको पेट्रोल पंप, एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जन औषधि केंद्र, इस प्रकार से जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेज हैं वो भी कोऑपरेटिव को पैक्स को दिए गए। 79,630 यानी कि लगभग 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइज किया गया 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में। 61,886 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया ईआरपी के माध्यम से, यानी कि हर समय शाम के 5 बजे तक एक क्लिक में अब ये कंप्यूटराइज हो गई, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आप एक क्लिक में वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ की जा सकती है। वो रजिस्टर पे एंट्री सारी बंद हो चुकी है जिसमें बहुत बड़ी समस्याएं थी, तो कहां

0: 1947 से हम बातचीत तो कर रहे थे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लानी थी, उससे हम कहीं दूर, बहुत दूर बैठे थे। तो एक तो ये सबसे पहला सुधार किया गया। आपके माध्यम से मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले ये कहा गया था कि पीडीएस में बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, सभी लोग 15% और 100% की बातचीत कहते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था। हमारे यहाँ अब है वन नेशन वन राशन कार्ड, और वो भी डिजिटाइज्ड है। यानी कि अगर मैं बिहार का किसान हूं और दिल्ली में किसी कारणवश रह रहा हूं, तो मैं दिल्ली के फेयर प्राइस से अपना अनाज जो भी एलोकेट है मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो ऐसा डेटाबेस करना, ऐसा बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब मैं आता हूं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथन किए गए, वो फार्म गेट से मार्केट तक कैसे जाए, यानी कि किसान के खेत से बाजार तक वो जो जाने वाली बात है, उसमें किसान का भाग कैसे हो, उसमें बीच में जो व्यापारी वर्ग है सिर्फ वही फायदा ना ले जाएं, बल्कि व्यापारियों के साथ हमारे किसान कैसे काम कर सके और मूल्य श्रृंखला में कैसे अपनी बात कह पाए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ई नाम की बात मैंने आपसे पहले बताई थी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो पहले नहीं थी, आज की तारीख में 1.8 लाख ऐसे केंद्र बनाए गए जहां पे इनपुट और वन स्टॉप सेंटर हैं, इनपुट और एडवाइजरी सर्विसेज के। तो एक्सटेंशन के लिए एक नया, एक पूरा ओपन मार्केट सिस्टम बन गया जहां से ये सारी चीजें हो रही है। मेगा फूड पार्क स्कीम जहां किताबों में थी, सिर्फ गाइडलाइंस में थी, आज सैकड़ों मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके और इस पूरे मूल्य श्रृंखला में किस प्रकार से किसानों के पास आ पाए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए और वो फार्मर्स के माध्यम से खर्च किए गए, ना कि बीच में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से खर्च किया जाए।
1: तो उनकी जरूरत
0: कुछ ऐसे चैलेंजिंग प्लेसेज हैं जहां पे, जैसे मान के चलिए 100 जिले थे, तो उन 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया कि यहां पे क्या कारण है। भाई 75 साल हो गए, जहां एक जिले में प्रोडक्शन एक्स हो रहा है, इन जिलों में x/8 हो रहा है, आखिर क्या कारण है। तो उनको लेकर के और उन जिलों के लिए अलग से स्कीमें बनाई गई, उसके ऊपर सरकार की अलग ओवरसाइट है, एडिशनल सिक्योरिटी रैंक ऑफिसर उसकी मंथली देखरेख करते हैं, और उन अमुक जिलों में कैसे प्रोडक्शन बढ़े इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक पूरी नायाब नीति बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है सारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है एलाइड एक्टिविटीज पे, खास करके फिशरीज में और जो डेयरी में, आज आप देख रहे हैं लद्दाख में भी एनडीडीबी ने जाकर के वहां का भी एक डेयरी शुरू किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में मदर डेयरी है, तो लद्दाख की मदर डेयरी कैसे शुरू हो, या जम्मू कश्मीर में डेयरी से फार्मर्स कैसे जुड़े, या वहां के जो लोकल जो हमारा ह्यूमन रेजिलियंस है उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर पाए एग्रीकल्चर के साथ में, तो एक बड़ा बदलाव लाइव स्टॉक डेयरी के सेक्टर में हो रहा है। चौथी बात मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बायो इथेनॉल में और जो सीबीजी में सरकार का ध्यान है, कंप्रेस बायोगैस में, और ये कंप्रेस बायोगैस का बड़ा बाजार जो पूरी दुनिया में निकल रहा था एविएशन टर्बाइन फ्यूल, यानी कि सस्टेनेबल एविएशन टर्बाइन फ्यूल के माध्यम से, उसमें गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े, उसके लिए सैकड़ों सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं, और ये तेल की कंपनियां उसको खरीद करके और एविएशन टर्बाइन फ्यूल में मिला करके और उसको वो बेच रही है। तो ये इसका सीधा सीधा डिविडेंड जो है वो फार्मर्स के पास जा रहा है। तो इन सारी स्कीमों में फार्मर सेंट्रिसिटी की बात यह है कि अगर मान के चलिए कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव व्यापार करती है तो उसका प्राइस तो किसानों को मिलता है क्योंकि रॉ मटेरियल उनसे वो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो फायदा होता है उसका डिविडेंड किसानों के पास कैसे जाए, ये फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर सिस्टम जो डाइवर्सिफाइड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो बनाई जा रही है। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। पिछले 12 वर्षों में हम जहां तक चल के आ पाए, हमें ऐसा लगता है कि 2047 तक एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में फार्मर्स की जो भागीदारी बढ़ेगी और उससे एक असमानता कमेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का ध्यान है और पूरा देश उस ओर अग्रसर है।
1: मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं, आप बताएं हमें, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में बनाई गई, अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, और जिस तरह से कोऑपरेशन जो मॉडल है उसका सक्सेस कृषि क्षेत्र में देखा गया है, अगर हम दूध जो सेक्टर है उसकी बात करें, और ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है 10,000, ये कैसे कोऑपरेटिव मॉडल को यूज करके ये कैसे फार्मर्स को लाभान्वित करती है, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, इस मंत्रालय के के बारे में कृषि क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई हैं, ये खासकर छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके लिए इनका क्या महत्व है?
2: ये जो एफपीओ का कंसेप्ट लेके आए, पहले भी एफपीओ बनते थे लेकिन सरकार ने जब अनाउंस किया कि 10,000 हम एफपीओ बनाएंगे विद इन ए डेडलाइन, वो डेडलाइन से पहले ही बन गए 10,000। उन्होंने बनवाए क्या, उन्होंने फैसिलिटेट किया, उसमें उन्होंने स्कीम लेके आए कि हम आपको 50

0: परसेंट इक्विटी पार्टिसिपेशन देंगे। कोई भी कंपनी वो जो एफपीओ है उसमें या तो आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं या एक प्राइवेट कंपनी बना के आप एफपीओ का जो स्ट्रक्चर है उसके तहत आप काम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए किसी भी कंपनी में जब 50% इक्विटी कोई देता है उसका वोटिंग राइट होता है, वो डिसीजन लेता है वहां पे, उस क्षमता में रहता है, डिसीजन वही डिसाइड करे। लेकिन इस मॉडल में सरकार ने बोला कि हम इक्विटी जरूर देंगे आपको 50% ग्रांट के तहत, लेकिन डिसीजन आपकी होगी, कोई हमारा इंटरफियरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बोलते हैं कि स्वयं शासित कर देना, कि आप खुद ही गवर्न करो एफपीओ को और गाइड करते रहना कि भाई आप ऐसे करोगे, उसमें हेल्प करना। हर बृहस्पतिवार को एक वेबिनार होती है जिसमें सारे एफपीओ जोड़ते हैं और दो दो कंपनीज को बुलाते हैं गवर्नमेंट, और ये कई चीज जो लाइमलाइट में नहीं आती है उसमें लेकिन एफपीओ का जरूर फायदा हुआ है। कई एफपीओ करोड़पति बन गए हैं और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक शायद 10,000 में से 5,000 को करोड़पति में ले आएंगे।
1: तो किस तरह के निर्णय लेते हैं मिलकर जो एफपीओ होते हैं, किस किस क्षेत्र में?
0: इन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है एफपीओ को, जो चाहे वो कर सकते हैं। एज ए बिजनेस एंटिटी उनको बिजनेस बढ़ाना है और कृषि के आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने इनपुट बेच रहा है तो वो डायरेक्टली कंपनी से सोर्स करते हैं और अपने फार्मर के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको देते हैं, सब्सिडाइज नहीं, चीपर रेट पे, क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स करते हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है, किसी एफपीओ को मान लीजिए पता नहीं है कहाँ से सोर्स करना है, क्या सोर्स करना है, उसमें गवर्नमेंट उनको मदद करता है, बताता है कि इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे कई एफपीओ को बहुत फायदा हुआ है।
1: तो इनपुट्स उनकी कॉस्ट कम होती है और उनको जो प्राइसेस है वो बेटर मिलती है और उनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है।
0: बिल्कुल, जो बीच में जितने भी मिडिलमैन इन्वॉल्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो जो भी कंपनी जो उनको कॉस्ट में देती है, सप्लाई करती है, वो थोड़ा सा मुनाफा करके प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं और अपने फार्मर को, कई एफपीओ तो ऐसे हैं जो कॉस्ट जितने लाते हैं उतने में अपने मेंबर को दे देते हैं। तो जो कहीं नहीं मिलेगा उस प्राइस में, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है किसी फार्मर का तो उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ता है जब मार्केट प्राइस दूसरे फार्मर के कंपैरिजन में।
1: सो दैट द कलेक्टिव पावर इज देयर। एंड मिस्टर मिश्रा, वी वुड ऑल्सो लाइक योर व्यूज एंड इफ यू कुड टेल अस दैट हाउ गवर्नमेंट इज रियली एम्पावरिंग द फार्मर्स बाय प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट, द फर्टिलाइजर्स। सो दिस एस्पेक्ट, हाउ इट हैज बीन टेकन केयर ऑफ एट द पॉलिसी लेवल इन दीज 12 इयर्स, कैन यू टेल अस अबाउट दिस एम्पावरमेंट एस्पेक्ट फॉर फार्मर्स?
0: सी, fertilizer in India is considered the cheapest in the world when you talk about urea particularly. Why? Because government has not raised the price for past 2 decades or so, and urea currently is available at 267 rupees per bag of 45 kg. Last international price at which India bought urea was $954 per ton. So roughly, if you take $1,000, it comes to around 95,000 per ton. 95,000 means 9,500 per quintal. It is a big amount. So when farmers are sold at 267 rupees, just imagine how much money the government is subsidizing. The result is farmers are getting the product fertilizer at the very cheap rate, so that their cost of production is also limited within certain range, right. And it is also reflected in the end price which they are selling their produce. If you raise the input cost, the product will also be costlier for the consumers. So it is based on this theory that you subsidize the input to some extent, so that the end product also becomes cheaper for the consumers, and our inflation is also remain under control.
1: Mr. Anand, Mr. Prasad, Mr. Mishra, thank you so much for this insightful discussion on the various aspects of how the farmers and the agriculture sector has been empowered in the last 12 years.
2: Thank you.
3: Thank you very much.
0: Thank you very much.
2: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government initiative.

0: Tips for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants were Vinod Anand, member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms, Government of India, K.V. Prasad and Prabhudat Mishra, senior journalists. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
1: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के प्रयासों पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार में एमएसपी और कृषि सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य विनोद आनंद और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद व प्रभु दत्त मिश्रा. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं. मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर. दिन के 11:35 हुए हैं. प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम. कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ भोले बिसरे गीत. लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत मुकेश की आवाज में. फिल्म का नाम है अनाड़ी. गीत के बोल हैं शैलेंद्र के. संगीत है शंकर जयकिशन का.

अनाड़ी फिल्म का गीत आपने सुना किशोर की मुकेश की आवाज में। गीत को लिखा था शैलेंद्र ने, संगीत था शंकर जयकिशन का। आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है शर्मिली। गीत को लिखा है नीरज ने, संगीत दिया है एस डी बर्मन ने।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में राज फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था शमीम जयपुरी ने, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र। गीत के बोल हैं इंदिवर के, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

लता मंगेशकर की आवाज में सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था इंदिवर ने, संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम में कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश और कंचन की आवाजों में। फिल्म का नाम है धर्मात्मा। गीत के बोल हैं इंदिवर के, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

लता मंगेशकर की आवाज में आंखें फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने, संगीत था रवि का। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395

0: लता मंगेशकर की आवाज में आंखें फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने, संगीत था रवि का। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12 बजने को हैं कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरूआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धनशोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके और उनकी कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर धन शोधन और 100 करोड़ रुपए से अधिक के कथित जीएसटी धोखाधड़ी तथा फर्जी मोबाइल फोन बिक्री का पर्दाफाश किया है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा का जीवन साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। श्री शाह ने कहा कि आज भी बिरसा मुंडा का धर्मांतरण के विरुद्ध संघर्ष और आदिवासी गौरव के प्रति उनका समर्पण लाखों देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और

0: श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 26वें ओवर में 3 विकेट पर 112 रन बना लिए हैं। कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 114 अंक बढ़कर 73,668 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

हमारी इसी सभा में 12:10 पर आकाशवाणी जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम। इसी सभा में 12:40 पर, दोपहर 2:30 पर, शाम 6:05 पर, रात्रि 8 बजे और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।

अपना कार्यक्रम घर आंगन सुनेंगे दोपहर 1:05 पर। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे आदिवासी क्षेत्रों की पारंपरिक कला और हस्तशिल्प, आयुर्वेद और स्वास्थ्य लाभ, बिरसा मुंडा शहादत दिवस, जनजातीय अस्मिता के संघर्ष की गरिमा, योग और स्वस्थ बुढ़ापा। कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक वार्ता खेल खेल में गणित, वार्ताकार होंगी श्रीमती अंजलि व्यास। इसी के साथ कार्यक्रम में आप सुनेंगे रसोई से कुछ रेसिपीज और कुछ ब्यूटी टिप्स।

युवा साथी अपना कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे शाम 5:05 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा योगासनों के माध्यम से जोड़ों को स्वस्थ बनाना। कार्यक्रम में आप सुनेंगे लघु जानकारी, डीआरडीओ पर्यावरण संरक्षण है जरूरी, रमन प्रभाव, चिक्का झील जैसे विषयों पर। इसी के साथ कार्यक्रम में आप सुनेंगे रोजगार समाचार और क्विज।

ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्रामीण जगत प्रसारित किया जाएगा शाम 7 बजे आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा, भूमि तैयार करने के आधुनिक यंत्र, हरित क्रांति, श्रम योगी मानधन योजना, वर्षा जल सहित जैसे विषयों पर। इसी के साथ कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकगीत, मौसम पर जानकारी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जानकारी। सुगम संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से प्रसारित किया जाएगा शाम 7:45 पर और रात्रि 9:30 पर। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम में आप सुनेंगे फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीत। कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।

गीता हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 12:10 होने को हैं। आकाशवाणी जयपुर केंद्र से कुछ ही देर में आप सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम।

0: सभिनी ॿुधंदड़नि खे प्रिया नंदवानी जो प्यार भरियो नमस्कार सिंधी कार्यक्रम में अवां जो स्वागत आहे साथियो अॼु महीने जो ॿियो मंगल आहे ऐं अॼु जे प्रोग्राम में अवां ॿुधंदा प्रोग्राम डॉक्टर जी सलाह डॉक्टर जी सलाह प्रोग्राम में अॼु अवां ॿुधंदा ॻाल्हि ॿोल कैंसर जी बीमारी ऐं शल्य चिकित्सा जा नया आयाम हिन ॻाल्हि ॿोल लाइ असांजे स्टूडियो में अॼु असां ॻाल्हाईंदासीं डॉक्टर राजेश भोजवानी जिन सां गडोगड बुधंदासीं गीत संगीत जी हाँ साथियों तो शुरुआत कयूं था असा हिन गाल बोल सा कैंसर जी बीमारी ए शल्य चिकित्सा जा नया आयाम साथियों अजी असांजी स्टूडियो में असा नींड दिनी आहे जयपुर शहर जे ज्ञातल सुन्यातल मिनिमल एक्सेस सर्जरी डाइजेस्टिव कैंसर ए पैनक्रेटिक सर्जरी जे विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश भोजवानी जिन के साथियों तवा के बुधायूं तो डॉक्टर राजेश पुठियन 24 सालन खां लगभग 26,000 खां वधीक कॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल ऑपरेशंस जो अनुभव रखन था ए 100 खां वधीक सर्जन्स के एडवांस मिनिमल एक्सेस सर्जरी ए कैंसर सर्जरी जी ट्रेनिंग दिनी अथऊं डॉक्टर राजेश आकाशवाणी जयपुर जे स्टूडियो में तवां जो स्वागत आहे
1: नमस्कार
0: डॉक्टर राजेश मां सब खां पहिरीं असांजे ॿुधंदड़नि जे लाइ तव्हां खां इहो ई सवाल पुछण चाहींदसि की पेट जा जेके कैंसर्स आहिनि उहे कहिड़ा कहिड़ा
1: पेट में जेके भी ऑर्गन्स आहिनि पेट जे अंदर उन्हनि सभिनि में कैंसर डेवलप थी थो सघे जेके वध में वधि ॾिसण में ईंदा आहिनि उन्हनि में इंटेस्टाइन यानी आंतड़ियुनि जो कैंसर वॾी आंत कोलोन जो कैंसर जेको गुदा द्वार थींदो आहे रेक्टम जो कैंसर जेकी खाद्य नली थींदी आहे इसोफेगस कैंसर लिवर जो कैंसर पैंक्रियस जो कैंसर अमाशय पाण रोटी खाईंदा आहियूं जिते रोटी खटी थींदी आहे उनखे स्टमक चवंदा आहियूं असां उन जो कैंसर अलॻि सिस्टम्स बि हूंदा आहिनि पेट में जीअं यूरोलॉजी जेको किडनी जो कैंसर
0: जी
1: यूरिन जे ट्रैक्ट जो कैंसर ऐं फीमेल्स में गायनेकोलॉजिकल यानी यूट्रस जो कैंसर ओवरी जो कैंसर सो इलाही कैंसर्स थी था सघनि पूरे शरीर में अहिड़ी कोई बि टिश्यू कोन्हे जंहिंमें कैंसर कोन थो थी सघे
0: जी सर असां इहो बि ॿुधो आहे की ब्रेन में बि कैंसर थींदो आहे
1: जी ब्रेन में बि कैंसर थी थो सघे हथनि पेरनि में बि थो थी सघे ब्लड में बि थी थो सघे स्किन में बि कैंसर थींदा आहिनि
0: अच्छा त हींअर तव्हां असांखे सभु खां पहिरीं इहो ॿुधायो की पेट जे कैंसर में ख़ासि तौर ते जॾहिं कंहिंखे कैंसर थिए थो कहिड़े बि ऑर्गन में त हुन जे छा सिम्पटम्स हूंदा आहिनि ऐं वॉर्निंग साइंस जंहिंखे पाण निशानियूं चवंदा आहियूं उहे कहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि
1: पेट में जेके भी ऑर्गन्स आहिनि सभिनि जो कैंसर अलॻि अलॻि रूप में प्रेज़ेंट करे थो सघे पर जेके इम्पोर्टेंट सिम्पटम्स आहिनि उन्हनि में भुख घटि लॻना वेट घटि थियणु कंहिं कंहिंखे मोशन में ब्लड अचणु इहो थो थी सघे पीलिया थो थी सघे ख़ारिश थी सघे ऐं अलॻि अलॻि कैंसर्स अलॻि अलॻि रूप में ईंदा आहिनि पर इम्पोर्टेंट इहो आहे जॾहिं इहे सभु सिम्पटम्स ईंदा आहिनि कैंसर कॾहिं कॾहिं वधी वियो हूंदो आहे तॾहिं ईंदा आहिनि इन करे सभिनि खां इम्पोर्टेंट अॼुकल्ह इहे आहे जीअं ई कोई बि 45 वर्ष जो थिए थो उनखे रेगुलर हर साल पंहिंजी स्क्रीनिंग कराइणु खपे जंहिंमें सभु ब्लड टेस्ट बि थींदा आहिनि पेट जा सोनोग्राफी बि थींदी आहे स्टूल टेस्ट बि थींदो आहे चेस्ट एक्सरे बि थींदो आहे लेडीज़ में मेमोग्राफी बि थींदी आहे सर्विक्स एग्ज़ामिनेशन बि थींदो आहे इहे सभई टेस्ट 45 उमिरि खां पोइ हर साल या हर ॿिनि सालनि में ज़रूरी आहिनि उन सां छा थींदो आहे जे कैंसर अगरि हूंदो बि आहे पेट में किथे बि त अर्ली स्टेज में या हुन

0: शुरुआत थी थे तॾहिं पकड़ में ईंदो आहे ऐं उन महिल अगरि उन जो ट्रीटमेंट करे छॾियूं त उहो ख़तमु था करे सघूं पाण कैंसर खे। अॼुकल्ह ट्रीटमेंट इलाही सुठा थी विया आहिनि, स्क्रीनिंग टेस्ट इलाही सुठा थी विया आहिनि।
1: त डॉक्टर साहब चवण जो मतिलब की अगरि पाण खे को बि अहिड़ो सिम्पटम लॻे थो त उनखे असां हल्के में न खणूं ऐं 45 सालनि खां पोइ असांखे रेगुलर पंहिंजी स्क्रीनिंग बि कराइणु खपे। ऐं ख़ासि ॻाल्हि इहा आहे की जॾहिं स्क्रीनिंग में फर्स्ट स्टेज ते ई असांखे ईअं लॻे थो की कुझु गड़बड़ आहे त असां झटिपट पंहिंजे स्पेशलिस्ट ॾे वञूं ऐं पंहिंजे ट्रीटमेंट खे जॾहिं उतां ई शुरू कराईंदासीं त असां सीवियर स्टेज ताईं न पहुचंदासीं। पर असां ॾिसंदा आहियूं की आमतौर ते इहो ॾिठो वेंदो आहे की असां हल्के में खणंदा आहियूं ॻाल्हि खे ऐं पोइ जॾहिं स्थिति वधीक गंभीर थींदी आहे त असां डॉक्टर ॾे वेंदा आहियूं। त अहिड़े हालातनि में बि छा बचाव मुश्किल हूंदो आहे जॾहिं की असां ॿुधंदा आहियूं की थर्ड स्टेज जो कैंसर आहे?
0: साइंस इलाही एडवांस थी वई आहे ऐं हाणे अॼुकल्ह असां स्टेज टू में स्टेज थ्री में बि इलाही कैंसर थींदा आहिनि जंहिंखे असां कंप्लीटली ठीक करे था सघूं सर्जरी द्वारा या कीमोथेरेपी था ॾेई सघूं या रेडियोथेरेपी था ॾेई सघूं या टई कॉम्बिनेशन्स था ॾेई सघूं। ऐं इलाही कैंसर्स असां स्टेज टू एवं स्टेज थ्री में असां उन्हनि खे क्लियर था कयूं। कुझु कैंसर्स अहिड़ा आहिनि जीअं कोलन कैंसर जिन खे असां स्टेज फोर में बि था क्लियर करे सघूं। त इम्पोर्टेंट हे थी वेंदो आहे सभिनि खां इम्पोर्टेंट त पहिरियों उनखे असां डायग्नोस कयूं, उनजी स्टेजिंग कयूं ऐं पोइ स्पेशलिस्ट सां मिलियूं जेको सभिनि चीजें खे समझे तो ऐं अकॉर्डिंगली तव्हांखे उहो गाइड थो करे सघे।
1: डॉक्टर साहब हिते आम माण्हू जो इहो बि सवाल ईंदो आहे कि छा कैंसर बि जेनेटिक हूंदो आहे?
0: हा, इलाही कैंसर जेनेटिक थी था सघनि ऐं अगरि कंहिंजे परिवार में पोईं जनरेशन में जीअं लाइक माता पिता या ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर नाना नानी दादा दादी खे कैंसर अगरि थियो हुयो ऐं असांखे ख़बर आहे त असांखे थोरो वधीक सावधान रहणो पवंदो। ऐं उन्हनि केसिस में स्क्रीनिंग जेका आहे उहा 45 जे बजाए 35 सालनि ते शुरू थी थिए।
1: अच्छा,
0: छो जो उन्हनि में स्क्रीनिंग करे असां इलाही कैंसर्स पकड़े था सघूं ऐं अर्ली स्टेज में उन्हनि खे कंप्लीटली ठीक करे था सघूं।
1: त ख़ासि ॻाल्हि ध्यानु ॾियण जी इहा आहे की अगरि पंहिंजे हिस्ट्री में असां वञूं ऐं अगरि पंहिंजे ग्रैंड फादर्स खे या कंहिंखे बि कैंसर आहे त असांखे पाण हाई अलर्ट ते रहणो आहे ऐं 35 खां पोइ ई असांखे स्क्रीनिंग बि कराइणी आहे। त डॉक्टर साहब हाणे इहो बि सवालु अचे थो की अॼुकल्ह जी जेके खान पान जी असांजी जीवन शैली थी वई आहे या छा त असां ॾिसूं था नंढी नंढी उमिरि में बि कैंसर थो थिए, त इहो खान पान सां संबंधित आहे या छा आहे, छो थींदो आहे कैंसर?
0: जेके नंढी उमिरि में कैंसर्स था थियनि उन्हनि में घटि अधु कैंसर्स त जेनेटिक थींदा आहिनि ऐं इम्पोर्टेंट इहो थींदो आहे जॾहिं बि नंढी उमिरि में कैंसर थो थिए त उहो इलाही एग्रेसिव थींदो आहे। उहो एग्रेसिव थींदो आहे, उन्हनि जो ट्रीटमेंट बि वधीक एग्रेसिव यानी इलाही सभिनि तरीक़नि सां उन्हनि खे कंट्रोल करिणो पवंदो आहे तॾहिं पेशेंट ठीकु थींदो आहे हमेशह जे लाइ। कुझु कैंसर्स नंढी उमिरि में था थी सघनि लाइक इवन 10-20 सालनि जी एज तक ॿारनि में था थी सघनि। उन्हनि में इलाही कैंसर्स अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके ठीकु था थी सघनि लाइक ब्लड कैंसर एक्सेट्रा लिम्फोमा इहे कीमोथेरेपी सां कंप्लीटली ठीकु था थी
1: सघनि।
0: सो ह्यूमन बॉडी में जेको पंहिंजो मानव शरीर आहे उन में घटि अगरि ईअं ॾिसूं था त हज़ारनि टाइप जा कैंसर था थी सघनि।
1: बिल्कुलु घणेई प्रकार बि आहिनि ऐं कंहिं बि उमिरि में इहे थी था सघनि कैंसर। ऐं कैंसर जो सिम्पटम अचे त असांखे सभ खां पहिरीं डॉक्टर जो चवणु आहे कि असांखे डॉक्टर खे ॾेखारणु खपे। हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि मां हिते इहो पुछणु चाहींदसि कि खान पान ॾाढो असांखे गाइडेंस मिलंदी आहे कि ॾाढो सुठो रखणो खपे ऐं घणो करे असां रखंदा बि आहियूं, कैंसर सां बचाव लाइ खान पान ते कहिड़ो कहिड़ो ध्यानु ॾियणु खपे?
0: सभिनि में पहिरियों त पाण खे इहो सभिनि खे ख़बर आहे बीड़ी सिगरेट तंबाकू जेको आहे इन्हनि जो सेवन सख़्तु मना आहे।
1: जी,
0: हे टे शयूं कंहिंखे बि किथे बि कैंसर थी प्रोड्यूस करे सघनि। उन खां पोइ अल्कोहल यानी शराब जो सेवन करण सां लिवर में पैंक्रियाज़ में ख़राबी थी सघे ऐं लंबे समय खां पोइ उहा ख़राबी कैंसर बि प्रोड्यूस करे सघंदी आहे। थर्डली हाणे साइंस आइडेंटिफाई कई आहे जिन्हनि जो बि वज़न वधीक आहे उन्हनि खे कैंसर जी बि संभावना वधीक थींदी आहे। त इन करे वेट सभिनि खे कंट्रोल रखणु खपे। जेको मोटापो आहे उहो कैंसर तो

0: करे सके तो खाण पीण जो ध्यान रखण खपे रेगुलर एक्सरसाइज करण सा वेट भी घटती दो आ और शरीर जी जेके मांसपेशियों पूरा ऑर्गन्स वो भी वधिक एफिशिएंटली फंक्शन करना है तो उन्हें का भी कैंसर घटती दो आ और सभी में इंपॉर्टेंट आए आजकल जेको प्रोसेस्ड फूड फ्रोजन फूड जेको पाना बाजार में वठूं था या वो पैकेट्स में तो अचे या टिन्स में तो अचे जिन में अलाई प्रिजर्वेटिव्स थी ना इन तो उन्हें जे जे के प्रिजर्वेटिव्स आइन वो भी कैंसर के वधाए था सकन
1: बिल्कुल सुठो तमाम दायो कि खान पान में असा के केड़ी सावधानी रखन खपे डॉक्टर साहब असा जे सवाल भी इंदा है असा जे बुधनणन जा त एक सवाल असा के हिकर आयो हो कि जिए एसिड रिफ्लेक्स जेको थींदो आहे घणे ही बेड़ा पाण कुछ खाईंदा आहियूं ऐं ओॾी महिल ई थोरी देर में वो ॿाहिरि ईंदो आहे त ही जॾहिं लंबो हलंदो आहे त इन में बि छा काई सीवियर ॻाल्हि अॻिते हली करे थी सघे थी
0: अगरि एसिड रिफ्लक्स इलाही सालनि तो हले थो 20-30-40 साल त कॾहिं कॾहिं जेका एसिड मथे ईंदो आहे खाधे नली में हुते हिकु इरोजन जीअं छाला थी वेंदा आहिनि उन्हनि खे कंदो आहे ऐं 20-30 सालनि में उहो पाण खे कैंसर में तब्दील करे थो सघे त इन करे एसिडिटी जॾहिं बि कंहिंखे थिए थी त स्पेशलिस्ट सां चेकअप कराइनि ज़रूरत थिए त एंडोस्कोपी कराइनि घटि करण लाइ दवा बि वठनि ऐं उन खां वधीक इम्पोर्टेंट आहे जेका बि शइ तव्हांखे एसिडिटी करे थी उनखे आइडेंटिफाई कयो ऐं उनखे अवॉइड करो
1: डॉक्टर साहब असां ॻाल्हियूं कयूंसीं कि कारण बि छा आहिनि ऐं पेट जा कैंसर बि छा आहिनि हाणे ॻाल्हि कंदासीं पाण इलाजनि ते अगरि कंहिंखे कैंसर डायग्नोस थिए थो त अॼु जे जेको युग आहे उन में ॾाढी एडवांस टेक्नोलॉजीस अची चुकियूं आहिनि ऐं सर्जरी बि तव्हां तमामु घणियूं इन विषय ते कंदा बि आहियो त शल्य चिकित्सा जा कहिड़ा कहिड़ा नया आयाम अॼु अची चुका आहिनि उहे असांखे तव्हां ॿुधायो
0: हाँ कैंसर साइंस इलाही एडवांस थी वही है बिकॉज ओवरऑल पूरी मेडिकल साइंस एडवांस थी वही है सभी में इम्पोर्टेंट तो शुरुआत जडी जहाँ इलाज की शुरुआत पा क्यों था तो इलाही सुठा सीटी स्कैन एमआरआई सोनोग्राफी एंडोस्कोपी ब्लड टेस्ट ये हाँ डेवलप थी वह जिनके द्वारा असं कैंसर के आइडेंटिफाई करे था सकूं ऐं हाणे जेके स्कैन्स आहिनि उन्हनि में एॾी सुठी टेक्नोलॉजी आहे जे नंढे में नंढो टिशू जेको ख़राब थो ॾेखारण में अचे उन खे असां सैंपल था करे सघूं उन खे असां ॾिसी था सघूं ऐं पक करे था सघूं इन में कैंसर आहे चाहे न आहे हिकु त हे थियो आहे ॿियो छा थियो आहे इंटेंसिव केयर जेका आहे आईसीयू केयर असांजी इलाही एडवांस थी वई आहे
1: अच्छा
0: त असां वधीक में वधीक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी बि 10 कलाकनि जी 12 कलाकनि जी 24 कलाकनि जी सर्जरी बि असां करे था सघूं विद वेरी कैलकुलेटेड रिस्क
1: त सर हिन में असां इहो बि पुछणु चाहींदासीं कि इहा कहिड़ी कहिड़ी टेक्नोलॉजी आहे जीअं असां घणेई भेरा न्यूज़पेपर में बि पढ़ंदा आहियूं कि मिनिमल एक्सेस सर्जरी आहे या ॿिया बि घणेई जाम नाला आहिनि
0: त छा थींदो आहे जॾहिं बि असां सर्जरी कंदा आहियूं ऑपरेशन कंदा आहियूं जीअं पेट जो ऑपरेशन जा पाण डिस्कस था कयूं त अंदरि जेका बि ऑर्गन आहे कैंसर या जेको बि प्रोसीजर असांखे करिणो आहे उहो त रिसर्च द्वारा हाणे धीरे धीरे डिफाइन थी वियो आहे भई इन कैंसर में इन स्टेज में अहिड़ो प्रकार जो ऑपरेशन थियणु खपे पर पेट जे अंदरि पहुचण लाइ पाण वटि जेका पुराणी पद्धति आहे जंहिंमें पूरो चीरो था ॾियूं हेठां खां मथे ताईं पूरो वॾा वॾा चीरा पिया लॻायूं उहा हाणे ज़रूरत घटि पवंदी आहे छो जी असां हाणे पेट जे अंदरि वञी था सघूं 4-5 छेद करे उन सां पोर्ट था विझी सघूं उन सां कैमरो थो असां अंदरि विझी सघूं उन सां इंस्ट्रूमेंट्स बि असां अंदरि विझी था सघूं ऐं उन्हनि खे हथ सां कैमरे में ॾिसी करे हाणे असां ऑपरेट करे था सघूं इहो थींदो आहे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी त जिते बि असां वॾो चीरो कोन था ॾियूं ऐं 4-5-6 छेद करे उन्हनि सां इंस्ट्रूमेंट्स विझी करे असां सर्जरी अंदरि कयूं था त उनखे असां मिनिमल एक्सेस सर्जरी था चऊं न मिनिमल एक्सेस सर्जरी जे अंदर असां हथ सां कयूं था त उहो लैप्रोस्कोपिक चयूं था उन में जेके इंस्ट्रूमेंट्स विया आहिनि अंदरि ऐं उन्हनि खे मां हुते मशीन ते वेही उन्हनि इंस्ट्रूमेंट्स खे मां पंहिंजे फिंगर्स सां यूस थो कयां थोरो प्रिसाइस वे में त उन खे असां रोबोटिक सर्जरी चऊं था त उन सां छा थींदो आहे भई वॾा चीरा कोन्हनि त पेट जे अंदरि जेको ऑपरेशन थियणो हो उहो त उहो ई प्रोसीजन सां थी वियो पर पेशेंट जी रिकवरी

0: वधीक थी थी वञे। असां अंदरि कैमरा था विझूं, उहे मैग्निफिकेशन असांखे हिक शइ जेका 1 मिलीमीटर जी आहे उहा 20 मिलीमीटर जी 28 मिलीमीटर जी नज़र थी अचे, त असांजी सर्जरी अलाई बिल्कुलु प्रिसाइज थी थी वञे, स्पेशलाइज थी थी वञे। उन सां पेशेंट जी रिकवरी जेका आहे वॾे से वॾे ऑपरेशन खां पोइ जल्दी थी थी वञे, जल्दी रिकवरी जो साइंस आइडेंटिफाई कई आहे। जीअं जीअं रिकवरी जल्दी हूंदी आहे, जीअं जीअं पेशेंट जल्दी खाइण पीअण थो शुरू करे, घुमण थो शुरू करे, त अलाई कॉम्प्लिकेशन्स उन सां अवॉइड थी वेंदा आहिनि। ऐं जल्दी घर थो हली वञे, पोइ 3 हफ़्तनि खां पोइ कीमोथेरेपी शुरू बि थी सघे, त उन्हनि जा अलाई एडवांटेजिस आहिनि। त जिते बि हाणे मिनिमल एक्सेस सर्जरी पॉसिबल आहे कैंसर जे लाइ, लैप्रोस्कोपी द्वारा या रोबोटिक द्वारा असां उहे प्रेफर था कयूं।
1: ऐं रोबोटिक सर्जरी बि डॉक्टर ई कंदा आहिनि।
0: हा,
1: इहे मतिलबु कंहिंखे ख़्याल अची थो सघे न कि रोबोट कंदो या छा कंदो।
0: उहो आमतौर पर छा थींदो आहे, जॾहिं बि रोबोट जो नालो ईंदो आहे न, त पाण इहे सम्झंदा आहियूं जीअं टीवी ते ॾिसंदा आहियूं कोई ह्यूमनॉइड रोबोट जीअं घुमे थो, हले थो, करे थो, पाण में हिकु इंसान आहे। सर्जरी में उहो न थींदो आहे। सर्जरी में इहा हिकु मशीन आहे जंहिंमें कुझु ईअं इंस्ट्रूमेंट्स आहिनि जंहिंखे पाण फिंगर में ईअं हथ में खणूं था, ऐं लैप्रोस्कोपी में जिते मां पेशेंट जे मथां बीह करे ई ऐं पंहिंजे हथनि सां सर्जरी थो कयां, ऐं साम्हूं टीवी में थो ॾिसां, मॉनिटर में छा मां थो कयां, उहा मां 10 फुट परे वेही करे मां पेशेंट जे मथां कोन वेठो आहियां। उहे छेदनि सां कुझु आर्म्स अंदरि वियूं आहिनि, उहे आर्म्स आहिनि मुंहिंजे कंट्रोल में, ऑपरेशन मां ई थो कयां। उहा हिकु मशीन आहे जेके मुंहिंजे छोटे छोटे मूवमेंट्स को उहा मिमिक थी करे ऐं अंदर उहे कम थी करे। त लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बि सर्जन कंदो आहे, रोबोटिक सर्जरी बि सर्जन ई कंदो आहे। रोबो में पंहिंजो दिमाग़ कोन अथसि। हाणे इन महिल जेका टेक्नोलॉजी अवेलेबल आहे उन में रोबो जंहिंखे पाण चऊं था, उहा हिकु मशीन आहे जो पाण कोई भी कुछ भी कोन थी करे सघे, उहो सर्जन खे ई करणो आहे।
1: बिल्कुल। ऐं पर कम असांजो तकिड़ो थी वेंदो आहे।
0: तकिड़ो त न थींदो आहे, रोबोटिक सर्जरी थोरी स्लो थींदी आहे पर मोर प्रिसाइज़ थो थी वञे, वधीक स्पेशलाइज़ थो थी वञे।
1: त जेको बि ट्रीटमेंट थिए थो उहो वधीक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट थिए।
0: हा, थिए थो।
1: बिल्कुल। डॉक्टर साहिबु, असांखे इहो बि ॿुधायो कि जेको लैप्रोस्कोपी ऐं दूरबीन में छा स्पेसिफिक सर्जरियूं थींदियूं आहिनि, कि कहिड़ी बि सर्जरी थी वेंदी आहे हुन
0: में? हाणे त वधीक में वधीक सर्जरी लैप्रोस्कोपिक थी थियूं
1: सघनि,
0: जेके कॉमन आहिनि उन्हनि में जीअं गॉल ब्लैडर जो ऑपरेशन, पित्त जी थैली में जेके पथर था थी वञनि उन्हनि जो ऑपरेशन, हर्निया जो ऑपरेशन, इहे त रेगुलरली असां हाणे कॾहिं ओपन कंदा ई कोन आहियूं। पर जीअं अलाई कैंसर्स आहिनि, लाइक पोएं घटि में घटि 15 सालनि में जेको खाद्य नली जो, ईसोफेगस जो कैंसर आहे, रेक्टम जो कैंसर आहे, इवन गॉल ब्लैडर जो कैंसर आहे, या स्टमक जो कैंसर आहे, कॾहिं कॾहिं इवन लिवर जो कैंसर आहे, उनखे असां हाणे लैप्रोस्कोपी सां ई कयूं था या रोबोटिक था कयूं।
1: डॉक्टर साहिबु, असांखे इहो बि ॿुधायो कि रोबोटिक सर्जरी त तव्हां ॿुधाई कि डॉक्टर जे हथ में ई हूंदी आहे, डॉक्टर ई कंदा आहिनि, पर मशीनुनि ज़रिए सुठे नमूने कंदा आहिनि। इन जो केतिरो फ़ाइदो पेशेंट्स खे थींदो आहे ऐं इन जो भविष्य में छा स्कोप आहे?
0: फ़ाइदो थींदो आहे, ऐं जीअं जीअं टेक्नोलॉजी एडवांस थींदी थी वञे फ़ाइदो वधीक वधंदो ई रहंदो। इन महिल छा आहे जो रोबोटिक सर्जरी थोरी महांगी आहे, इन करे असां हरेक खे कोन था रेकमेंड कयूं, जेको बि उनखे ख़र्च थो करे सघे उनखे रेकमेंड था कयूं, छो जी एडवांटेज आहे उन में, थोरो फ़ाइदो त आहे पेशेंट खे। ऐं अॻिले 10 सालनि में, 20 सालनि में पाण ॾिसंदासीं जेको बि प्रोसीजर आहे, हे सभई प्रोसीजर रोबोटिक पद्धति सां ई थींदा। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अहिड़ी एडवांस थी सघे, प्रोसीजर स्पेसिफिक, यानी जेको असां करण था चाहियूं, जेको बि ऑर्गन आहे उन्हनि जे लाइ स्पेसिफिक मशीन डेवलप थियनि थियूं, ऐं अॻिले 10-15 सालनि में इहा टेक्नोलॉजी अलाई एडवांस थी वेंदी।
1: स्कोप तमामु
0: अलाई स्कोप आहे।
1: जी जी। त डॉक्टर साहिबु, स्कोप जॾहिं एॾो सुठो आहे ऐं घणेई हिन में ॿियो बि रोबो अचनि पिया, त ज़रूरु ख़र्चे ते बि असर ईंदो ऐं पेशेंट्स खे वधीक फ़ाइदो मिलंदो अॻिते हली करे?
0: ख़र्चो त वधंदो, ख़र्चो हमेशह वधंदो। मुंहिंजी सलाह सभिनि खे इहा थींदी यूनिवर्सली, जेको बि व्यक्ति आहे पंहिंजे सामर्थ्य जे अनुसार पंहिंजो इंश्योरेंस कराए, ऐं जॾहिं बि इंश्योरेंस कराए उन्हनि में ज़रूरु

0: करण या उनमें कैंसर सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी या सब उन्हनि जे टर्म्स में इंक्लूडिड आहे या कोन आहे. इंश्योरेंस खां बिना सुठो इलाज फ्यूचर में संभव ई कोन थींदो. कोई बि व्यक्ति पंहिंजे द्वारा पंहिंजी इनकम सां सुठो इलाज कोन कराए सघंदो.
1: त डॉक्टर साहिबु, हिते मूंखे आम माण्हू जो जेको सुवाल इहो थी थो सघे त हीअ जेका बि सर्जरी थिए पई अॼु जे दौर में बि ऐं अॻिते बि थींदी, त हीअ छा सभु इंश्योरेंस कंपनी कवर ॾींदी आहे?
0: हा, धीरे सभु इंश्योरेंस कवर ॾींदी आहे उन्हनि खे, बट हर इंश्योरेंस कंपनी जा कुझु क्लॉज़ हूंदा आहिनि, कुझु घटि हूंदा आहिनि.
1: डॉक्टर साहिबु, हाणे मां इहो बि पुछणु चाहींदसि की जॾहिं बि कंहिं मरीज खे कैंसर थो थिए त उनखे त चिंता थींदी ही आहे, पर घर वारनि खे बि हिकु पैनिक वारी सिचुएशन अची वेंदी आहे, त अहिड़े माहौल में स्ट्रेस बि वधे ई थो, त ओॾी महिल मतिलबु घर जे परिवार वारनि खे ऐं पेशेंट खे छा सब्र करणु खपे?
0: न, इहो बिल्कुलु इहो नेचुरल आहे, इहो वाजिबु आहे, जे अगरि घर में परिवार में कंहिंखे बि कैंसर डिटेक्ट थो थिए त सभई पूरो परिवार जेको आहे उहो स्ट्रेस में अची वेंदो आहे, टेंशन में अची वेंदो आहे. इहा ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे, पर इम्पोर्टेंट इहो आहे त पाण उन खे थोरो धैर्य रखी करे सम्झूं कहिड़ो कैंसर आहे, कहिड़ी स्टेज में आहे ऐं कहिड़ा कहिड़ा उन में ऑप्शन्स आहिनि. उहे ऑप्शन्स असां ॻोल्हियूं किथे अवेलेबल आहिनि, डॉक्टर्स खां या स्पेशलिस्ट सां असां मिलियूं. इहो ॾेखारण में आयो आहे त जॾहिं बि पेशंट जे पंहिंजो जेको माइंडसेट आहे पॉज़िटिव थो रहे ऐं परिवार जो माइंडसेट बि पॉज़िटिव थो रहे, त उहो पॉज़िटिव माइंडसेट सां रिज़ल्ट बि पॉज़िटिव थो अचे. निराशा नेचुरल आहे, पर निराशा खे परे रखी करे पॉज़िटिव एटीट्यूड रखूं त फ़ाइदो वधीक थींदो. इहो मेडिकल साइंस बि हाणे चए थी.
1: बिल्कुलु सही आहे. ऐं डॉक्टर साहिबु, असांखे जनरली हर कैंसर लाइ तव्हां सुजाॻीअ लाइ असांजी ॿुधंदड़नि खे गाइडेंस ॾेई था सघो की भई सुजाॻ रहूं असां हिन बीमारीअ लाइ?
0: हा, त कैंसर जेको आहे उहो हाणे वधीक थो ॾिसण में अचे ॿिनि कारण सां. पंहिंजी लाइफ स्टाइल चेंज थी वई आहे, जीअं पाण ॻाल्हायो थोरी देरि पहिरियों, ऐं ॿियो कारण आहे जे टेक्नोलॉजी एडवांस थी वई आहे त असां हुन खे पिकअप बि था कयूं वधीक में वधीक, त इन करे कैंसर वधे थो. पाण सभिनि खे ॿ शयूं ज़रूरु रखणियूं आहिनि. स्क्रीनिंग, यानि पाण खे 45 उमिरि खां पोइ पाण खे रेगुलर टेस्ट कराइणा आहिनि हर साल ॿिनि सालनि में. अॼु अगरि पंहिंजे परिवार में कैंसर कंहिंखे पहिरियों थियो आहे त 35 सालनि खां पोइ ई पाण खे स्क्रीनिंग टेस्ट कराइणियूं आहिनि. ऐं सभिनि खे परिवार में पाण खे इंश्योरेंस कराए रखिणो आहे, ऐं सुठी लाइफ स्टाइल जंहिंमें लिमिटेड खान पान, रेगुलर व्यायाम, एक्सरसाइज़ ऐं पॉज़िटिव माइंडसेट, इन टिनि शयुनि जो ज़रूरु ध्यान में रखणा.
1: तव्हां एतिरी सुठी जॾहिं जानकारी ॾियो पिया असांखे, त हींअर ख़्यालु अचे थो की जेॾी महिल इहो डिटेक्ट थिए थो कैंसर, त एज़ अ डॉक्टर तव्हांखे बि पंहिंजे पेशेंट खे ॾाढो सुठी तरह ऐं नम्र थी करे हैंडल करिणो पवंदो आहे, ऐं तव्हां सां गॾु तव्हांजी यूनिट खे बि. त ओॾी महिल हिकिड़े डॉक्टर जे मन में कहिड़ी अहिड़ी ॻाल्हि ईंदी आहे कि डॉक्टर हूंदे मां हिन खे कीअं बचाए थो सघां? असां तव्हां खां ॿुधणु चाहींदासीं.
0: डॉक्टर जे साम्हूं चैलेंज ॿियो थींदो आहे
1: जी.
0: असांजो ट्रेनिंग, असांजी माइंडसेट ईअं थो थी वञे, जॾहिं बि असां ओटी में था वञूं ऑपरेशन थिएटर में ऐं असांजे सामने पेशंट आहे जेके एनेस्थीसिया ॾिनो आहे ऐं हुन जो कैंसर असांखे कढणो आहे, त असांजो माइंडसेट हिकु नंढे रूप में तव्हां इहे था सम्झी सघो जा जीअं कमांडो थींदो आहे, आर्मी मैन थींदो आहे,
1: बिल्कुलु
0: उन लाइ थी वेंदो आहे अचानक. त मूंखे भले ई 6 कलाक लॻनि, चाहे 8 कलाक लॻनि, चाहे 4 कलाक लॻनि, चाहे 12 कलाक लॻनि, उन टेक्निक्स डिस्क्राइब्ड आहिनि मुंहिंजे इन कैंसर जो पूरो 100% शरीर में ॿाहिरि कढणो आहे.
1: अच्छा,
0: उन लाइ मूंखे भले ई घणो बि टाइम लॻे, असां उन हर शइ खे भुली करे पोइ उन में त हली वञूं. त जॾहिं असां ऑपरेशन थिएटर में थींदा आहियूं त असांजे साम्हूं पेशंट कोन थींदो, असांजे साम्हूं कैंसर हूंदो, ऐं उन्हनि उहो कैंसर खे हराइणु असांजे मन में दिमाग़ में हलंदो रहंदो आहे. जॾहिं असां ॿाहिरि ईंदा आहियूं त सम्झाईंदा आहियूं हे पेशंट आहे.
1: ॾाढो सुठो डॉक्टर साहिबु, तव्हां पंहिंजी फीलिंग असांखे ॿुधाई की ओॾी महिल तव्हां पेशंट न ॾिसंदा आहियो.

0: तव्हां ॾिसंदा आहियो की हीउ कैंसर खे असांखे मिटाइणो आहे ऐं चवंदा बि आहिनि न की डॉक्टर भॻवान जो ॿियो रूप हूंदो आहे ऐं इन ही सोच सां सभु ॼणा डॉक्टर ॾे ईंदा आहिनि ऐं डॉक्टर बि ओॾीमहिल भॻवान जो रूप ठही करे असांखे स्वस्थ कंदा आहिनि ऐं ठीकु करण जी पंहिंजी पूरी कोशिश कंदा आहिनि। मां डॉक्टर साहिबु हाणे आख़िर में थोरे में तव्हां खां असांजे ॿुधंदड़नि लाइ संदेश तव्हां छा ॾींदा?
1: ध्यानु रखणु, थोरो सुजाग रहण, सुठी लाइफस्टाइल के पंहिंजे हर एक फैमिली में उन जो इम्पोर्टेंस इलाही आहे, अॼु जे ज़माने में शायदि वधीक आहे।
0: जी,
1: ॿारनि में बि लाइफस्टाइल शुरू सां विझूं, अवेयरनेस सभु बीमारी जी रखूं, कई विपदा कोन अचे उन लाइ पाण अॼु ई उन लाइ तयारु रहूं, जीअं इंश्योरेंस आहे या रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट आहिनि या जीअं बि असां डिस्कस कयो, इहा सभु शयूं दिमाग़ में रखे ऐं पॉज़िटिव माइंडसेट रखे, लाइफ में स्ट्रेस घटि रखी करे, सुठो खान पान रखी करे, रेगुलर एक्सरसाइज़ करे असां अॻिते वधूं त असां मां सम्झंदो आहियां वधीक में वधीक बीमारियुनि खां रहित सुठो जीवन असां व्यतीत करे था सघूं। ऐं अगरि कोई विपदा ईंदी बि आहे त परेशान न थियूं, छो जी अॼुकल्ह मेडिकल ट्रीटमेंट में हर बीमारी जो सुठो इलाजु अवेलेबल आहे।
0: तमामु सुठो डॉक्टर साहिबु तव्हां असांजे ॿुधंदड़नि खे संदेश ॾिनो। तव्हां असांजे स्टूडियो में आया ऐं तमामु सुठी जानकारी अॼु असांखे हिन विषय ते ॾिनव। तव्हां हिते आया, तव्हांजो घणो घणो धन्यवाद। साथियो, हींअर अवां ॿुधी रहिया हुआ डॉक्टर राजेश भोजवानी जिन सां कयल ॻाल्हि ॿोल कैंसर जी बीमारी ऐं शल्य चिकित्सा जा नया आयाम। हिन ॻाल्हि ॿोल खे ॿुधण खां पोइ अचो ॿुधूं वीर भान जेसवानीअ जी आवाज़ में ही गीत।

साथियों हिंदर अवां वीर भान जेसवानी जी आवाज में गीत बुधी रहा वा ए हन गीत सा गद ही अज जो असन जो सिंधी कार्यक्रम इते ही पूरो तो थे वरी खणी हाजिर थिना सी इंदर विस्पदी हिकड़ो बियो नौ सिंधी प्रोग्राम इ ही दिया जो 12:10 ते तेसी ते

हम आकाशवाणी बीकानेर के ठुला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12:40 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है हार्टलेस। गीत के बोल हैं अराफात महमूद के, संगीत है गौरव द गांवकर का।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति कृष्णा की आवाज में। फिल्म का नाम है तनु वेड्स मनु। गीत को लिखा है कृष्णा ने, संगीत है शैलेश आर सिंह और विनोद बच्चन का।

विशाल ददलानी की आवाज में आपने सुना तलाश फिल्म से ये गीत। गीत के बोलते जावेद अख्तर के, संगीत था राम संपत का। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए अगला गीत श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है हैप्पी न्यू ईयर। गीत के बोल हैं इरशाद कामिल के, संगीत है विशाल शेखर का।

श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में गाए हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

0: महत्वपूर्ण है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। इसमें छोटे किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आज राष्ट्रव्यापी समारोह आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा नई दिल्ली में इसकी शुरुआत करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व सेवाएं दी जाती हैं। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपये का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस बीच प्रदेश में भी आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखे गए हैं। विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में महिलाओं के लिए निशुल्क जांच शिविर लगाए गए हैं। साथ ही स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन अथक प्रयासों के फलस्वरूप आज देश ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल क्रांति तक वैश्विक मंच पर एक नई पहचान हासिल की है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत के अपने संकल्प को साकार करने के लिए सरकार सेवा, सुशासन और समृद्धि के इस पथ पर लगातार आगे बढ़ती रहेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डीग जिले के प्रवास पर हैं। उन्होंने आज डीग स्थित श्रीनाथ जी मंदिर प्रांगण में धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। श्री शर्मा कल डीग पहुंचे थे। उनके साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद हैं। राज्य के पश्चिमी इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी का असर बढ़ गया है। दिन के समय सूरज की तपिश और गर्म हवाएं जनजीवन को प्रभावित कर रही हैं। ज्यादातर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। राजधानी जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, जालौर, सीकर, झुंझुनू में पारा 40 डिग्री पर रिकॉर्ड हुआ। कल 45.6 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर में सबसे गर्म दिन रहा। वहीं फलौदी में 44.8, जैसलमेर और बीकानेर में 44, चूरू में 43.5 और बाड़मेर में 42.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर इलाकों में तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं आज कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। राज्य के सरकारी स्कूलों में अब गर्मी की छुट्टियां 28 जून तक रहेंगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार ग्रीष्मावकाश की अवधि बढ़ाकर 43 दिन कर दी गई है। पहले ये 17 मई से 20 जून तक 35 दिनों की थी। आदेश के अनुसार संस्था प्रधान की ओर से एक अवकाश के स्थान पर अब 2 दिन की छुट्टी दी जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमर

चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:05 हुए हैं। महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन आप सुनेंगे। आज प्रस्तुत करता है मनोज कंवर खंगारोत और सपना व्यास।

0: मुस्कान री मिठास, रिश्ता री गर्माहट और ज्ञान री सौगात लेर फिर हाजिर हाँ कार्यक्रम घर आंगन में। मैं आपरी सखी मनोज खंगारोत और म्हारे साथ है
1: मैं सपना व्यास। तो बहना आपरो घणो घणो स्वागत है और स्वागत रे साके राम राम।
0: राम राम बहना।
1: मन री बात हो, घर परिवार री बात या बात हो समाज री, हर विषय पर खुल बात करनो रो मंच है आपनो कार्यक्रम घर आंगन। तो बेना आप भी थोड़ी देर रेडियो कने आराम से बैठ, क्योंकि आगे कार्यक्रम में आपा बहुत ही चोखी चोखी चर्चा जो कर सा और कार्यक्रम री शुरुआत करा एक बहुत ही महान व्यक्तित्व सु।
0: सपना, धरती पर कदे कदे ऐड़ा महान व्यक्तित्व जन्म लेवे जिनारो जीवन केवल अपना समय नहीं बल्कि आवण वाली पीढ़िया ने भी प्रेरणा देवे है। ऐड़ा महापुरुष अपना कर्म, त्याग, संघर्ष और आदर्श से समाज और राष्ट्र विकास में अमिट योगदान देवे है।
1: और हाँ बेना, इतिहास रा पन्ना में कई महान शख्सियत रा नाम स्वर्ण अक्षरा सु अंकित है और आज आपा चर्चा करा एड़ा ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व री, जाने धरती आबा के सम्मान दियो जाए। हाँ बेना, ए प्रेरणादायक व्यक्तित्व है बिरसा मुंडा। और आज रो दिन यानी 9 जून बिरसा मुंडा शहादत दिवस रे रूप में मनाया जावे।
0: बेना, बिरसा मुंडा अंग्रेज हुकूमत और शोषण रे खिलाफ आवाज उठाई आरे द्वारा आदिवासी समाज ने एकजुट कर उल गुलान मतलब महान क्रांति रो आगाज करयो। बिरसा मुंडा जी रे द्वारा जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों रा हकारी जो लड़ाया ही बेलड़ी गई और समाज में जागृति, स्वाभिमान और एकता रो संदेश दियो गयो।
1: और मात्र 25 साल री उम्र में 9 जून 1900 ने अंग्रेज सरकार री कैद में वाणो निधन हो गयो, पर उनारो संघर्ष और बलिदान आज भी लाखा लोगों ने प्रेरणा देवे और आदिवासी समाज बाने धरती आबा यानी धरती रा पिता रूप में मान सम्मान देवे।
0: सही है। और सपना, अभी सिकल सेल बीमारी रे उपचार खातर भारत री पहली स्वदेशी जो क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी ही उनरो नामकरण भी बिरसा मुंडा रे सम्मान में बिरसा 101 राख्यो है। और वारी जयंती ने भारत सरकार द्वारा जनजातीय गौरव दिवस रे रूप में भी मनायो जावे है।
1: तो बेना, बिरसा मुंडा रो जीवन सराहनीय, त्याग भरोड़ो और न्याय खातिर संघर्ष री मिसाल है। उनरी शहादत ने कोटि कोटि नमन।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ആകാശവാണി എറ്റ് 90.
1: बना ढोल मंजीरा पर थिरकती आंगलियां और बा आंगलियों पर लिपटोड़ा डोरा से बंधी कठपुतलियां रो नाच तो आप भी खूब देखा होला।
2: और मनोज बहन मैं भी क्यों कि मन भी कठपुतलियां रो जिको नाच है और वो भी देखो मन बहुत अच्छो लागे और वो हमारा सबसे मन पसंदीदा क्या नहीं है पड़े खेल है।
1: हाथारा संचालन से लेर कठपुतलियां री लचक अचंभा और मनोरंजन रो खूबसूरत संगम है। और आपने पता है सपना बहन, इन तरह री हजारों लोक कलारो भंडार है अपने आदिवासी क्षेत्र रे मायने। देखो कोई भी समाज री जो पहचान है बा उनारी संस्कृति से होया करे है। और संस्कृति की आत्मा बठेरी कला और हस्तशिल्प में बसे है। परंपरागत कला और हस्तशिल्प अपनी समृद्ध विरासत री अमूल्य धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो आज भी देखो अपनी सांस्कृतिक पहचान ने जीवित राख राखी है।
2: और हाँ मनोज बहन, और बात करा अपनी आदिवासी क्षेत्र री तो पारंपरिक कला और हस्तशिल्प री तो ना सिर्फ अपने देश बल्कि विदेशा में आरी कला और कारीगरी ने खूब सम्मान मिल रही है।
1: हाँ सपना, अभी एक दिन में अखबार में प्रधानमंत्री जी द्वारा हाल ही में जो विदेश यात्रा करी गई और जो विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष माने भारत की समृद्ध कला संस्कृति और जो GI टैग जो उत्पाद हा बे उपहार स्वरूप दिया गया। आमे ही कई उपहार हा जो

0: आदिवासी क्षेत्रों की पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का उदाहरण हा, जहाँ असम री पारंपरिक मूंगा सिल्क, मणिपुर री शिरोई लिली प्रिंट री शॉल, इटली री प्रधानमंत्री जी ने उपहार स्वरूप भेंट करी ही।
1: देखो कितनी चोखी बात बताई है बेण, अपनी मनोज बेण। तो आप बात करा नहीं मनोज बेण, राजस्थान का आदिवासी क्षेत्र जिन रे माए मुख्य रूप से भील, गरासिया, सहरिया और डामोर जनजातियां निवास करे, उनारी जी की पारंपरिक कला और हस्तशिल्प सांस्कृतिक धरोहर रो अमूल्य हिस्सो है। और आ कला केवल जीविका चलाने रो साधन मात्र ही कोनी वा है, बल्कि उनारी जीवन शैली मान्यता और परंपरा रो एक प्रतिबिंब है।
0: सही है, बारा जो बारी जो मान्यता है, बारा जो रीति रिवाज है, वे सब ई मतलब आ परंपरा में आ रही जो कला है बारे माने झलके है।
1: बिल्कुल,
0: बिना आदिवासी समाज में आप देखो लकड़ी, बांस, मिट्टी और प्राकृतिक रंगा से फुटरी फुटरी कलात्मक चीजा बनावेड़ी परंपरा रही है। आप भी देखो आपरे घर रे मायने बांस से बनेवड़ी कया मतलब बहुत सा सजावटी सामान जो है घर रे मायने सजा रखा, उसी बांस री टोकरिया, चटाई और भी बहुत सारा मतलब यान का जो साजो सामान है जो आदिवासियों द्वारा बनाया जाओ, और बारी जो बनावट कह लो, बारी जो गुथवारी, बारी जो शैली है देखते ही बने है, अपनो मतलब ध्यान खींचे है वे चीजा।
1: और बिल्कुल, और मनोज आदिवासी महिलाओं द्वारा कढ़ाई है, बुनाई है और पारंपरिक आभूषण भी देखो वे बनाए जावे।
0: तो आ बात तो आप सही कह रहे हो, मतलब आदिवासी समाज री जो महिला है बारा जो बनाएड़ा आप कपड़ा वगैरह देखो, वस्त्र देखो बारा मतलब इत्ता बा में चटकीला रंगा रो जो है प्रयोग होवे, इंद्र सागे सागे कशीदा कांच रहा बारे ऊपर काम, आप अपने जो कालबेलिया नृत्य है,
1: मेरी
0: जो ड्रेस जो पहनी जावे, मतलब जितो खूबसूरत कालबेलिया जो नृत्य है उतो ही खूबसूरत बारी जो ड्रेस भी मायने जो वेशभूषा भी मायने पहनी जावे, बा भी जो अपनो ध्यान है वो बरबसी खींचे है,
1: विमन बे वे नहीं वे काच
0: लागोड़ी है,
1: और इनके अलावा भील जनजाति दी चित्रकला जिन रे माय रंग बिरंगा बिंदुआ प्रकृति पशु पक्षी और लोक जीवन रा दृश्य दर्शावे जाए।
0: बिल्कुल, आप देखो ए जो मांडना है गेरू सू और सफेद रंग सू मतलब कड़ी जी ने किया करे, उनसु जो मांडना मांडया जावे, इनसु जो दीवारा ने घर रा जो चौक ने जो सजायो जावे,
1: जो कि अपन मावड़ भाषा में आपा अल्पना कल्पना है दोनों ही कहवा है।
0: हाँ, हाँ, तो बेकता खूबसूरत लागे। इनके अलावा आप देखो जो आदिवासी महिला है वे गहना तो चलो पहने ही है, बहुत तरह रा आभूषण जो है वे पहने ही है, इनके अलावा जो गोदना गुदावे है जिन्हें आज री अगर के ध्यान आधुनिक भाषा रे मायने टेटू केयर संबोधित करा, तो वो आज रो कोनी वो गोदना गुदवानो बहुत पुरानो आदिवासी जो है बारी परंपरा से चले आ रहे है, बे अपना मतलब श्रृंगार के लिए जो है टैटू है जो गुदवावे है अपनी शरीर पे।
1: और आदिवासी क्षेत्र री पारंपरिक कला और वाणिज्य की कारीगरी है बर बस ये सब रो ध्यान वो खींच ले।
0: सही कह रहा है, और वो ही कारण है तो देखो आज सरकार और कई संस्था है जो आरी कला और हस्तशिल्प ने बढ़ावो देवन खातर प्रशिक्षण प्रदर्शनी और बाजार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ताकि जो कलाकार है आने रोजगार तो मिले ही मिले, साथ साथ आरी कला रो सम्मान
1: भी मिले,
0: आने सम्मान मिले, देश विदेश में आरी पहचान मजबूत हो।
1: और मनोज बहन आणी कला और हस्तशिल्प उनारी संस्कृति इतिहास और जी आणी जी को जीवन शैली रो जो दर्पण है, तो ई धरोहर ने बचावनो और अगली पीढ़ी तक पहुंचावनो अपनी भी तो जिम्मेदारी है।
0: सही कह रहे हो, तो चलो अब इन जिम्मेदारी के सागे सागे आपनी एक और जिम्मेदारी है कि आपा अपनी बहना ने बढ़िया बढ़िया लोक गीत भी सुना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बिना एक माँ होने रे नाते आपने हमेशा टाबरा रे स्वास्थ्य बारे खाने पीने री देखो सपना सदैव चिंता रहे ही है। और जब टाबर स्कूल जाने लगे तो फिर मेरी पढ़ाई लिखारी चिंता और बढ़ जावे है। और जब टाबर कोई विषय विशेष में थोड़ो कमजोर हो बिना समझ को नहीं आ रहे है तो ज्या की गणित विषय है तो माँ री चिंता है जो और बढ़ जाया करे।
3: तो बेणिया परेशान हो वे सो देखो कोई काम कौन चले बस टाबरा ने खेल खेल में गणित सिखाए और उन रामायण रुचि पैदा कर सको बस वही है। और आज अपन विषय भी तो मनोज वही भी है कि खेल खेल में गणित वार्ता पढ़िया है और वार्ताकार है अंजलि व्यास।
2: तो चलो फिर बेना ने सुनावा वार्ता।
4: गणित मानवता की सबसे रचनात्मक और काव्य प्रयासों में से एक है लेकिन यह छात्रों को इस तरह से नहीं सिखाया जाता जिस तरह से सिखाया जाना चाहिए। छात्रों को सिखाया जाता है कि यह एक आपदा है। गणित के प्रति बचपन से ही बच्चों में रुचि उत्पन्न हो सके इसके लिए ये प्रयास किया जाना चाहिए कि खेल खेल में गणित किस तरह से सिखाई जाए। इसके अनेक तरीके हो सकते हैं जैसे कि घर में माता पिता अपने बच्चे से कहे कि बेटा फ्रिज में से 4 मिर्ची ला या 2 आलू ला तो उन माता पिता को यह अनुभव हो सकता है कि उनके बच्चे को गिनती का ज्ञान है या नहीं। इसके अलावा घर में अनेक बर्तन होते हैं जो कि अलग अलग आकार के होते हैं तो बालक को घर में ये ही ज्ञान करवाया जा सकता है कि अमुक बर्तन किस आकार का है जिससे उस बच्चे को आकृतियों का ज्ञान हो जाता है कि कौन सी वस्तु आयताकार है कौन सी गोलाकार या कौन सी त्रिभुजाकार। विद्यालयों में भी पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों को खेल खेल में गणित सिखाई जानी चाहिए क्योंकि सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है न कि पढ़ाया गया ज्ञान। और गणित तो एक ऐसा विषय है जो कभी भी पढ़ाया नहीं जा सकता केवल मात्र सिखाया जा सकता है। गणित का प्रारंभिक ज्ञान पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों को कैसे हो इसके लिए अनेक खेल हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक शीट पर अनेक पक्षियों के चित्र है जिनमें मोर तोता कबूतर कोयल है और चारों पक्षियों की संख्या अलग अलग है। फिर अध्यापक एक छात्र से पूछे कि इनमें मोर कितने हैं तो बच्चा उत्सुकता से बताएगा कि मोर कितने हैं। फिर अध्यापक पूछे कि इन चारों चित्रों में सबसे अधिक कौन सा पक्षी है तो बच्चे द्वारा बताया जाएगा कि अमुक पक्षी सबसे अधिक है। इन प्रयासों से बच्चे में उत्सुकता रहेगी और प्रश्न का उत्तर देने की और प्रश्न को सुनने की। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लगातार सही उत्तर देने पर छात्र में गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा भी और भी खेल हो सकते हैं। कविता के माध्यम से शिशु वर्ग के बच्चों को आसानी से गिनती सिखाई जाती है। ऐसी ही कविता आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। एक बड़े राजा का बेटा 2 दिन से बिस्तर पर लेटा 3 महात्मा सुनकर आए 4 दवा की पुड़िया लाए 5-5 घंटे गरम कराई 6-6 घंटे बाद पिलाई 7वें दिन नैना खोले 8वें दिन रानी से बोले 9वें दिन में दौड़ लगाई 10 की गिनती सबको आई चलो बच्चों बजाओ ताली। इस कविता से बच्चे इतने प्रश्न हो जाएंगे कि वो 10 तक गिनती एक ही दिन में सीख जाएंगे। लेकिन आज के समय में इस तरह से गणित नहीं सिखाई जाती बल्कि गणित को पढ़ाया जाता है। जिस दिन बच्चे

स्कूल में प्रवेश करता है उसी दिन से ही उसे पेंसिल पकड़ाई जाती है। कहने का तात्पर्य है कि मौखिक ज्ञान की कमी हो रही है। गणित विषय को भी रटने के तरीके से पढ़ाया जा रहा है। बच्चा 1 से 100 तक गिनती लिख तो लेता है, परंतु उसे अंकों का ज्ञान नहीं हो पाता और उसे बीच में से कोई संख्या लिखने को कह दिया जाता है तो वह नहीं लिख पाता, जिससे बच्चों के मन में गणित के प्रति भय उत्पन्न हो जाता है और बच्चे के गणित विषय के मूलभूत ज्ञान में कमी रह जाती है। और जैसे जैसे वो अगली कक्षा में जाता है उसका भय गहरा होता जाता है, इस वजह से वह गणित विषय में पिछड़ जाता है। ऐसी ही एक गणित की समस्या से ग्रसित सिमोन की कहानी। सिमोन एक 7 वर्ष की बच्ची जिसे गणित की परीक्षा में असफल रहने के बाद उसके शिक्षकों द्वारा अपमानित किया जाता है, जिस कारण उसे गणित चिंता का विषय लगने लग जाता है। वह गणित रूपी एक शैक्षिक बीमारी से ग्रसित हो जाती है। वह कक्षा में जब गणित का पीरियड आता है तो वह डरने लग जाती है। उसे सवाल का जवाब आता है फिर भी वह उसे हल नहीं कर पाती, क्योंकि उसे डर रहता है कि फिर से उसे अपमानित न होना पड़े। वह घर में भी गणित के प्रश्न पूछने पर ऐसी ही हरकतें करती है। इसके उससे घर वाले भी चिंता ग्रस्त हो जाते हैं। उसे गणित विषय से इस तरह से डर लगता है जैसे मानो सांप आ गया हो। उसे गणित की संख्या राक्षसों की भांति दिखाई देती है। गणित के सवालों से बचने के लिए वह नए नए बहाने बनाने लग जाती है। सिमोन के मन में गणित विषय के प्रति भय बैठ गया है। अब इस समस्या को हल करने की आवश्यकता है। इस समस्या को निपटाने के लिए उसके माता पिता उसे एक मनोचिकित्सक के पास ले गए। उस मनोचिकित्सक ने उन्हें एक गणित विषय के विशेषज्ञ के पास भेजा। उस शिक्षक ने सिमोन को 100 प्रश्न कागज पर हल करने को दिए और समय दिया 5 मिनट। उन प्रश्नों को देखते ही सिमोन की दिल की धड़कन बढ़ गई और उसने अपने पेट को पकड़ लिया और उसका मस्तिष्क ठंडा हो गया। इसको देखकर उस विशेषज्ञ ने अनुभव किया कि यह गणित रूपी लकवे से ग्रस्त है। इसका इलाज करने के लिए उन्होंने इसके दिमाग से गणित के डर को निकालने के लिए एक गणितज्ञ के पास भेजा। उस गणितज्ञ ने खेल खेल में गणित सिखानी शुरू की और 1 साल तक सिमोन को अपने पास रखा। उसे घनाकार वर्गाकार वस्तुओं से घन और वर्ग के प्रश्न हल कराने सिखाए। उसे यह बताया गया कि कोई भी 100 सवाल 5 मिनट में हल नहीं कर सकता। उसके दिमाग से गणित का भय निकाला गया। उस अध्यापक ने सिमोन को पूछा कि क्या तुम एक आइसक्रीम पार्टी में सारी आइसक्रीम एक साथ खा सकती हो क्या? तो उसने जवाब दिया नहीं। तो उसके शिक्षक ने उसे समझाया कि हम सभी सवाल एक साथ 5 मिनट में नहीं कर सकते। धीरे धीरे सिमोन को खेल खेल में गणित समझने आने लगी। सिमोन को यह समझ में आ गया कि गणित कोई कठिन नहीं है, यह तो एक 3 अक्षरों का शब्द है। गणित की समस्या में अमेरिका सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। अमेरिका उच्च विद्यालय के केवल 32% शैक्षिक प्रगति के राष्ट्रीय मूल्यांकन पर गणित में कुशल है। कई छात्र ऐसे हैं जिन्हें गणित ना पसंद है और गणित में जो खराब हो रहे हैं, उन्हें गणित में रुचि उत्पन्न करने के लिए शिक्षकों को गणित को आकर्षक रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा और ये आकर्षण का प्रमुख स्रोत है खेल खेल में गणित सिखाना। गणित का सार है उसे दिलचस्प कैसे बनाया जाए। ये तो हुई खेल खेल में गणित कैसे पढ़ाई जाए, लेकिन इस विषय को यदि गंभीरता की ओर ले जाए तो हम देखते हैं कि बड़ी कक्षाओं के बच्चे भी गणित से दूर रहने की कोशिश करते हैं और उनके मन में भी रहता है कि गणित हमें समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि वो गणित विषय को दूसरे विषय की तरह रटते हैं और अंक गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए सूत्रों को रटते हैं। लेकिन आवश्यकता है कि सूत्रों को रटा नहीं जाए, बल्कि खुद सूत्र बनाकर उस प्रश्न को हल करें, क्योंकि गणित एक अभ्यास का विषय है। यदि कोई बच्चा एग्जाम के टाइम से 2 दिन पहले गणित को रटकर तैयारी करता है तो वह सार्थक नहीं है, बल्कि हर दिन के अभ्यास से ही कोई बच्चा गणित में सफलता अर्जित कर सकता है। आजकल ट्यूशन आम बच्चे की दिनचर्या का हिस्सा है। बच्चा गणित की ट्यूशन जाता है, फिर घर पर गणित के प्रश्न करता है और फिर भी यदि उसके प्रश्न का उत्तर सही नहीं निकलता तो वह पूरे दिन गणित के बोझ को लिए रहता है। इसके लिए शिक्षकों को ये प्रयास करना चाहिए कि वो बच्चे को ट्रिक पर गणित पढ़ाएं, क्योंकि गणित एक ट्रिक का विषय है। आज का युग

0: प्रतिस्पर्धा का युग है। हर बच्चा आगे बढ़ने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। आजकल परीक्षाओं में पेपर में गणित का भी एक पार्ट होता है, तो उस समय गणित के प्रश्न को हल करते समय यदि कोई संख्या का वर्ग निकालना हो तो इतना समय नहीं होता कि दो बड़ी बड़ी संख्याओं की गुणा की जाए। उस समय ट्रिक की जरूरत महसूस होती है। तो इसी के साथ एक संख्या का वर्ग निकालने की मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगी। जैसे एक संख्या लेते हैं 25 और इसका वर्ग निकालना है, तो सबसे पहले 25 के पीछे की संख्या 5 है, तो 5 का वर्ग निकालेंगे जो कि होता है 25। अब हमारी संख्या 25 के आगे की संख्या 2 में 1 जोड़ते हैं तो 3 प्राप्त होता है, और 2 और 3 की गुणा करते हैं तो 6 आता है, जिसे 25 के आगे लिखने पर 625 बनता है, जो कि हमारा उत्तर है। अतः ट्रिक की सहायता से हम 25 का वर्ग 625 एक सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं। अतः ट्रिक की सहायता से प्रश्नों को हल करके गणित को रोचक बनाया जा सकता है।
1: तो बेना, अभी आप सुनी वार्ता खेल खेल में गणित, और अपना आजरा वार्ताकार है अंजलि व्यास। तो अब वार्ता रे सागे खेल खेल में गणित तो आपा सीखी, पर अब कार्यक्रम रे मायने थोड़ो सो गीत संगीत भी
2: सुनो जरूरी है। सही बात है।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: सपना, गीत संगीत सुनने से मन कितना खुश हो जावे। नहीं अभी वो इतल पीतल हमारा बेवड़ा, मतलब मैं तो यह हमारा पग अपने आप ही थिरकन लाग रहे है गीत रे सागे, मतलब कितनी खुशी देवे गीत संगीत आपने। और एक चीज और बताऊं आपने, जेन गीत संगीत आपने मतलब इतनी खुशी देवे ने बिया ही वो ही उन तरीके रो जो आनंद है वो अपना शरीर ने अपनो मन भी जो है वो पा सके है। कुछ बताओ उस बहना ने क्यों तरीके से पा सके है।
3: अरे मनोज बहन थे तुम्हारी मन री भी बात ही छीन ली। और क्या नहीं, आयुर्वेदिक योग ए तो जी यानी एक ही सिक्के का दो पहलू है। और खासकर उन उम्र में जब अपना स्वस्थ बुढ़ापे की बात करा। और मनोज साची बात बताऊं थाने कि आजकल आपा देखें कि लोग सोचे कि भाई बुढ़ापो आयो ही कोनी, बीमार है तो घर को हुए ही कोनी। पर मैं तो वही कहूँ कि अगर योग थारे सागे है तो बुढ़ापो भी एकदम देखो मजबूत और कंचन वर्गरो उसी। और बड़ी बात है कि काया राखे निरोगो निरोगी जो जग में वो ही राजा, योग करो जो बुढ़ापे में उनरे हर दिन है ताजा।
2: अब बात तो 16 आना सच्चे। देखो बेना, आप भी अपना घर रे मायने जो भी अपना बड़ा बुजुर्ग है बाने भी योग री तरफ लेट जाओ।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: क्योंकि क्या करे नी अब बुढ़ापे रे सागे सागे जियान जियान उम्र बढ़े है, 70 तरह री बीमारियां, गोडा दुखनो और बहुत सी चीजें,
3: बहुत सी चीजें हो जाए।
2: इन सब चलते अगर थोड़ो भी योग ने अपने जीवन में शामिल करो जावे तो जो परेशानियां हैं बाने कुछ हद तक कम कियो जा सके। बस किया करें ने कि गोडा हाथा रो दर्द मिटे, मिट जावे सब रोग, बुढ़ापा ने बरदान बना दे ओ मारो प्यारो योग।
3: योग बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो चलो फिर अब बेना ने एक गीत भी सुना दिया।
3: बिल्कुल।

0: बहनों ने सुना अपना कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्स पर। दोपहर के 2 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार। समाचार पहले अंग्रेजी में, उसके बाद हिंदी में सुनवाए जाएंगे। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: Afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news.

0: जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा, कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे, राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनीमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा

0: लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
3: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व

0: उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 2:30 और 15 सेकेंड। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान की बात।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: नमस्कार सभी किसान भाई बहनों,
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद सलामत, डोमिनिक और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम। गीत को लिखा है महबूब ने, संगीत है इस्माइल दरबार का।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म का नाम है तेरे नाम। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है हिमेश रेशमिया का।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में तेरे नाम फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था समीर ने, संगीता हिमेश रेशमिया का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति श्रेया घोषाल की आवाज में। फिल्म का नाम है तुमसा नहीं देखा। गीत के बोल है समीर के, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

तुमसा नहीं देखा फिल्म का गीत आपने सुना श्रेया घोषाल की आवाज में। समीर के लिखे बोलों को संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। फिल्म का नाम है तुम बिन। गीत को लिखा है फैज अनवर ने, संगीत दिया है निखिल विनय ने।

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म का गीत आपने सुना मित्राज की आवाज में। गीत और संगीत था मित्राज का। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर हमारी पहली सभा अब यही समाप्त होती है। FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारी सभा जारी रहेगी। ये प्रोग्राम हमारे DRM चैनल 1386 किलोहर्ट्ज़ पर भी उपलब्ध थे। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के साथ हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है। इसके साथ हमारी आज की संध्याकालीन सभा अब प्रारंभ होती है। हम इस सभा में आप सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभा में आइए, सबसे पहले सुनते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने कुवैत में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा के प्रति ध्यान देने के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल भू सीमा वाले देश में सीमा प्रबंधन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित रक्षा भूमि पर बड़े पैमाने की पहली सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ बड़े पैमाने पर

0: सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये 250 मेगावाट की सौर परियोजना उत्तर प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और बिजली खर्च में दीर्घकालिक बचत भी करेगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार राज्यों के साथ भी सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है।
1: सभी

0: एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार राज्यों के साथ भी सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेक राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्ष में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ देश को मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। भारत की विदेश नीति में पिछले 12 वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसमें ब्रांड इंडिया और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत संकट के समय सबसे पहले मदद करने वाले देश के रूप में विकासशील और अल्पविकसित देशों की आवाज बनकर उभरा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वो धार्मिक शब्दावली के जरिए अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना उल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया है। श्रीलंका के दामुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 36 ओवर में 5 विकेट पर 200 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलम आरू चैनल है। शाम के 5:05 हुए, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रही हैं निशा और शिवानी।

0: स्वस्थ तन में बसता है स्वस्थ मन, योग से जीवन बने खुशियों का उपवन। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त निशा शर्मा,
1: और मैं हूं आपकी साथी शिवानी।
0: दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जोड़ों का दर्द एक आम समस्या बनती जा रही है। पहले ये समस्या केवल बुजुर्गों में दिखाई देती थी, लेकिन अब युवा भी घुटनों, कंधों, गर्दन और कमर के दर्द से परेशान रहते हैं।
1: बिल्कुल निशा, लंबे समय तक बैठकर काम करना, शारीरिक गतिविधियां की कमी या गलत खानपान और बढ़ता तनाव भी जोड़ों की समस्याओं का बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि योग के माध्यम से हम अपने जोड़ों को स्वस्थ और मजबूत भी बना सकते हैं।
0: शिवानी, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया।
1: बिल्कुल,
0: और यदि शरीर स्वस्थ है तो हर दिन हमारा उत्सव जैसा जाता है, और यदि स्वास्थ्य साथ ना दे तो जीवन की कई सारी खुशियां फीकी सी पड़ जाती हैं। इसलिए योगासन जो है वो बहुत ही हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, आज जानते हैं कि योगासन किस प्रकार से हमारे जोड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, जोड़ों के लिए योग क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल निशा, जब हम नियमित योग करते हैं तो हमारे शरीर में रक्त संचार बेहतर बना रहता है। इससे जोड़ों तक पर्याप्त पोषण पहुंचता है, खून पहुंचता है और उनमें जकड़न कम होती जाती है।
0: हाँ शिवानी, साथ ही योग शरीर को लचीलापन बढ़ाता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और जोड़ों पर पड़ने वाले अनावश्यक दबाव को कम करता है।
1: बिल्कुल, जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे सरल उपाय जो है वो है योगासन, और इसी के अंदर आता है ताड़ासन।
0: हाँ, और इस ताड़ासन को करने के लिए इस आसन में सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को

0: उठाया जाए और पूरे शरीर को खिंचाव दिया जाता है। इससे रीढ़, घुटनों और टखनों को मजबूती मिलती है।
1: बिल्कुल, इससे दूसरा महत्वपूर्ण आसन है, पता है क्या है? वृक्षासन। ये संतुलन बढ़ाने के साथ साथ आपके घुटनों और पैरों के जोड़ों को मजबूत भी बनाता है।
0: और शिवानी, साथ ही साथ ये मानसिक एकाग्रता को भी बढ़ाता है और शरीर में स्थिरता भी लाता है।
1: कमर हो, रीढ़ की हड्डी के लिए भुजंगासन बहुत ही लाभकारी माना जाता है। साथियों,
0: शिवानी, इस आसन से पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और रीढ़ की लचक बनी रहती है, जिससे कमर दर्द में राहत मिल सकती है।
1: जोड़ों की जकड़न दूर करने के लिए पवन मुक्तासन भी काफी उपयोगी है। साथियों,
0: दोस्तों, ये आसन घुटनों, कूल्हों और कमर के जोड़ों को सक्रिय बनाता है और शरीर में लचीलापन बढ़ाता है।
1: इसी कड़ी में अगर हम आगे जानेंगे त्रिकोणासन, ये आसन शरीर के जोड़ों को सक्रिय बनाता है और मांसपेशियों में खिंचाव पैदा करता है।
0: और इसके नियमित अभ्यास से कमर, कंधों और घुटनों की कार्य क्षमता जो है वो बेहतर होती है।
1: साथियों, योगासन करते समय शरीर पर आवश्यकता से अधिक जोर ना डालें, उसे तनाव ना दें, बल्कि धीरे धीरे इसका उपयोग जो है वो शुरू करें।
0: दोस्तों, योग के साथ संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, अच्छी नींद और नियमित व्यायाम भी जोड़ों को स्वस्थ रखने में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं।
1: बिल्कुल, नियमित योग अपनाइए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए और अपने शरीर को निरोग बनाइए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए।
0: दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा, हमारा शरीर प्रकृति का अनमोल उपहार है। इसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम प्रतिदिन कुछ मिनट योग के लिए निकाल लें तो न केवल जोड़ों की समस्याओं से बच सकते हैं बल्कि एक ऊर्जावान और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं।
1: बिल्कुल निशा, योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की कला है। ये हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है, इसलिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। तो साथियों, चलिए सुनते हैं अब अगला गीत।

0: साथियों, वक्त हो गया है अब हमारे क्विज सेगमेंट का, जिसमें हम आपसे पूछेंगे दो सवाल जिनके जवाब जानने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ कार्यक्रम के अंत तक। तो हमारा पहला सवाल है,
1: हाल ही में भारत का 7वां रीजनल मौसम विज्ञान सेंटर कहाँ शुरू हुआ है?
0: और हमारा दूसरा सवाल है साथियों, हाल ही में नॉर्वे चेस का खिताब किसने जीता?

मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: हमारा भारत देश भी कितना कमाल है ना शिवानी। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक विविधताओं से भरा, लेकिन फिर भी एक धागे में पिरोया हुआ।
6: बिल्कुल निशा, हमारा भारत देश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अध्यात्म की भूमि, वेदों का ज्ञान, शून्य का आविष्कार करने वाला और पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है का संदेश देने वाला महान देश है।
5: हाँ, और आज हमारा यही महान भारत विश्व पटल पर एक महाशक्ति और विकसित राष्ट्र बनने के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
6: लेकिन जब भी भारत देश के इस महानता और इसकी पावन धरती की बात होती है ना निशा, तो मेरी आंखों के सामने एक और अदम्य तस्वीर उभर आती है।

0: वो तस्वीर है हमारी भारतीय सेना की।
1: बिल्कुल शिवानी, भारतीय सेना जिनके बारे में सोचकर ही रगों में खून तेजी से दौड़ने लगता है। हमारी थल सेना, नौसेना और वायु सेना के जवानों का जोश, जुनून और जज्बा तो पूरी दुनिया में बेमिसाल है। दोस्तों, जब पूरा देश चैन की नींद सो रहा होता है, तब सियाचिन की हाड़ कपा देने वाली ठंड में -50 डिग्री तापमान हो या जैसलमेर के तपते रेगिस्तान की 50 डिग्री की गर्मी, ये जांबाज सीना ताने खड़े रहते हैं।
0: बिल्कुल, और इनका शौर्य, इनका त्याग ही है जो इस महान भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखता है।
1: सच में शिवानी, इनके जज्बे को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। लेकिन कभी कभी मेरे मन में एक सवाल आता है, हमारे सैनिक दिल से तो फौलादी हैं ही, पर जंग के मैदान में दुश्मन को धूल चटाने के लिए उनके हाथों को ये आधुनिक और खतरनाक हथियार, अचूक मिसाइलें और वो बुलेट प्रूफ सुरक्षा कवच देता कौन है? उनके पीछे एक बैक सपोर्ट में कौन खड़ा है?
0: बिल्कुल ही लाजवाब सवाल किया है तुमने निशा। सीमा पर लड़ने वाले हमारे सैनिक अगर भारत माता के योद्धा हैं, तो पर्दे के पीछे रहकर उन योद्धाओं के लिए अभेद्य अस्त्र शस्त्र और सुरक्षा कवच तैयार करने वाले विश्वकर्मा का नाम है DRDO।
1: दोस्तों, DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमें इसे बड़े गर्व से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कहते हैं। ये सीधे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि भारत को रक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए।
0: बिल्कुल, पूरे भारत में DRDO की 50 से भी अधिक प्रयोगशालाएं फैली हुई हैं। और कमाल की बात क्या है पता है निशा, कि हर लैब का अपना एक अलग स्पेशल काम होता है। जैसे कोई लैब सिर्फ मिसाइलें और रडार बनाती है, कोई लड़ाकू विमानों पर रिसर्च करती है, तो कोई लैब खास तौर पर हमारे सैनिकों के लिए माइनस डिग्री तापमान में पहने जाने वाले कपड़े और लंबे समय तक खराब ना होने वाला खाना भी तैयार करती है।
1: सच में शिवानी, हमारे वैज्ञानिकों को भी सलाम है। शिवानी, लगे हाथ DRDO के कुछ ऐसे कारनामे भी बता दो जिसे सुनकर हमारे श्रोताओं का सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाए।
0: क्यों नहीं निशा, हमारी आन बान और शान यानी अग्नि और पृथ्वी जैसी खतरनाक मिसाइल, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, हमारा अपना स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस और जमीन पर गरजने वाला अर्जुन टैंक, ये सब DRDO के ही आविष्कार हैं।
1: और मैंने सुना है शिवानी, अभी हाल ही में तो इन्होंने हाइपर सैनिक टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण करके पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों को हैरान कर दिया है। इसका मतलब अब कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता।
0: बिल्कुल सही कहा निशा, आज DRDO की बदौलत भारत रक्षा के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि अब हम दूसरे देशों को अपने हथियार एक्सपोर्ट करने का काम भी कर रहे हैं।
1: सच में शिवानी, आज तुमसे बात करके दिल खुश हो गया। भारत की महानता, हमारी सेना का जोश और DRDO के वैज्ञानिकों का ये अनोखा संगम सच में अतुल्य भारत की असली तस्वीर है।
0: वो तो है निशा, लेकिन ये सब मुमकिन हुआ है हमारी जल, थल और नभ यानी तीनों भारतीय सेना के जोश और जुनून से। तो चलिए एक संदेश सुनते हैं जो भारतीय सेना के नाम पर है।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: पेड़ों की छांव, नदियों का जल, प्रकृति से ही है जीवन सफल। दोस्तों, हम जिस धरती पर रहते हैं वो केवल हमारे

0: हमारा घर नहीं है बल्कि करोड़ों जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और प्राकृतिक संसाधनों का भी आश्रय है। लेकिन आज यही धरती प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है।
1: बिल्कुल निशा, बढ़ती आबादी, औद्योगिकरण और आधुनिक जीवन शैली ने पर्यावरण पर बहुत ही बुरा प्रभाव डाला है। यदि हमने समय रहते कदम ना उठाए तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, शुद्ध यानी शुद्ध पानी और हरियाली देखने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है।
0: दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्यावरण है क्या। पर्यावरण हमारे चारों ओर मौजूद प्राकृतिक और मानवीय तत्वों का समूह है। इसमें वायु, जल, भूमि, वन, जीव जंतु और मानव समाज सभी शामिल हैं।
1: और जब इन तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है तब पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए अधिक पेड़ कटने से वर्षा का चक्र प्रभावित होता है और मिट्टी का कटाव बढ़ता है और तापमान में भी वृद्धि हो जाती है।
0: दोस्तों, आज दुनिया जिस सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही है वो है जलवायु परिवर्तन। बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और मौसम के पैटर्न में भी बदलाव देखने को मिल रहा है।
1: इसके अलावा निशा, वायु प्रदूषण की भी एक गंभीर समस्या है। वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले धुएं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अस्थमा, फेफड़ों की बीमारियों और हृदय रोग जैसी समस्याएं भी काफ़ी बढ़ रही हैं।
0: बिल्कुल, इसलिए हमें महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ेगा, पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं।
1: बिल्कुल, इस और कहा भी गया है निशा, एक पेड़ 100 पुत्र समान देता जीवन का वरदान। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ तो जरूर लगाना चाहिए।
0: दोस्तों, प्लास्टिक प्रदूषण भी आज बहुत बड़ी समस्या बन चुका है और एक बार उपयोग होने वाली प्लास्टिक वस्तुएं वर्षों तक नष्ट नहीं होती हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं।
1: इसीलिए कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग करें और प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें। ये छोटी पहल ही पर्यावरण की रक्षा में एक बड़ा योगदान हो सकती है।
0: साथियों, पर्यावरण संरक्षण में स्वच्छता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम अपने घर, मोहल्ले और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखें तो प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
1: बिल्कुल निशा, भारत की संस्कृति में प्रकृति को सदैव सम्मान दिया जाता है। हमारे त्यौहार, परंपरा और जीवन शैली प्रकृति के साथ सामंजस्य का संदेश भी देती है।
0: और शिवानी, हमारे पूर्वज पेड़ों, नदियों और पर्वतों को पूजनीय मानते हैं। ये केवल आस्था नहीं है बल्कि पर्यावरण संरक्षण का एक प्रभावी तरीका भी है।
1: तो आज आवश्यकता है कि हम आधुनिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखें, और इसके साथ ही विकास भी जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास जो प्रकृति को नुकसान बिल्कुल ना पहुंचाए।
0: तो दोस्तों, आइए आज हम एक संकल्प लेते हैं, ना करेंगे प्रकृति का अपमान, बचाएंगे धरती की शान, पेड़ लगाएंगे, जल बचाएंगे, स्वच्छ पर्यावरण बनाएंगे।

0: शिवानी, गर्मी तो मानो अपना कहर बरसा रही है, सुबह की गुनगुनी धूप तो फिर भी कितनी अच्छी लगती है ना।
1: वो तो है निशा, पर सोचो ये धूप हम तक आने के लिए लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करके आती है, वो भी सिर्फ 8 मिनट और 20 सेकंड में। प्रकाश की स्पीड ब्रह्मांड में सबसे तेज जो है।
0: वही तो शिवानी, और मजे की बात देखो, सूर्य का प्रकाश हमें पीला दिखता है, जबकि असल में ये पूरी तरह सफ़ेद होता है, जिसमें इंद्रधनुष के 7 रंग छिपे होते हैं। हमारे वायुमंडल की हवा बस इसके नीले रंग को बिखेर देती है।
1: अरे वाह, तुम्हें तो लाइट स्कैटरिंग यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में काफी कुछ पता है। वैसे जब भी प्रकाश के बिखरने की बात आती है तो मुझे हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन याद आ जाते हैं।
0: हाँ शिवानी, चंद्रशेखर वेंकट रमन तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव से निकल कर उन्होंने विज्ञान की दुनिया हिला दी थी। वो सरकारी नौकरी में बड़े अफसर थे, लेकिन विज्ञान के प्रति उनका जुनून इतना था कि उन्होंने नौकरी छोड़कर बेहद कम पैसों में रिसर्च करना चुना।
1: बिल्कुल निशा, उनके पास बड़ी बड़ी लैब्स या महंगे उपकरण नहीं थे, फिर भी उन्होंने कलकत्ता की एक छोटी सी लैब में टूटे फूटे औजारों के दम पर इतिहास रच दिया। उनकी यही सादगी और लगन और जोश और जुनून उन्हें औरों से अलग बनाती है।
0: साथ ही उनकी इसी लगन का नतीजा था रमन प्रभाव। साल 1921 में जब वो जहाज से लंदन से भारत लौट रहे थे तो भूमध्य सागर के गहरे नीले पानी को देखकर उनका वैज्ञानिक मन मचल उठा कि आखिर ये पानी इतना नीला क्यों है।
1: बिल्कुल, सवाल तो बहुत अच्छा है। उस वक्त लोग सोचते थे कि पानी आसमान के रिफ्लेक्शन की वजह से नीला दिखाई देता होगा, पर डॉक्टर रमन को इस पर यकीन ही नहीं था। उन्होंने भारत आकर करीब 7 साल दिन रात इस पर एक्सपेरिमेंट किए और आखिरकार 1928 में रमन प्रभाव की खोज कर डाली।
0: साथ ही उन्होंने साफ दिखाया कि जब सूर्य का ये सफ़ेद प्रकाश पानी या कांच जैसे किसी पारदर्शी चीज के अणुओं से टकराता है तो करोड़ों में से कोई एक प्रकाश का कण अपनी ऊर्जा बदल देता है,
1: और ऊर्जा बदलते ही उस प्रकाश का रंग भी बदल जाता है। इसी अद्भुत खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी मिला। वे यह सम्मान पाने वाले पूरे एशिया के सबसे पहले वैज्ञानिक थे। साथियों,
0: सच में आज हम जो हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, वो उनके इसी आविष्कार के सम्मान में है। आज उनकी इस तकनीक से बिना किसी चीज को छुए या नुकसान पहुंचाए एयरपोर्ट पर नशीले पदार्थ पकड़े जाते हैं और दवाओं की शुद्धता जांची जाती है।
1: सही कहा निशा, एक इंसान की उत्सुकता और मेहनत ने दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। डॉक्टर रमन का जीवन हमें सिखाता है कि बड़े आविष्कारों के लिए महंगी लैब्स या करोड़ों के बजट की जरूरत नहीं होती है, बल्कि एक खोजी दिमाग जो कभी कभी न हार मानने वाला जज्बा और अपने काम के प्रति अटूट लगन की जरूरत रखता हो। तो साथियों, इसी के साथ सुनते हैं हमारा अगला गीत।

0: प्रकृति ईश्वर की सबसे सुंदर कविता है। हरे भरे जंगल, ये ऊंचे पहाड़ और इन सब के बीच से रास्ता बनाती हुई हमारी जीवनदायिनी नदियाँ।
1: नदियाँ तो इस धरती की धमनियों की तरह हैं। जैसे हमारे शरीर में लहू बहता है, वैसे ही इस धरती की छाती पर नदियाँ जीवन बनकर बहती हैं।
0: बिल्कुल निशा, नदियाँ सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये सभ्यताओं की जननी है। हमारे ऋषियों ने, कवियों ने नदियों को माँ का दर्जा दिया है, और वो यूं ही नहीं दिया। पर्वत की ऊंची चोटियों से जब कोई नदी कलकल करती हुई नीचे उतरती है, तो ऐसा लगता है मानो जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पालने के लिए ममता का आंचल फैलाए मैदानों की तरफ दौड़ रही हो।
1: साथियों, जहाँ से भी नदी गुजरती है, वहाँ चारों तरफ खुशहाली की फसलें लहला उठती हैं, पंछी चहकने लगते हैं और इंसानी बस्तियाँ आबाद हो जाती हैं।
0: और यही नदियाँ जब आगे बढ़कर समुद्र से

0: जा मिलती है, तो रास्ते में कुछ ऐसे जादुई और विहंगम नज़ारे बना देती है जिन्हें देखकर आंखें ठिठक जाती है। ऐसा ही एक अद्भुत और अलौकिक जादुई नज़ारा हमारे भारत के पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा राज्य में देखने को मिलता है। साथियों, जब हमारी पवित्र दया नदी और कई छोटी बड़ी ऐसी नदियाँ आगे बढ़कर बंगाल की खाड़ी के समंदर से जा मिलती है, तो वहाँ जन्म होता है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील, जिसे हम सब चिल्का झील के नाम से भी जानते हैं।
1: दोस्तों, ये पूरी दुनिया में भारत का गौरव है। शिवानी, ये छोटी मोटी झील नहीं है, ये एक अनंत समंदर जैसी दिखाई देती है। इसकी लंबाई लगभग 64.5 किलोमीटर है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा फासला है। इसकी चौड़ाई भी एक जैसी नहीं रहती, ये अलग अलग जगहों पर 5 से लेकर 18 किलोमीटर तक बदलती रहती है।
0: और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये है कि इसका क्षेत्रफल मौसम के साथ घटता बढ़ता रहता है। जब गर्मियों के दिन होते हैं तो ये सिकुड़ कर करीब 900 वर्ग किलोमीटर की रह जाती है, लेकिन जैसे ही मानसून आता है और नदियां अपने पूरे उफान पर होती हैं, तो इसका आकार बढ़कर 1,165 वर्ग किलोमीटर तक फैल जाता है। ये पूरी खुर्दा और गंजाम जिलों के एक बहुत बड़े हिस्से को अपने आगोश में ले लेती है।
1: वाकई ये प्रकृति का एक बहुत बड़ा चमत्कार ही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है शिवानी, कि इस विशाल जलाशय का हमारे जीवन में, हमारे पर्यावरण में प्रयोग और महत्व क्या है? ये झील सिर्फ देखने में सुंदर है या फिर इसके पीछे जीवन का कोई और गहरा ताना बाना भी बना हुआ है?
0: इसके महत्व और प्रयोग की कहानी तो इतनी गहरी है निशा, कि इसके बिना ओडिशा के एक बहुत बड़े हिस्से के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे पहले तो ये झील वहाँ के करीब 132 गांवों में रहने वाले 1.5 लाख से भी ज़्यादा मछुआरों की रोजी रोटी का जरिया है। वे हर सुबह अपनी नावें लेकर इस उम्मीद के साथ निकलते हैं कि चिल्का माँ उन्हें निराश नहीं करेगी। कितना अद्भुत और पावन संबंध है ना निशा?
1: हाँ बिल्कुल, हमारी नदियों और इस झील का संसार जो है वो बहुत ही अद्भुत है। लेकिन इस सबके बीच एक कड़वा सच हमें जो है वो कचोटता है। जिस प्रकृति ने, जिन नदियों ने हमें जीवन दिया, आज वही नदियाँ इंसान के लालच और लापरवाही की वजह से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। हमारी ये पवित्र नदियाँ आज प्लास्टिक के कचरे, फैक्ट्रियों के गंदे रसायनों और नालों के पानी से मैली हो रही हैं। चिल्का झील जैसी धरोहरों पर भी प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है।
0: बिल्कुल, नदियों को बचाने का प्रयास बहुत लोग कर तो रहे हैं निशा, इसके साथ ही सरकार भी कितनी ही योजनाएं बना रही हैं हमारी नदियों को साफ रखने के लिए। लेकिन अब सिर्फ ये एक सरकारी काम ही नहीं रह गया है, बल्कि हम में से हर एक नागरिक का परम कर्तव्य बन चुका है कि हम नदियों को दूषित होने से, प्रदूषित होने से बचाने का प्रयास करें। क्योंकि कहते हैं ना, जल है तो कल है।

0: दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे दो प्रश्न पूछे थे, आइए उनके जवाब जानते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न था, हाल ही में भारत का 7वां रीजनल मौसम विज्ञान सेंटर कहाँ शुरू हुआ है, और इसका सही जवाब है
1: जम्मू कश्मीर।
0: और हमारा दूसरा प्रश्न था, हाल ही में नॉर्वे चेस का खिताब किसने जीता, और इसका सही जवाब है
1: आर प्रज्ञानंद ने।

0: साथ ही हम लेकर आए हैं रोजगार सूचना, जिसमें हम जानेंगे भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
1: दोस्तों, ये भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ओपन मार्केट के माध्यम से आयोजित की जा रही है। BSNL द्वारा जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 जून 2026 से शुरू हो चुकी है
0: और इच्छुक उम्मीदवार 3 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सरकारी टेलीकॉम सेक्टर में इंजीनियर आधारित सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये शानदार अवसर माना जा रहा है।
1: और दोस्तों, इसी खूबसूरत संदेश के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने तथा जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली होगी।
0: सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज्ञान की राह पर कदम बढ़ाते रहिए। हर नया दिन नई उम्मीदें लेकर आता है, बस अपने सपनों को साकार करने का हौसला बनाए रखिए।
1: दीजिए इजाजत अपनी दोस्त निशा को
0: और मुझे शिवानी को।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रही थी निशा और शिवानी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए। आइए अब सुनते हैं हमारे आज के शेष रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अभी कुछ ही देर में यानी 6:05 पर आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनाएंगे एक ही संगीतकार के संगीतबद्ध किए कुछ चुनिंदा गीत। हमारे आज के संगीतकार होंगे नौशाद। साथ ही 6:40 पर सुनिएगा जिले की चिट्ठी और शाम 7 बजे हम लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

सुगम संगीत की महफिल सजे की 7:45 और रात्रि 9:30 पर। फिल्म संगीत आप पुनः इसी सभा में सुन सकते हैं 8 बजे रात्रि 9:15 पर। और खास कार्यक्रम, जी हाँ, आपकी पसंद फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे रात्रि 10 बजे।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है, कुछ ही पलों आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद्य और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा

भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा

0: पर खर्च में काफ़ी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित NTA मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट UG पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही CBI ने अदालत में कहा कि पुणे शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित $1,00,000 के H-1B वीजा शुल्क को रद्द करते हुए इसे गैरकानूनी करार दिया है। इससे कई कुशल भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन शुल्क को लगभग 2,000 से बढ़ाकर $1,00,000 करने की घोषणा की थी। श्रीलंका के दामोला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताज़ा समाचार मिलने तक 48 ओवर में 7 विकेट पर 268 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने ऋतुराज गायकवाड़ के 101 रन की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। शाम के 6:05 हुए, आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम लेकर हाजिर हैं एक ही संगीतकार के संगीतबद्ध किए कुछ चुनिंदा गीत। आज के हमारे संगीतकार हैं नौशाद।

कार्यक्रम का आगाज मोहम्मद रफी की आवाज के साथ, गीतकार हैं शकील बदायूनी, फिल्म का नाम राम और श्याम, संगीतकार हैं नौशाद।

फिल्म संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से। आज के हमारे संगीतकार हैं नौशाद। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति मोहम्मद रफी की ही आवाज में। फिल्म का नाम मेरे महबूब।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज मदर इंडिया फिल्म के लिए। गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीतकार हैं नौशाद।

0: Akashwani at 90.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

कार्यक्रम का आखिरी गीत लता मंगेशकर की आवाज के साथ पाकीज़ा फिल्म के लिए। गीतकार हैं कैफी आज़मी और संगीतकार हैं नौशाद।

इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज के हमारे संगीतकार थे नौशाद। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलम आरू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, साथ ही जिले की चिट्ठी हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वीबी जीराम जी के तहत किसी भी राज्य के बजट प्रस्ताव में कोई कटौती नहीं की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को फिर से आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। राज्य सरकार ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। और देश का कुल निर्यात पिछले 12 वर्षों में 468 अरब डॉलर से बढ़कर 863 अरब डॉलर तक पहुंचा। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जीराम जी के सुचारू परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार ने 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये प्रस्ताव रखा है। ये अधिनियम 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में इसकी घोषणा की। इसके बाद प्रेस वार्ता पर उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के बजट आवंटन में कोई कटौती नहीं की गई है, बल्कि पिछले साल की तुलना में बजट में 40% की बढ़ोतरी की गई है। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही है।
1: किसी भी राज्य का मैं एक बताना चाहता हूँ, ये आशंकाएं कई बार लोग व्यक्त करते थे, इसका कम हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा, किसी का कम नहीं हुआ है। ये जो हमने दिया है 60% ही, पिछले साल मनरेगा का जो एलोकेशन था लगभग उतना तो 60% ही दिया है, मतलब 40% ये बढ़ेगा पिछले साल से, तो किसी राज्य को कमी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 21 जून को फिर से आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। पत्रकारों से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और गोपनीयता बनाए रखने के सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं।

0: हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधन लगाए गए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेक राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीबीआई नीट परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। जयपुर के खोनागोरियान क्षेत्र में आज एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 3 श्रमिकों की मौत हो गई, वहीं 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये फैक्ट्री एक रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चल रही थी। हादसे के समय वहां 8 लोग मौजूद थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। आग लगने के बाद वहां रखे गैस सिलेंडर में भी विस्फोट हो गया, जिससे स्थिति अधिक भयावह हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस टीम मौके पर पहुंची। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। थानाधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
2: हमें सूचना मिली कि आग लगी हुई है, एक मकान में आग लगी है, तो हमने तुरंत मौके पे पहुंचे। मौके पहुंचकर यहाँ पे आसपास के लोगों की मदद लेकर के पानी के टैंकर लगा करके तुरंत आग बुझाने का काम किया, और उसमें करीब 8 लोग इंजर्ड थे, जिनको एम्बुलेंस के माध्यम से हमने SMS और JNU अस्पताल भिजवाया। जो आसपास से पता किया तो कहा बताया कि उन्होंने की कोई किराएदार था और वो अभी किराया लिया था।
0: राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए भरे गए सभी 9 नामांकन पत्र सही पाए गए। द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए 3 प्रत्याशियों ने ये नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए थे, जिनकी विधानसभा में जांच की गई। रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने बताया कि कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज डांगी और भाजपा की अलका सिंह तथा सतीश पूनिया के पर्चों की जांच पर्यवेक्षक और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की मौजूदगी में की गई। जांच के साथ ही इनकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। कल नाम वापसी की आखिरी तारीख है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि प्राचीन काल से ही भारत शिक्षा का केंद्र रहा है। यहाँ 19 विश्वविद्यालय थे, जहाँ दुनिया भर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। राज्यपाल आज लोकभवन में कर्नाटक के IIT धारवाड़ के विद्यार्थियों से संवाद कर रहे थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत विद्यार्थियों का अभिनंदन करते हुए राज्यपाल ने राजस्थान के महापुरुषों और ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में बताया। नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए श्री बागड़े ने कहा कि इसमें युवाओं को सभी क्षेत्र में अग्रणी बनाने पर जोर दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। बीकानेर के PBM अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में चिकित्सा विभाग ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही जोधपुर मेडिकल कॉलेज से विशेषज्ञों की टीम जांच के लिए बीकानेर भेजी गई है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर ने आज जयपुर में बैठक कर अधिकारियों से मामले की जानकारी ली। चिकित्सा मंत्री ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में श्री खींसर ने कहा कि बीकानेर का ये मामला कोटा प्रसूता प्रकरण जैसा नहीं है।
3: पहली चीज, ये चारों केसेस अलग अलग टाइम के हैं, एक टाइम नहीं है, अलग अलग कॉजेज है। 2 पेशेंट जब आए थे वो उनकी कंडीशन काफी गंभीर थी। गांव के अंदर क्या होता है, टाइमली नहीं लाते हैं, टाइम ज्यादा लग जाता है, गर्मी पड़ रही है, डिहाइड्रेशन है, तो इसके अंदर क्या है कि एक पेशेंट थोड़ी सी गंभीर है, बाकी जो आपके 3 पेशेंट्स हैं वो अभी स्थिर है, उनका यूरिन आउटपुट भी सही है। ये कोटा वाला एपिसोड से कोई इसका लेना देना नहीं है, ना वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कोटा के अंदर थी।
0: गौरतलब है कि बीकानेर में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने की सूचना है। वहीं गंभीर हालत वाली एक महिला को वेंटिलेटर पर रखा गया है।

0: अस्पताल प्रशासन ने कारणों की जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ में आज वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने 800 से अधिक बुजुर्गों को ये उपकरण दिए। उन्होंने बताया कि इसके लिए पिछले साल नवंबर महीने में विशेष शिविर लगाकर लाभार्थियों को चिन्हित किया गया था। इसके बाद उनकी जरूरत के आधार पर 85 लाख रुपए मूल्य के ये उपकरण तैयार कराए गए। देश का कुल निर्यात पिछले 12 वर्षों में 468 अरब डॉलर से बढ़कर 863 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव साकेत कुमार ने आज जयपुर में एक कार्यशाला में ये जानकारी दी। केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित आउटरीच कार्यक्रम के तहत ये कार्यशाला रखी गई। श्री कुमार ने बताया कि इस अवधि में वस्तु और सेवा निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हुई है। सेवा क्षेत्र के निर्यात में 9% से अधिक की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्यात में भी भारी उछाल देखने को मिला है। श्री कुमार ने विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते से उपजी नई संभावनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजारों में बेहतर अवसर मिल रहे हैं।
1: आज का ये आउटरीच कार्यक्रम भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारे निर्यातक भारत के मुक्त व्यापार समझौतों और उनके माध्यम से सृजित हो रहे अवसरों का पूर्ण लाभ उठा सके। उद्देश्य मुक्त व्यापार समझौतों का यह सुनिश्चित करना है कि व्यवसायिक निर्यातक एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स इनका प्रभावी ढंग से उपयोग कर निर्यात बढ़ाएं, नए बाजारों तक पहुंच बनाएं और हमारी जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें भारत की स्थिति को मजबूत करें।
0: सरकारी ई मार्केट पैलेस जेम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि नागरिक केंद्रित सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह पहल की गई है। श्री कुमार ने कहा कि वर्ष 2016-17 में जेम में भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्योगों की संख्या लगभग 2300 थी, जो अब बढ़कर 12 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि जेम पर महिला स्वामित्व वाले उद्यमों की संख्या भी बढ़कर अब 2,16,000 से अधिक हो गई है। साथ ही महिला उद्यमियों की ओर से की जा रही खरीद का आंकड़ा 93,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने ई फाइलों के निस्तारण प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी को खत्म करने के लिए उन्होंने फाइल निस्तारण प्रक्रिया को और बेहतर तथा उत्तरदायी बनाने की बात कही। मुख्य सचिव आज विभिन्न समितियों के सचिवों की बैठक में बोल रहे थे। बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में व्यापक जन सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने संपर्क पोर्टल की शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण करने की बात कही। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज देश भर में कई आयोजन हुए। इस अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व सेवाएं दी जाती है। साथ ही विस्तारित अभियान के तहत 18 और 27 तारीख को ज्यादा जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की विशेष ट्रैकिंग और निगरानी की जाती है। इस मौके पर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसका लाभ लिया। शिविरों में चिकित्सा अधिकारियों ने महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व और संतुलित आहार के प्रति जागरूक किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वीबीजी राम जी के तहत किसी भी राज्य के बजट प्रस्ताव में कोई कटौती नहीं की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को फिर से आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। राज्य सरकार ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। और देश का कुल निर्यात पिछले 12 वर्षों में 468 अरब डॉलर से बढ़कर 863 अरब डॉलर तक पहुँचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से राजसमंद जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख दिनेश श्रोत्रिय ने तैयार किया है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की जिले भर में तैयारियां की जा रही हैं। मुख्य कार्यक्रम राजसमंद झील

0: की नौ चौकी पाल पर होगा। इसे लेकर जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने जिला अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में शिक्षा, पुलिस और चिकित्सा विभाग को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस बीच जिले भर में जगह जगह योगा डे काउंटडाउन कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इन कार्यक्रमों में नियमित योगाभ्यास कराकर फिट रहने का संदेश दिया जा रहा है। जिले में इन दिनों जनगणना 2027 के तहत मकानों का सूचीकरण और मकान गणना का काम जारी है। मौसम की परवाह किए बिना प्रगणक घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। चारभुजा तहसील क्षेत्र में दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे रूपनगर गांव में सर्वे दल 10 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचा। इस दौरान 7 घंटे में 60 मकानों का सूचीकरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अपील के बाद से जिले में ईंधन बचाने की कवायद शुरू हो गई है। जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल सहित जिला स्तरीय अधिकारियों ने ईंधन बचाने के लिए एक ही बस में सवार होकर दफ्तर तक का सफर तय किया। चारभुजा में आयोजित संध्या चौपाल में भी दोनों अधिकारी बस से ही गए। लोगों ने प्रशासन की इस पहल को सराहा है और प्रेरणा ली है। न्यायिक अधिकारियों ने भी पैदल चलने, साइकिल का उपयोग करने और अनावश्यक वाहन उपयोग से बचने की अपील की है। कांकरोली पुलिस थाना इंचार्ज सरोज बैरवा ने साइकिल पर शहर में गश्त की और ईंधन बचाने का संदेश दिया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिले में बरसात का पानी इकट्ठा करने और पानी बचाने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की गई। बनास नदी और गणगौर घाट पर राजसमंद नगर पालिका की ओर से सफाई अभियान चलाया गया। इसके अलावा सरकारी विभागों, गौशालाओं और जल संरचनाओं की साफ सफाई की गई। जल पूजन और कलश यात्रा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक लोगों को अभियान से जोड़ा गया। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। ये अभियान विश्व पर्यावरण दिवस पर संपन्न हुआ और इसी दिन से हरियालो राजस्थान अभियान 2026 की शुरुआत हुई। अभियान के तहत मॉनसून सीजन में अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएंगे और जिले में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके लिए लोगों को नर्सरियों से पौधे वितरित किए गए। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान का तीसरा चरण भी शुरू हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस पर राजसमंद में रन फॉर एनवायरमेंट मैराथन रखी गई। जिला कलेक्टर ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन शहर के विभिन्न मार्गों से होकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पौधे लगाए गए और पक्षियों के लिए परिंडे बांधे गए। सड़क सुरक्षा को लेकर जिले भर में विशेष सतर्कता देखी गई। जागरूकता अभियान चलाकर राजसमंद पुलिस ने लोगों को यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। इसके साथ ही दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए गए। जिला पुलिस ने एक विशेष आदेश जारी कर पेट्रोल पंप संचालकों को कहा है कि बिना हेलमेट वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने जिला अधिकारियों के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की। पीने के पानी, स्वास्थ्य और बिजली आपूर्ति से जुड़े मुद्दों के तुरंत समाधान के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी जिले के प्रवास पर रही। उन्होंने सांगठ कला गाँव में 67 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर और कांकरोली के द्वारिकाधीश मंदिर में अधिक मास की शुरुआत के साथ ही विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। मंदिर में रोजाना भगवान का विशेष श्रृंगार और मनोरथ हो रहे हैं। श्रद्धालुओं को खास झांकियों के दर्शन कराए जा रहे हैं। फूल मंडली, जल विहार, रथ यात्रा और नौका विहार के दर्शनों को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ईद उल अजहा का पर्व भी पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। विभिन्न मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की गई और मुल्क में अमन, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी गई। राजसमंद जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो वीबीजी रामजी रातेत किनी राज्य रा बजट प्रस्ताव में कोई कटौती नहीं करी ची। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 21 जून ने उजू ली जावन वाली नीट यूजी परीक्षा री तैयारियां रो जायजो।

0: तुलिनो राज्य सरकार बीकानेर रा पीबीएम अस्पताल माए जापा वाली लुगाईया री तबीयत बिगड़बारा मामला माए रपट मांगी और देशु दिसावर माए बिक्री लारला 12 साल माए 468 अरब डॉलर हूं बधर 863 अरब डॉलर ताई पूगी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार। मनरेगा योजनाओं विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी माए बदलाव सारू केंद्र सरकार राज्य और केंद्र राज वाला प्रदेशों बाबत 95,692 करोड़ रुपया रा अंतरिम बजट रो प्रस्ताव किनो है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली माए राज्यां और केंद्र राज वाला प्रदेशां रा ग्रामीण विकास मंत्रियां सग वर्चुअल मीटिंग माए ओ ऐलान कीनो। इन पाछे खबर नवीसां सग बातचीत करता थका श्री चौहान कहो किणी राज्य रा बजट आवंटन माए कोई कमी नी करी ची है बल्कि लारला साल री तुलना माए बजट 40% बधाई चियो है।
1: किसी भी राज्य का मैं एक बताना चाहता हूँ, ये आशंकाएं कई बार लोग व्यक्त करते थे इसका कम हो जाएगा उसका कम हो जाएगा, किसी का कम नहीं हुआ है। ये जो हमने दिया है 60% ही पिछले साल मनरेगा का जो एलोकेशन था लगभग उतना तो 60% ही दिया है, मतलब 40% ये बढ़ेगा पिछले साल से, तो किसी राज्य को कमी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
0: वीबीजी रामजी कानून 1 जुलाई आखा देश में लागू फैला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए रा मुख्यालय रो दौरो कर 21 जून ने उजुली जावन वाली नीट यूजी प्रवेश परीक्षा री तैयारियां रो जायजो लीनो। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका वे कहो कि परीक्षा साफ कोई सागे करावण और इनरी गोपनीयता बनाई राखण सारू सगला जरूरी जतन करया जा रहा है। शिक्षा मंत्री कहो कि इन दौरान आवन वाली अड़चना रो सामो करण सारू खुफिया तंत्र और केंद्रीय जांच ब्यूरो समेत सगला साइबर सुरक्षा संसाधन काम लिया जा रहा है।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: जयपुर रा खो नागोरियान हलका माए पटाखा बनावन रा एक कारखाना माए लाए लाग जावणु 3 मजूरा री मौत वेगी और 5 मजूर घना दाज गया। जख्मी मजूरा ने जयपुर रा सवाई मानसिंह अस्पताल माए भर्ती कराई चिया है। रिहायशी हलका माए गैर कानूनी तौर चल रहा ई कारखाना माए हादसारी भगत महिलावां और बच्चा समेत 8 जना मौजूद हा। लाई लाग्या पाछे वेठे राखी जी गैस री टंकी फाटगी। हादसा री जानकारी मिलताई सिविल डिफेंस री टीम मौके पुगी और दमकल री मदद आग बुझाई जी। थाना अधिकारी ओम प्रकाश बतायो कि लाई लागण रा कारण री जांच करी जा रही है।
3: हमें सूचना मिली कि आग लगी हुई है, एक मकान में आग लगी है, तो हमने तुरंत मौके पे पहुंचे। मौके पहुंचकर यहाँ पे आसपास के लोगों की मदद लेकर के पानी के टैंकर लगा करके तुरंत आग बुझाने का काम किया और उसमें करीब 8 लोग इंजर्ड थे जिनको एम्बुलेंस के माध्यम से हमने SMS और JNU अस्पताल भिजवाया। जो आसपास से पता किया तो कहा बताया कि उन्होंने की कोई किराएदार था और वो अभी किराया लिया था।
0: प्रदेश और राज्यसभा री 3 सीटा में थे चुनाव सारू उम्मीदवारा का नियम दाखिल करी जिया सगला 9 नाम पाना आज विधानसभा माए करी जी जांच माए सही मिलिया। द्विवार्षिक चुनाव सारू राज्यों 3 उम्मीदवार पर्चा दाखिल की नाहा। आम आए 2 भाजपा रा और 1 कांग्रेस रो उम्मीदवार है। चुनाव अहलकार भारत भूषण शर्मा बतायो कि 3 उम्मीदवार कांग्रेस रा नीरज डांगी और भाजपा रा डॉक्टर अलका सिंह और डॉक्टर सतीश पूनिया रा पर्चा री जांच पर्यवेक्षक और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन री मौजूदगी माए कराई ची। जांच रा काम रो वीडियो ही बनाई चियो। नाम पाछा लेवन री काल आखिरी तारीख है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े कहो है कि जूना जमाना उई भारत भणाई लिखाई रो केंद्र रहो है। वे आज लोकभवन माए

0: कर्नाटक में धारवाड़ रा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रा विद्यार्थियों सागे मुलाकात रे दौरान बोल रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत रा तेत विद्यार्थियों सागे मुलाकात रे दौरान राज्यपाल राजस्थान रा महापुरुषा और ऐतिहासिक स्मारक रो जिक्र कीनो। नवी शिक्षा नीति रो जिक्रो करता थका श्री बागड़े कहो कि इन माए नौजवाना ने हर हलका माए अगाड़ी बनावण माथे जोर दियो चियो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज भरतपुर और डीग जिला रा आला अहलकार सागे मीटिंग कर वठे विकास रा कामा रे बारा माए चर्चा कीनी और जरूरी हुक्म दीना। मुख्यमंत्री डीग जिला रा श्रीनाथ जी मिंदर माए जातरुआ सागे बातचीत कीनी और सुबीता ने बारा माए जानकारी लीनी। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और राजस्थान धरोहर प्राधिकरण रा अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ही मौजूद हा। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। बीकानेर रा पीबीएम सफाखाना माए ऑपरेशन नु भिया जापा पाछे छह लुगाइयां री तबियत खराब है जावन रा मामला माए चिकित्सा विभाग मेडिकल कॉलेज रा प्रिंसिपल रपट मांगी है। इस आगे जोधपुर मेडिकल कॉलेज हुई जानकारा री टीम जांच सारू बीकानेर भेजी जी है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज जयपुर माए अहलकार सागे मीटिंग कर मामला री जानकारी लीनी और अड़ा वाकया रोकण सारू सगला जरूरी जतन करण बाबत कहो। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका खींवसर कहो कि बीकानेर रो ओ मामलो कोटा माए लाडला दिना भिया मामला सरीखो नी है।
1: पहली चीज ये चारों केसेस अलग अलग टाइम के हैं, एक टाइम नहीं है, अलग अलग कॉजेज है। दो पेशेंट जब आए थे वो उनकी कंडीशन काफी गंभीर थी। गांव के अंदर क्या होता है, टाइमली नहीं लाते हैं, टाइम ज्यादा लग जाता है, गर्मी पड़ रही है, डिहाइड्रेशन है, तो इसके अंदर क्या है कि एक पेशेंट थोड़ी सी गंभीर है, बाकी जो आपके तीन पेशेंट्स हैं वो अभी स्थिर है, उनका यूरिन आउटपुट भी सही है। ये कोटा वाला एपिसोड से कोई इसका लेना देना नहीं है, ना वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कोटा के अंदर।
0: ध्यान जोग है कि बीकानेर माए ऑपरेशन उफिया जापा पाछे छह लुगाइयां री किडनी माथे असर पड़बारी जानकारी मिली है, जदके घणी मंदी एक लुगाई ने वेंटिलेटर माथे राखी ची है। चित्तौड़गढ़ माए राष्ट्रीय वयोश्री योजना रा तहत आज बुजुर्गों ने जिंदगी आसान बनावण माए मददगार साजो सामान दिया चिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत 832 बुजुर्गों ने ए उपकरण दीना। वे बतायो कहीं सारू लारला साल नवंबर महीना माए खास शिविर लगार पात्र लोगों ने पिछाण करी जी, चिंपा छे वानी जरूरत रे मुताबिक 85 लाख रुपया मोल रा उपकरण तैयार कराई चिया। भारत रा सामान री दिसावर माए बिक्री लारला 12 साल माए 468 अरब डॉलर उबधर 863 अरब डॉलर ताई पूग की है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय रा वाणिज्य विभाग माए संयुक्त सचिव साकेत कुमार आज जयपुर माए आ जानकारी दीनी। केंद्र माए एनडीए रा राज रा 12 साल पूरा फेवन रा सिलसिला माए राखी जी एक कार्यशाला माए श्री कुमार कहो कि इ मियाद माए सेवा हलकाओं जुड़ी बिक्री माए 9% बत्ती बढ़ोतरी दर्ज करी जी। श्री कुमार न्यारा न्यारा देशा सागे करी जिया मुक्त व्यापार करार उपजी नवी संभावनावां रा बारा माए जानकारी दीनी। वे कहो कि इनू भारत उन दिसावर माए सेवा और माल बेचण वाला ने बेहतर मौका मिल रहा है।
2: आज का ये आउटरीच कार्यक्रम भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारे निर्यातक भारत के मुक्त व्यापार समझौतों और उनके माध्यम से सृजित हो रहे अवसरों का पूर्ण लाभ उठा सके। उद्देश्य मुक्त व्यापार समझौतों का ये सुनिश्चित करना है कि व्यवसायिक निर्यातक एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स इनका प्रभावी ढंग से उपयोग कर निर्यात बढ़ाएं, नए बाजारों तक पहुंच बनाएं और हमारी जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें भारत की स्थिति को मजबूत करें।
0: सरकारी ई मार्केट प्लेस जैम रे जरिए खरीद बिक्री करण वाला सूक्ष्म और लघु उद्यमों की तादाद साल 2016-17 रा करीब 2300 बधर अब 12 लाख वैकी है। जैम रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार आज नई दिल्ली माए खबर नवीसा ने आ जानकारी दीनी। वे कहो कि जैम माथे महिलाओं रा मालिकाना हक वाला उद्यमों की तादाद ई बधर अब 2,16,000 ने पार कर की है और महिला उद्यमियां कान्यू खरीदी 93,000 करोड़ रुपया रा लेवल न पार कर की है। अरब मौसम प्रदेश माए तेज गर्मी और उमस रो असर बतकियो है। आज श्री गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर समेत कई ठोड़ा

0: पारो 44 डिग्री सेल्सियस ने पार कर क्यों। बाड़मेर, चूरू, कोटा, जोधपुर और जयपुर में जोरदार गर्मी रही। इन बीच मौसम विभाग आज प्रदेश रा 7 जिला में अंधड़ बरसात और 5 जिला में लू बजन सारू चेतायो है। 11 जून राज्य रा कई हलका में ओजू आंधी बारिश वेवन रा आसार है। अहमदाबाद में राखी जी पहले विश्व योगासन चैंपियनशिप में राजस्थान पुलिस री सिपाही देवांशी शर्मा सीनियर बी हैंड बैलेंस होड़ री व्यक्तिगत श्रेणी में सोना रो तमगो हासिल किन्नो है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े वाने आ उपलब्धि हासिल करण सारू बधाई और शुभकामनावां दीनी। राज्यपाल मारा बधाई संदेश में ई होड़ ने भारत री संस्कृति जुड़िया योग खेला ने दुनिया री स्वीकृति बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात में 28 जून न विचार बतावेला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो VBG रामजीरा तेज किनी राज्य रा बजट प्रस्ताव माए कोई कटौती नहीं करी ची। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 21 जून न उजू ली जावन वाले NEET UG परीक्षा री तैयारियां रो जायजो लीनो। राज्य सरकार बीकानेर रा PBM अस्पताल माए जापा वाली लुगाइया री तबियत बिगड़ बारा मामला माए रपट मांगी। हर देश दिसावर माए बिक्री लारला 12 साल माए 468 अरब डॉलर उम्बद हर 863 अरब डॉलर ताई पूगी। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। जी हाँ, समय हो चला है कार्यक्रम ग्रामीण जगत का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं राकेश कुमार जोशी और दीवान दान रत्नू।

0: ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुनने वाला सगला हेतालु ग्रामीण भाई बहना ने राकेश कुमार जोशी
1: और दीवान दान रत्नुरा
0: गणा गणा राम राम
1: राम राम।
0: दीवान भाई देखो बरसात जी की है, प्री मानसून जी को है, कटी कटी बरस रही है और कटी कटी चोखो बरस रही है और भाई बंधु भी अपना जी का किसान भाई बंधु है वे भी आपकी खेतारी तैयारी कर ली है ला, क्योंकि आगे आने वाले मानसून में अपने बिजाई करनी है।
1: बिल्कुल राकेश भाई, देखो सा अपारे यही जेठ रो महीनो चाले है और जेठ रे महीने में जहाँ प्री मानसून जी की आगे आगे ती बारिक है, बारिश है बा हो जाया करे है घनी बार, लेकिन किसान भाई वे आपकी तैयारी रखे क्योंकि आगे यदि बारिश हो जावे तो जेठ में कई चाहे सिंचाई क्षेत्र में हो और चाहे अपारे बिना सिंचाई अड़म हो, बट है कहीं न कहीं लोग बाग है किसान भाई है वे आपरी खेती वास्ते तैयारी कर प्रो राखता थका आगे ती खेती जरूर करे।
0: और देखो खेती करने ताई सबसे पहली बात आई है कि आप खेती री कोई भी तैयारी करानी तो सबसे पहली बात है कि अपनी जी की माटी है, भूमि है, खेत है, इन आपने तैयार करना हो और अपना जी का पारंपरिक तरीका है भी मैं आप गहरी जुताई तो कराइया, लेकिन अपन आजकल आ देखा कि जिका किसान भाई बंधु जागरूक है वह आधुनिक कृषि यंत्रा रो उपयोग करे और आधुनिक कृषि यंत्रा सो कहीं वह एक तो मेहनत री बचत हुए और समय री बचत हुए और अपनी मिट्टी जी की है खेतरी बीरी सेहत और पैदावार भी चोखी हुए जब आप आधुनिक यंत्रा सो अपने खेतरी तैयारी करा जी। हाँ के देखो जुताई खातर जी का आधुनिक यंत्र है भी मापा देखा कि बे बड़ी बड़ी जी की मशीन है बे कठोर मिट्टी ने गहराई सु तोड़े और मिट्टी ने पलटने काम करे जिके सु पुरानी फसलारा जी का अवशेष है

0: वह भी मिट्टी में चौकी तरह मिल जाया करे। और इमें जिकी एक मशीन रो नाम है, वो यंत्र है, वो है MB प्लाउ। वो MB प्लाउ जी की मशीन है, आ मिट्टी की गहराई ने गहराई सू काटे मिट्टी ने और पूरी तरह सू मिट्टी ने पलट दिया करे, नीचे री उपजाऊ मिट्टी ऊपर आ जाया करे और खरपतवार जी का बीज गहराई में दबर नष्ट हो जाए।
1: नष्ट हो जाए बिल्कुल राकेश भाई, के नीचे अपारे जमीन री जी की गहरी जुताई ने अपन ई मशीन रे मार्फत ऊपर ले आवे और बीण सु कहीं है के जमीन रे माया नीचे री जी की ऊपर जी का जमीन रे माया कोई कीटाणु वगैरह आवे है या घास वगैरह आवे वो खत्म भी हो जावे और ऊपर जी उमरसी मात्रा नीचे वाली बा ऊपर आवे। यही ज्या MB प्लाउ है भी यही डिस्क प्लाउ भी हुए। डिस्क प्लाउ में भी देखो सा जठे डिस्क प्लाउ वो यूज अपा बठे करा, जठे जमीन थोड़ी पथरीली हुए सूखी हुए तालरी हुए बीरमया जड़ी बूटियाँ वगैरह घास फूस कहीं ज़्यादा हुए जिकरी जड़ा ऊंडी तक हुए तो बा सख्त जमीन रे में अपा डिस्क प्लाऊ जगह एक तरह का डिस्क बनुड़ा है बे अपा जमीन में यंत्र द्वारा

0: भी देखो सा जठे डिस्क लाऊ बो यूज अपा बठे करा जठे जमीन थोड़ी पथरीली हुए सूखी हुए तालरी हुए बीरमया जड़ी बूटिया वगैरह घास फूस कहीं ज्यादा हुए जिकरी जड़ा ऊंडी तक हुए तो बा सख्त जमीन रे में अपा डिस्क प्लाऊ जेका एक तरह रा डिस्क बनुड़ा है बे अपा जमीन में यंत्र द्वारा ट्रैक्टर द्वारा बीरमया गाला और नीचू बा जमीन है बा एकदम पोली कर परो ऊपर जमीन ने लिया वे और यही के नीचली जमीन ने ऊपर लापरो ऊपरी जगह पोली हो जावे और ह्यूमस की मात्रा बरकरार रहे।
1: ये देखो दीवन भाई जुताई और मिट्टी ने भुरभुरा बनाने वाला भी यंत्र है अगर है पहली तो आपा चलो जुताई कर दी अपने ई ऊपरला दो यंत्र बीर बाद मिट्टी में बड़ा बड़ा जगह ढेला होया करे बिया ने तोड़नो और खेतरी खेत ने बुआई लायक बनाने खातर ए यंत्र उपयोग हुए जिके में रोटावेटर वो आज रे बगत में सबसे लोकप्रिय यंत्र है ट्रैक्टर लारे जुड़ पर और नुकीली में ब्लेडा हुआ बीसु मिट्टी ने एकदम बारीक और भुरभुरो बना दे और इरे इस्तेमाल सु आपने कल्टीवेटर या पाटो चलाने की जरूरत कौन पड़े
0: बिल्कुल,
1: और
0: बिल्कुल।
1: एक बार में खेत है जिको बुआई खातर तैयार हो जाए करे
0: क्योंकि अपा जहाँ हाड़ी की तैयारी करा या दूसरी फसल की तैयारी करा जन एम बी प्लाऊ या डिस्क प्लाऊ अपा जमीन ने लेकिन भी उथल पुथल साथ मिट्टी रा मोटा मोटा डगल रा डगल आ जाए ऊपर बे डगल एक जगह पड़िया रहे जने अपने खेती रे में बीज उगाण वास्ते इतनी सुविधा को बनी जने अपा रोटावेटर ने अपा काम में ले सका किसान भैया रोटावेटर ने काम में ला जमीन ने एकदम भुरभुरी एकदम बारीक बना देवे एकदम चूर मुसो कर दे बीर बाद में वो कहीं बीज है बीर में उत्पादन बढ़िया हो जाए
1: और बीर बाद आप कल्टीवेटर जिको है उथल पुथल करा
0: उथल
1: और हैरो जिको है वो मिट्टी ढेला ने तोड़ परो खेतरी ऊपर ही सतह भी ने समतल बना दिया
0: बना देवे बिल्कुल
1: और समतल बनाने रे बाद आपा देखा कि ओ देखनो है अपने खेतरी मिट्टी समतल है या कोनी
0: कोनी
1: इन खातर अपने एक लेजर लैंड
0: लेवलर
1: आया करे जिकर माने सेंसर लागोड़ा हुए और लेजर ट्रांसमीटर लागोड़ा हुए
0: बिल्कुल राकेश भाई लेटेस्ट पद्धति है अबारे बखत में अपारे क्योंकि दोरा धरती भी हुए उबड़ खाबड़ भी हुए इन पद्धति द्वारा एकदम समतलीकरण हो जाए जमीन में और समतलीकरण यहाँ फायदा हुए कि अपारे पानी री बचत हुए पानी रे क्यारियां वगैरह अच्छी तरह बना सका जिकी आधुनिक खेती हुए जिकी नई तकनीक री पोली हाउस वगैरह री खेती या दूसरी तरह री खेती बीड़ में इन प्रकार ने पहला जमीन ने तैयार करना घणो जरूरी हुए
1: और देखो इन फायदों का ही है कि सिंचाई रे पानी री लगभग आपा 20-30% तक बचत कर सका यदि आपा खेत ने पहला चोखी तरह
0: तैयार कर रखा तो
1: और पूरे खेत में पानी एक समान फैल जाया करे जिके सु फसल री बढ़वार जिकी है
0: बा
1: एक जड़ी हुए खाद और पोषक तत्व पानी रे सागे बे प्रोर जमा कोनी हुए और आधुनिक यंत्र रे उपयोग सु कई तरह सामूहिक लाभ है समय री बचत ही क्योंकि कई घंटा रो काम कुछ घंटा में आपा कर लिया करा।
0: पहला तो कहीं ये इन प्रकार है यंत्र हा को नहीं जने आपने खेती भी कम होती अब सैकड़ों बीघारी खेती है आपा समय पर करला तो ज्यादा आपा खेती कराला तो उत्पादन भी ज्यादा वेला यार उत्पादन समय री बचत भी
1: अरे यंत्र उपयोग से मिट्टी री जी गुणवत्ता है
0: बाबी बरकरार
1: बाबी चोखी रहे मिट्टी गहराई तक आपा मिट्टी ने उथल पुथल कर सका भुरभुरी बना सका और हवादार मिट्टी बन सके
0: बिल्कुल पहला कहीं है राकेश भाई पहला कहीं है अपार एक खेत ने बार बार हर साल बुआ होता जन जमीन तो ज्यादा ही कहीं है अपार किसान पुरुष हाब है खेत ने छोड़ता नुएकरण खातर लेकिन अबारे वक्त में बस आई है ई यंत्रा रे द्वारा पाछो अपा यहाँ उथल पुथल कर दा मिट्टी ने गहरी जुताई द्वारा यंत्रा द्वारा तो आ जमीन इन प्रकार नुई हो जाए
1: और इर बाद आपा कह सका कि लागत भी कम हुए मेहनत भी कम लागे और पानी रोज की व्यवस्था है नी बाबी आपा ने कम करनी पड़े यानी कम पानी में अधिक सिंचाई आपा
0: ले कर सका
1: तो ए जिका यंत्र है कई भाई बंधु तो आप रे खेत में आधुनिक खेती जिका करे है जिका जागरूक किसान है या प्रगतिशील किसान है वे तो अपना लिया और कई भाई बंधु सोचे तो सोचने जरूरत को नहीं अपने ई आधुनिक यंत्र उपयोग कर पड़ो आपने खेती ने एक उन्नतिशील बनानी है और अब सुनावा एक फुटरो सो गीत किसो गीत सुना रही हो
0: सीमा मिश्रा गावड़ो सुनाओ गीत

0: योजना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
1: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
2: जलवायु और भूमि पर जीवन, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण भूमि की क्वालिटी गिर रही है, पौधे और जानवर लुप्त हो रहे हैं और रेगिस्तान बढ़ रहे हैं। जंगल, आर्द्र भूमि और घास के मैदान जैसे महत्वपूर्ण स्थान जो इंसान और प्रकृति दोनों की मदद करते हैं, आज काफ़ी दबाव में हैं। वनों की कटाई और अत्यधिक चराई जैसे अस्थिर तरीके इन खतरों को और बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर हम ज़मीन का सही और टिकाऊ उपयोग करें, पेड़ पौधे दोबारा लगाएं और पर्यावरण को सुधारें, तो इससे प्रदूषण कम होगा और जीव जंतुओं की रक्षा भी होगी। यह कदम एक सुरक्षित और मजबूत जलवायु वाले भविष्य के लिए जरूरी है। क्या आप जानते हैं, आज दुनिया की 1/4 से ज्यादा जानवरों और पौधों की प्रजातियां लुप्त होने के किनारे पर हैं।
3: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
4: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
3: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
4: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
3: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
4: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
3: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
4: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
3: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
4: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: तो दीवान भैया, त्योहार संदेशा और अब आप बात करा अपनी हरित क्रांति री। अपनो देश 1947 में आजाद हुयो, बी टाइम आपा कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर कोनिया, और भी मैं आपा देखा कि आपा अनाज रे खातर दूसरा पर निर्भर आ, दूसरा देश से आपा अनाज मंगाउता, तो अपना देश राज्य का कर्णधार रहा। मैं लोग देश रे भविष्य ने ध्यान में रखते हुए कई प्रकार की योजनावा बने, भी योजना में एक हो अपनी हरित क्रांति। भारत रे कृषि इतिहास रो वो एक ऐतिहासिक मोड़ हो, जिके मापा देखा कि देश ने भुखमरी री कगार सु निकाल परो एक आत्मनिर्भर और अनाज निर्यातक देश आपनो बना दियो।
8: बिल्कुल।
7: और 1960 रे दशक रे मध्य में आपा देखा कि 1966-67 रे आड़े गेड़े भारतीय कृषि में आधुनिक तकनीका, आधुनिक उपज देवनाली, उन्नत बीज, रसायन और उपयोग शुरू हो, और जिके सो अनाज विशेषकर गेहूं और चावल इरो उत्पादन जिको है वो रिकॉर्ड तोड़ हो, यानी चौखी वृद्धि हुई। और ई तकनीक रे बदलाव नहीं आपा हरित क्रांति नाम दे रिया।
8: और एक छोटी सी और बताऊं के हरित क्रांति रा जनक इर बारे में आपा और देख ला के विश्व स्तर माथे इनरा जनक हा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में अपारा वैज्ञानिक हा महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। M.S. स्वामीनाथन रे प्रयास सु अपारे हरित क्रांति जेडी एक अथक कृषि में क्रांति लार और भारत ने कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनायो। और उन वक्त में खाद्यान्न रे मया गेहूं जड़ी खाद्यान्न फसल लार मानखे ने एक तरह सु वरदान साबित कर दियो।
7: देवन भाई, हरित क्रांति रे चार अपा कह सका के
8: मुख्य
7: स्तंभ। पहलो तो उन्नत बीज, पारंपरिक बीजा री जगह अधिक उपज देवन वाला बोनी किस्म रा बीज अपा उपयोग में लेवना शुरू करिया। जी हाँ, आप कह सका गेहूं में कल्याण सोना है, सोना लिखा है,
8: बिल्कुल
7: बीज कम समय में ज्यादा फसल दे सके,
8: दे सकता।
7: और दूजो हो रासायनिक उर्वरक, मिट्टी ने तुरंत पोषक तत्व देवन खातर यूरिया डी

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।

0: डीएपी और एनपीके जेड़ा खाद जिका उर्वरक है वह बड़े पैमाने पर बी टाइम इस्तेमाल शुरू
1: करिया। और रासायनिक उर्वरकों बी टाइम जहाँ बी टाइम तुरता तुरत अपनी फसल आ रहा रोग भी लाग जाओ तो और रोग लागण वास्ते बिया रो सुधार ओई हो के रासायनिक उर्वरक उन और आप काम में लियो जिनसु अपनी फसल है निरोगी हुई और फसल रो उत्पादन प्रभावित नहीं हुई।
0: सिंचाई रा आधुनिक साधन आप काम में लेन लाग गया, मानसून पर अपन निर्भरता कम हुई, मानसून भी टाइम पर आऊं तो कोनी हो, तो नहर है, ट्यूबवेल है या पंप सेट है, इरो अपा देश में जाल बिछ गयो और फसल ने सही बगत माथे पानी मिल सके, ई खातर ए जतन आपा करिया।
1: बिल्कुल कृषि रे माया बी टाइम जहाँ मतलब अपारे कृषि क्षेत्र में रासायनिक खाद है या इनरे अलावा अपा चोखो बीज है बितोर भी तो जरूरी हुई यंत्रीकरण और मेरे साथ है यंत्रीकरण बिना हरित क्रांति सफल नहीं हो सकती। तो यंत्रीकरण रे मैं जिका अपने फवारा लगाना है या पाइप लेना है या जिका भी यंत्र हा अपार खेत रे मैं जहाँ तवी है, हेरो है, कल्टी है, ट्रैक्टर ट्रैक्टर रो सब बड़ो योगदान बी वक्त में हुयो और ट्रैक्टर सु उत्तर भारत रे मैं बढ़त और पैदावार में रिकॉर्ड तोड़ पैदावार
0: और हरित क्रांति के बाद आधुनिक जिका यंत्र पद कार्यक्रम में शुरुआत में बात करी बियर उपयोग बढ़ते गयो और इस फायदो का यो कि आप अनाज में आत्मनिर्भर हो गया भारत जिका आप विदेश अनाज मंगा
1: होता
0: तो वो कम हो गयो और आपने जरूरत से ज्यादा आप अनाज पैदा करने लग गया और आज तो स्थिति आ है कि आप विदेशा ने अनाज भेजा पैदावार बढ़ने से किसान आमदनी में घणी इजाफो हो जिके से ग्रामीण भारत रो जीवन स्तर सुधर गयो, रोजगार अवसर बढ़ गया, खेती बाड़ी और भी जरूर जिका उद्योग है जिया बीज उद्योग है, खाद है, मशीनरी है, इनमें घने लोगों ने रोजगार मिलियो
1: मिले।
0: लेकिन आप कह सका सिक्के रा दो पहलू होया करे इनमें की चुनौतियां भी आज अपने सामने आ गई है। हरित क्रांति के माध्यम से कई चुनौतियां सामनो आज आप कर रहे हैं वो ओ है कि आज आप बहुत अधिक मात्रा में अणुती मात्रा में कह सका कि खाद और उर्वरक का उपयोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं,
1: अंधाधुंध
0: जिके सु मिट्टी जिकी है बा अनुपजाऊ होती जा रही है,
1: अब न मिट्टी भी अनुपजाऊ हो रही है और अपा साथे साथे रासायनिक खाद रासायनिक उर्वरक केमिकल रो अपा प्रयोग लियो नी वो आज अपारे लिए आफत बन गयो
0: और जमीन रो पानी जी को है नी ज्यादा उपयोग करियो क्योंकि आपा साल में जब आपा बरसात री फसल ले तो बीर बाद अब साल में तीन तीन फसल लेव लाग गया
1: लेवल लाग गया
0: तो स्थिति आ हुई कि भौमजल जी को है नी
1: वो घेरो गए प्रो बिल्कुल
0: तो आज भगत में आपने एक दूसरी हरित क्रांति री जरूरत है जिके में आप जैविक खेती हो
1: काम में लेवा
0: और एक सदाबार क्रांति री जरूरत है
1: सदाबार हाँ। और भी में जैविक खेती होनी चाहिए, प्राकृतिक खेती री साथ साथ है पानी री बचत जरूरी है,
0: आधुनिक सिंचाई पद्धतियां काम में लेवा
1: आधुनिक क्योंकि पानी कम हो रही हो है तो पानी कम होने वास्ते आप बूंद बूंद सिंचाई है इन्हें अपना आज रे वक्त में काम में ले परो पर्यावरण ने भी सुरक्षित रखा
0: केवनर मतलब है मिट्टी रो स्वास्थ्य चोखो रहे आधुनिक खेती करा जिके सु पर्यावरण भी चोखो रहे और जी धरती पर जिका जीव जिनावर है बिया ने भी कोई नुकसान नहीं हुए, धरती पर सब चीजा रो संतुलन बनियोडो रहे,
1: बिल्कुल प्राकृतिक जिको संतुलन है वो बनियोडो रहनो आज रे वक्त में बहुत
0: जरूरी है। अब देखो कार्यक्रम में भी एक गीत लो सुनानो बहुत जरूरी है और एक पारंपरिक गीत है कालू राम प्रजापति रो गायोडो उंदरा उंदरी लो सुनो सा

0: 90 साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाशवाणी।

0: तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।
1: तुझको आशिकी वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: तो दीवान भाई देखो, अब बात आप करा चर्चा कोई योजना री,
1: बिल्कुल
0: जिकी योजना लाया
1: जिकी अपार किसान भाई जरूरी वे है, किसान भाई हितार्थ वास्ते वे है और कोई न कोई किसान वास्ते अपारे श्रोताओं खातर फायदेमंद हुए। तो आज अपा राकेश भाई चर्चा करा श्रम योगी मानधन योजना, क्योंकि हर आदमी ने, प्रत्येक व्यक्ति ने आपरे जीने रह वास्ते रोटी कपड़ा और मकान,
0: सच्ची बात है,
1: इरी जरूरत हुए।
0: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आ केंद्र सरकार एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण योजना है, जिकी आपना जिका असंगठित क्षेत्र का कामगार है, मजदूर है, भाई बंधु है, बियाने बुढ़ापे में पेंशन री सुरक्षा रो कवच है,
1: सुरक्षा निश्चित वास्ते
0: और हो सके। इमें असंगठित श्रमिक रे रूप में जिका भी दैनिक मजदूरी करने वाला है, छोटा मोटा काम धंधा करने वाला है, खेत में काम करने वाला दिहाड़ी मजदूर है, या रेड़ी पटरी वाला है, ठेला चलाने वाला है, या सब्जी बेचने वाला, ईंट भट्टा पर काम करने वाला, निर्माण मजदूर, मिस्त्री, जिका भी

0: तो दीवान भाई चोखो सो हर्जस सुनायो। और अब आप देखो बात करा कि आने वाले दिनों में मानसून जी को है सक्रिय होने वालों है, चोखी बरसात होने की संभावना है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये बरसात रे पानी ना आप जे बचत कर लानी तो कह सका कि भी सोने में सुहागो है।
1: सुहागो बिल्कुल। और बरसात रो पानी आप बचत करने रा जिका तरीका है बे पारंपरिक तरीका और आधुनिक तरीका, यदि दोनों ने संजोग अपा पानी की बचत करा तो निसंदेह कोई न कोई फायदो अपा ने अपारे किसान भाया ने अपारी प्रकृति ने अपारी धरा ने उसी।
0: देखो फायदो तो ये है कि अपा जब पानी भेड़ो कर लानी तो टैंकर मंगाने की अपने जरूरत पड़े कोनी। जमीन रो जो लेवल है पानी ने जो जमीन में उतारा तो जमीन रो लेवल ऊंचो आ जैसी, और जिको भी आसे पासे फ्लोराइड युक्त पानी है तो बी में भी बरसात रो पानी मिल जैसी तो स्वास्थ्य खतर भी वो चोखो जैसी।
1: बिल्कुल। स्वास्थ्य
0: मिट्टी के कटाव में कमी आ जैसी यदि आप पानी ने बचत करा तो।
1: और आप यदि पालर पानी पीवा तो अपारे

0: स्वास्थ्य शरीर है नी तो बीर वास्ते एक तरह अमृत रो काम करी। यदि कोई भाई है वो जिको बरसात रो पानी संजोन वास्ते अलग ही कोई कुंडी बना रखी है तो भी मैं पालर पानी रो संजोर रखा और वो पालर पानी है अपारो अमृत रो काम करे।
1: बरसात रो पानी जिको है नी अपने आप में प्रकृति रो वरदान है। इन आपा नाला में कौन बेवण दा, आज ही अपने घर री आपा साफ सफाई करा, छतरी साफ सफाई करा और पाइप पाइप रे माध्यम से टांके सु भी ने जोड़ परो और चोखो पानी बरसात रो है जिको आपा इकट्ठो करा
0: कर सका। अब देखो राकेश भाई कार्यक्रम ग्रामीण जगत रो बखत हो रियो है पूरो तो लेवा सीख अपारे भायाऊ
1: घणा सीख देवसा आपरे साथी राकेश कुमार जोशी
0: और दीवान दान रत्नू ने
1: घणा घणा राम राम सा।

अभी ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रहे थे राकेश कुमार जोशी और दीवान दान रत्नू। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलम अरु चैनल से बोल रहे हैं। 7:45 हुए, आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत।

इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

फिल्म संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति। आवाजें हैं विशाल मिश्रा और साथियों की। फिल्म का नाम है गदर 2।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज़ बॉडीगार्ड फिल्म के लिए।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त तो होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8:30 हुए, आइए अब सुनते हैं लोक संगीत सीमा मिश्रा की आवाज में।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

इसके साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमरु चैनल से बोल रहे हैं। 8:45 होने

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उस समय तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद

और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर नीट लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी

0: समाचार। मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
2: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेगी।
1: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
3: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
1: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों के मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारूफ चैनल है। रात्रि के 9:15 हुए, आइए अब सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का आगाज हरिहरण और साथियों की आवाज के साथ, हम साथ साथ हैं फिल्म के लिए।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं उषा खन्ना का संगीत। शब्द हैं इंदिवर के, आवाज यशुदास की है और फिल्म का नाम है साजन बिना सुहागन।

संगीत के इस कार्यक्रम के आखिर में ये सुनते हैं उदित नारायण और प्रीति उत्तम की आवाज़ गदर फिल्म के लिए।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलम आरू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए, आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। जी हाँ, सुगम संगीत के इस कार्यक्रम के अंतर्गत

हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ चुनिंदा गजलें। पहली गजल ललित कुमार व्यास की आवाज में। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई।

है वक्त मेरे साथ तो हर एक साथ है वक्त मेरे साथ तो हर एक साथ है, बदला जो वक्त खींच लिया सबने हाथ है। जी हाँ, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ चुनिंदा गजलें। आइए सुनते हैं सीमा अनिल सहगल की आवाज़ में ये खूबसूरत गजल।

प्रकृति के हाथ अपने ही खंजर से कट गए, धरती के हाथ अपने ही खंजर से कट गए। दो बेटे एक माँ के थे, फिरकों में बट गए। चंदन की एक आरजू महंगी पड़ी मुझे, सारे हवस के सांप दिलों से लिपट गए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश, मिर्जा गालिब की ये खूबसूरत गजल ललित कुमार व्यास की आवाज में।

इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलम अरू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। जी हाँ, फरमाइशी आपके फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ। आइए सबसे पहले सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़, अपनापन फिल्म के लिए। गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं बल्लभ गार्डन बीकानेर से श्री प्रमोद शर्मा, श्रीमती प्रेम शर्मा, लोहित शर्मा, रजनी और लोरी शर्मा। साथ ही इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखा है गंगा शहर बीकानेर से मंजुल मुगल वर्मा, प्रेमलता, शैलजा, हेमपुष्प, शिव कुमार, सुशीला, नीरज, दिवाकर, सुमन, ममता, हेमंत, युवराज और उनका पूरा परिवार। ये पत्र आया है बठिंडा से, रेलवे कॉलोनी बठिंडा से। इस गीत को सुनना चाहते हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और उनका पूरा डागला परिवार। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सदाबहार प्यारा सा गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम अपनापन।

आपकी पसंद। जी हाँ, ये कार्यक्रम फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम महबूबा। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है एसडी बर्मन ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं दाऊजी मंदिर के पास बीकानेर से दाऊलाल, चंद्रकला, प्रमोद और मनीषा। इसी गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखा तेलीवाड़ा रोड बीकानेर से सुल्ताना बानो फिरदौस, आफरीन और मोहम्मद रेहान ने। साथ ही मोहिनी देवड़ा, मुश्ताक टेलर, महबूब टेलर भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। मुरलीधर व्यास कॉलोनी बीकानेर से यह पत्र मिला है। विजयलक्ष्मी पालीवाल, कपिला पालीवाल और शिव कुमार पालीवाल का, जो इसी गीत को सुनना चाहते हैं। ये खत मिला है श्री कोलायत बीकानेर से।

जो इसी गीत को सुनना चाहते हैं, आप हैं फूसरा सोनी, सूरज प्रकाश सोनी, धर्मेंद्र, गुड़िया सोनी, ढोकल दास सोनी, स्वरूपा, गीता, चंदू सोनी और उनका पूरा परिवार। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत प्यारा नगमा।

आइए आप सुनते हैं खय्याम का संगीत, लव्ज निदा फाजली के, फिल्म का नाम आहिस्ता आहिस्ता, आवाज भूपेंद्र की है। इस गीत को सुनना चाहते हैं शीतला गेट बीकानेर से मोहम्मद शरीफ खींची, अकमल हुसैन बिहानी, अमजद अली खींची, नज़ीर मोहम्मद हमाल, बेगम मेहरुनिसा और उनका पूरा परिवार। इसी गीत को सुनने के लिए पत्र प्राप्त हुआ है मुक्ता प्रसाद बीकानेर से, सुनील कुमार, रेखा, लुभांशी, राजेंद्र कुमार, रजनी, मंजू, कपिल सिंघाठिया, सोनिया, भानु और उनका पूरा परिवार। साथ ही ये पत्र आया है फतेहपुर शेखावाटी से, इस गीत को सुनना चाहते हैं डॉक्टर शबनम भारतीय, शकुरन भारतीय, शमीम भारतीय, समीर भारतीय, वसीम भारतीय, शगुफ्ता भारतीय, वसीम भारतीय और हुसना भारतीय। साथ ही सीकर से इसी गीत को सुनना चाहते हैं एहसान चौहान, शाहिर चौहान, नाजमिन चौहान, जबीन चौहान, मोहसिन चौहान, अरमान चौहान और यास्मीन चौहान। आप सभी की समातों के हवाले ये खूबसूरत नगमा।

आप तो ऐसे ही न थे। जी हाँ, ये नाम था फिल्म का जिसका नगमा भी आपने सुना। आवाज थी हेमलता की। इससे पहले आपने आशा फिल्म का नगमा सुना, आवाज थी लता मंगेशकर की। इन दोनों गीतों की मिलीजुली फरमाइश कुछ इस तरह से है। कनेर मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बट्टा। ये पत्र मिला है भाटापारा दत्तरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा का। इसी गीत को सुनना चाहते थे लालगढ़ बीकानेर से असगर अली पंजाबगीर, अनवर अली पंजाबगीर, मुमताज, सोनू, टीना, वहीदा, शहीदा, एम ए पंवार और खातून बेगम। इन्हीं गीतों को सुनने के लिए यह पत्र मिला है बाबा कुटी उफरा पाटन से प्रेम साहू, यमुना साहू और ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर।

सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रयांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर। साथ ही अजीत नगर मलोट पंजाब से ये पत्र मिला है इन गीतों के लिए। लिखने वाले हैं छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह और सीएस बेगाना। आपकी पसंद फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मों गीतों का यह कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। आइए अब सुनते हैं भूपेंद्र की आवाज़ एतबार फिल्म के लिए।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गज़ल फिल्म का ये सदाबहार गीत, इस गीत को सुनना चाहते हैं रामपुरा बस्ती बीकानेर से गली नंबर 1 से रमज़ान अली लखारा, उनकी अम्मी रहीमन लखारा, साथी संजीव पराशर, पूर्णिमा पराशर, भावना पराशर, फूसा राम हटीला और साथ में जेके पठान। लुधियाना पंजाब मौला फतेहगढ़ से यह पत्र मिला है विनोदपुरी वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, नीलमपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, रामापुरी और आरएसपुरी का, जो इस गीत को सुनना चाहते हैं। ये ख़ास पत्र मिला है लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़, ज़िला झालावाड़। लिखने वाले हैं हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर भाई और प्रभुलाल बागरी, जो इस गीत को सुनना चाहते हैं। साथ ही ये खत मिला है फाजिल का पंजाब से विष्णु खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, टिवानशी खेड़ा, शालनी खेड़ा, आरबी खेड़ा, लाली खेड़ा और जीवन सिंह बुक का, जो इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ये सदाबहार नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम गज़ल।

इसके साथ ही फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र

0: तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमिपत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग देने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताज़ा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from